0: बताइए आपको कि ध्यान और समाधि माने अवशोषण। आइए अब हम आपको बताते हैं एक एक के बारे में कि कौन से आसन हमें अष्टांग योग में करने चाहिए। सर्वप्रथम हम बता दें आपको कि अतुल्य अष्टांग योग के बारे में हमने 8 नियमों के बारे में बताया। इन 8 नियमों को हम ध्यान में रखते हुए ही सारे योग आसन करते आ रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी मन बुद्धि के लिए, हमारे खुद के व्यक्तित्व के लिए बहुत ही लाभप्रद है। साथ ही साथ हमने देखा कि सारे प्राणायाम, सारे आसन, सारे कर्तव्य जितने भी हम करते आ रहे हैं, उनमें से सबसे मुख्यता जो 8 मुख्य प्राणायाम होते हैं, वह सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। 8 मुख्य प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्रणव, भस्त्रिका, उद्गीत, यह सारे के सारे प्राणायाम जो हैं, हमें अष्टांग योग की ओर ले जाते हैं। साथ ही साथ हमने 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में प्रत्येक एक एक दिन के लिए, हमने हर एक नए दिन को, एक नए स्वरूप को जाना है। अष्टांग योग के बारे में हम जितना बताएं उतना कम है, क्योंकि अष्टांग योग अपने आप में एक महत्वपूर्ण आसन योग के रूप में जाना जाता है। अनुपम अष्टांग योग के बारे में हम इसलिए बताएंगे क्योंकि यम, नियम, ध्यान, साधना, ये सारे के सारे जो कि नियम है, यह हमें एक साथ बांध कर रखने के लिए ही पर्याप्त होते हैं। संयम पालन, योग मुद्राएं, श्वास पर नियंत्रण, हर एक प्राणायाम हमें श्वास पर नियंत्रित रखने के लिए ही अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अंततः हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जितने भी प्राणायाम हमने किए, जितने भी हमने एक साथ बैठ करके आसन किए, वह सब का समूह जो है वह अष्टांग योग है। इसीलिए यह अनुपम है, इसीलिए यह अतुल्य है, कोई इसकी तुलना कर ही नहीं सकता है, किसी भी मायने में हो या किसी भी योगासन में हो। कहा जाता है कि 84,000 से भी ज्यादा, 84 लाख से भी ज्यादा आसन प्राणायामों की गिनतियां की गई हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हर एक नस के लिए, हर एक नाड़ी के लिए, हर एक हमारे अंग के लिए अलग अलग आसन प्राणायामों का चयन किया जाता है, जो कि हमें अष्टांग योग के साथ में करने के लिए एक संपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसीलिए अंततः में हम आपको अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं कि सभी प्राणायामों का, सभी आसनों का जो समूह है वो है अष्टांग योग, जिसे हम सभी मिलकर के 8 नियम के हिसाब से करते हैं। नियम पालन अवशोषण जो भी है, नियम संयम पालन, योग मुद्राएं, श्वास पर नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों को वापस लेना, धारणा, एकाग्रता और समाधि यानी कि अवशोषण, ये सारे के सारे 8 मुख्य ऐसे प्राणायामों के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें हर एक नए आसन और प्राणायाम की ओर लेके जाते हैं। और साथ ही साथ हमें यह सीखने को भी कहते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा से सचेत रहना है, हमेशा से जागरूक रहना है, ताकि हम कोई भी प्रतिक्रिया क्रिया ना करें जिसकी वजह से हमें स्वास्थ्य के प्रति कुछ भी ऐसा देखने सुनने को मिले। आज की योगशाला के शिविर में हमने अतुल्य अष्टांग योग के बारे में जाना, जो कि विस्तार रूप से बताया जा रहा है। तो आइए हम अब कल यानी कि 30वां दिन योग शिविर का हम मिलेंगे एक नए नाम के साथ में, एक नए योग के साथ में। तो तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूं, जो अमूमन सभी महिलाओं को, पुरुषों को, यहां तक कि बच्चों को भी अब होने लगा है। ज्यादा देर तक एक ही स्थान पर बैठना, काम करना, जॉब को लेकर के बैठने और एक साथ कई घंटों तक काम करने की वजह से पीठ दर्द की समस्या सभी को होती है, ठीक उसी तरह जैसे

यदि हम कोई भी काम एक साथ 8-5 घंटे तक बैठ के करते हैं तो हमें एक आदत सी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि चलो ये काम भी निपटा लें, उसके बाद हम आराम कर लेंगे। बस इसी आदत के कारण से हमारी जो भी अवस्था होती है हम उसमें ढलने लगते हैं और ये आगे चल करके हमारी दर्द का कारण बन जाता है। पीठ दर्द अमूमन आजकल हम सभी घर में सभी किसी न किसी एक व्यक्ति को हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पीठ दर्द को कम करने के आसान से योगासन। पीठ दर्द को कम करने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में प्राणायाम बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। नियमित अभ्यास से रक्त संचार सुधरता है और साथ ही साथ मांसपेशियों में भी तनाव कम होता है और साथ में मानसिक शांति भी मिलती है। पीठ दर्द के लिए बहुत सारे वैसे प्राणायाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज कुछ मुख्य रूप से प्राणायाम की गिनती में आप सभी लोग मिलकर के करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। जी हाँ दोस्तों, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी प्रकार के दर्द को दूर करने के साथ साथ हमें हमारे स्वस्थ शरीर को प्रदान करता है, जो कि रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। मानसिक तनाव को कम करने के साथ साथ हमारे दर्द को भी घटाता है। अनुलोम विलोम आप सभी को पता है कि हमको अनुलोम विलोम कितनी देर करना है, 5 से 7 मिनट। ये प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में आप 3 से 4 मिनट भी कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ कपालभाति रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है, इसीलिए हमें नियमित रूप से कपालभाति जरूर करना चाहिए। कपालभाति की भी समय अवधि स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट और हम समय के हिसाब से उसे बढ़ाते जाएंगे तो 5 से 7 मिनट भी कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि नसों को शांति देता है, दर्द और बेचैनी को भी कम करता है। भ्रामरी प्राणायाम जिसे हम विपरीत भी कहते हैं, यह हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक नसों को इतना आराम देता है कि हमारे सारे दर्द को दूर कर देता है। चौथा प्राणायाम दीर्घ प्राणायाम। गहरी सांस लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़कर पीठ की जकड़न को कम कर देती है। पांचवा प्राणायाम आता है उज्जयी प्राणायाम। गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है, रीढ़ की सिधाई और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करता है। उज्जयी प्राणायाम, वैसे तो हम कई ऐसे प्राणायाम करते आ रहे हैं जिसमें गर्दन, पीठ, रीढ़ की सिधाई और भी हमारी नसों को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन उज्जयी प्राणायाम विशेषतः गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है। सुबह खाली पेट या सारे प्राणायाम करने से इसका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिलता है। आरामदायक आसन में बैठ जाएं, यानी कि सुखासन, वज्रासन या फिर कुर्सी पर सीधा बैठना। 5 से 10 मिनट में शुरुआत करते करते धीरे धीरे समय को बढ़ाते जाना है। सबसे जरूरी है इसमें नियमितता, यानी कि हम नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तभी हमें इसका लाभ जरूर से मिलता है। या तीव्र पीठ दर्द, डिस्क या कोई गंभीर रीढ़ की समस्या है तो किसी योग और किसी भी योग से हम जुड़ सकते हैं, जैसे कि आज हमने आपको 5 योगासन बताए। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम की ओर जो कि हमारी पीठ दर्द के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। पीठ दर्द को कम करने के लिए बिल्ली, गाय, मुद्रा, घुटने से छाती तक खिंचाव करने के बाद में उसे उक्तासन जैसे योग आसन किए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे, बिल्ली, गाय, मुद्रा? जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने अपनी सीरीज में आपको बताया है बिल्ली और गाय की मुद्रा। पीठ दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपको बिल्ली, गाय, मुद्रा ही बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं।
हाथों और घुटनों के बल आ जाए, कलाइयां कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे रखें। श्वास लेते हुए अपनी पीठ को मोड़ें, पेट को नीचे की ओर झुकाएं और सिर व टेलबोन को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को गोल करें, हड्डी को छाती से सटाएं और पेट को अंदर खींचें। यह है बिल्ली मुद्रा। इस प्रक्रिया को 6 से 8 बार हम दोहरा सकते हैं। घुटने से छाती तक जो खिंचाव होगा वही हमारा यह मुख्य उपाय होगा। पीठ के बल लेट जाना है। एक घुटने को अपनी छाती की ओर खींचें और कुछ सेकंड रुकें, फिर छोड़ दें। इस क्रिया को हम 5 बार दोहरा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं उत्तान आसन, यानी कि खड़े होकर आगे झुकना। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर खड़े होकर के रख करके खड़े हो जाएं। पैरों को कूल्हों के बराबर दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए अपनी बाहों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को लटका दें और कुछ सेकंड रुक जाएं। धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और इसे 3 से 5 बार दोहराएं। पीठ को सीधा रखने की कोशिश हमेशा से करें, यानी कि जब भी हम बोलें बैठें तब हम नियमित रूप से सीधे ही बैठने की कोशिश करें। क्या होता है दोस्तों कि कई बार हम कई घंटे एक जगह बैठे बैठे हमारी रीढ़ की हड्डी पर एक कसाव सा होने लगता है, जिसके कारण से हम झुकने लगते हैं। गर्म या ठंडी सिकाई करने से भी मांसपेशियों को आराम मिलता है। लेकिन मैं आपको जो आज अभी हम सब लोगों ने मिलकर आसन किए, यह आसन बहुत ही उपयोगी है और इन आसनों को जरूर से करना चाहिए। पीठ में जकड़न का इलाज करने के लिए हल्के व्यायाम जो आज हमने आपको बताए, स्ट्रेचिंग या गर्म ठंडी चिकित्सा का उपयोग हम कर सकते हैं। आराम करने से बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, जबकि अगर आपको काम के दौरान भी 5 से 10 मिनट मिल रहा है तो जिनको भी पीठ में दर्द होता है वह जाकर के एक बार सीधा जरूर लेट जाए। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों की अकड़न दूर होती है और गर्म या ठंडी सिकाई से रक्त प्रभाव बढ़ता है और सूजन कम होती है। अपनी सारी मुद्राएं आराम से करने के बाद में तनाव मुक्त होकर के ही हम लेट जाएंगे। स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर की जितनी भी अकड़न होती है वह तो दूर होती है, साथ ही साथ मांसपेशियों को भी बड़ा आराम मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का, यानी कि योगशाला में आज हमने बताया पीठ दर्द को कम करने के साधारण से उपाय और व्यायाम। आइए हम सभी मिलकर के करते हैं और मिलते हैं अगली योगशाला में सुबह 6 से 7, क्योंकि हम सभी मिलकर के जब योग करते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने आपको कई ऐसे आसनों के बारे में बताया है, जैसा कि उसके लाभ और उसका तरीका, तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उष्टासन। उष्टासन में सबसे पहले करने का तरीका हम बताएंगे और उसके बाद उसके लाभ। हर एक प्राणायाम का लाभ और अपने आप में उसकी उपयोगिता देखी गई है। उसी तरह उष्टासन भी अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय और सभी को पसंद आने वाला यह आसन है। तो आइए हम सबसे पहले उष्टासन करते हैं। सर्वप्रथम किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठने का तरीका वज्रासन होगा। जैसे पहले घुटनों के बल बैठें और एड़ियों पर शरीर को टिकाएं। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को उठाएं। अब शरीर को ऊपर उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बीच लगभग 1 फुट का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखें, हथेलियां नीचे की ओर रखें और कमर को हल्का सा पीछे झुकाएं। धीरे धीरे झुके
और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने सर को झुकाएं। उसके बाद एड़ियों को पकड़ें और जब तक आराम से झुक सकें तब तक आप झुकें और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। छाती को ऊपर उठाएं, सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि गर्दन को भी स्ट्रेच मिले। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड रहें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और फिर पुनरावृत्ति की तरह प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। वापस आते समय धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पहले कमर सीधी करें, फिर हाथ कमर पर लाएं और वापस वज्रासन में आ जाएं। तो दोस्तों, ये था उष्टासन करने का तरीका। आइए अब हम उष्टासन के लाभ आपको बताने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को लचीलापन तो ये देता ही है, साथ ही साथ यह आसन स्पाइन को भी मजबूत और लचीला बनाता है, कमर और पीठ दर्द में राहत देता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। छाती और फेफड़ों का विस्तार ठीक ढंग से करता है, इससे श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। यह आसन रक्त संचार में सुधार करता है, तनाव, चिंता और थकान को भी यह कम करता है, मन को शांत करने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा भी भर देता है, शरीर की आकृति को सुधारता तो है ही, साथ ही साथ पेट सीधी रहती है और झुके कंधे ठीक होते हैं, पेट की मांसपेशियों को टोन करता है। यह आसन पेट की चर्बी घटाने में भी संपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होता है, हाइड्रेशन यानी पाचन में सुधार करता है, पेट के अंगों पर खिंचाव करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और रीढ़ की हड्डी और गले के हिस्से को मजबूत करता है। कुछ ऐसे आसन जो कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं, जिसमें उष्टासन और पद्मासन में बैठ करके यदि हम करते हैं तो काफी कुछ हमें इसका लाभ मिलता है। आइए अब मैं इसके प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बता देती हूँ। कमर या गर्दन में दर्द हो तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या स्पाइन इंजरी वाले लोग भी इसे बिल्कुल ना करें। यह आसन खाली पेट करना चाहिए

मिलेगा। अगली श्रेणी में हम आएंगे एक नए आसन की सावधानियां, उपचार, लाभ और तरीका लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, जो कि एक नामों के साथ में सीरीज चल रही है, योग के साथ में एक नाम को जोड़ करके। जैसा कि पहली सीरीज में हमने आपको बताया था नौकासन, यानी कि अलौकिक नौकासन, उसी के साथ में एक नया नाम अब हम आज आपके सामने बताने वाले हैं, जो कि है प्रकाशमय

या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सुबह की पहली किरण में। जी हाँ, आपके अपने वाले शो पहली किरण में, जो लेके आ गई है आपकी आरजे आकांक्षा। आज हम बात करेंगे माँ के अवतारों में से एक अवतार की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है। कारण, हर विद्यार्थी, लाभार्थी, कार्यस्थल पे कार्य करने वाला हो, जीवन में किसी भी प्रकार की सीख अगर चाहिए तो हम ध्यान करते हैं जिस स्वरूप का, वो है माँ का ब्रह्मचारिणी रूप। क्योंकि कहा जाता है, जब हमें ज्ञान की आवश्यकता हो तो सबसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है, और धैर्य का पाठ पढ़ाने वाली जो माँ है उनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ये नौ दुर्गा के स्वरूपों में से एक हैं, जिनका नवरात्रि का द्वितीय दिवस माना जाता है। और भी जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, उससे पहले इन्हीं का वंदन करते हैं इस गान के माध्यम से।

ब्रह्मचारिणी माता यानी दुर्गा देवी का द्वितीय रूप। आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं की, जिन्हें ज्ञान, तपस्या, संयम की देवी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। आप कह सकते हैं कि ये माता पार्वती का ही स्वरूप है। जी हाँ, वो स्वरूप जो तपस्या और त्याग की मूर्ति मानी जाती है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडलु होता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ, ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। ब्रह्म का अर्थ तप और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली से है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए नारद मुनि के उपदेश से घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी और ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वे कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रही थी और पत्तों को खाकर भी तपस्या करती रही, जिससे उनका शरीर छिड़ हो गया था।

अब बात कर लेते हैं माँ के पूजन के महत्व के विषय में। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनकी पूजा से साधकों को संयम, अनुशासन और जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। माना जाता है कि उनकी कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और रुकावटें दूर होती हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा जप कर लेते हैं माँ का।

अब बात करते हैं माँ की उत्पत्ति और महत्व की। शिव के लिए तपस्या। जी हाँ, माँ की उत्पत्ति शिव के लिए तपस्या से हुई। अपने पिछले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जिन्होंने भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की थी, इन्हें तपस्या का प्रतीक भी मानते हैं। इनका नाम, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका नाम ब्रह्म यानी ब्रह्मा यानी तपस्या और चारणी मतलब महिला अनुयायी से लिया गया है, मतलब जपने वाला, जो उनके गहन समर्पण और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। नौ दुर्गा के दूसरे रूप के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है माँ की सेवा पूजा अर्चना करना, जिनमें इनका द्वितीय दिवस पे विशेष स्थान है।

शास्त्र के अनुसार वे दाहिने हाथ में मोतियों की माला धारण करती हैं, जो उनके आध्यात्मिक ध्यान का प्रतीक है, और कमंडलू वो अपने बाएं हाथ में जल का एक पात्र रखती हैं, जिसे प्रायः तप और पवित्रता से जोड़ा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान, बुद्धि और उच्च चेतना प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती हैं। माँ की पूजा से सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति मिल जाती है।

आइए अब आपको माँ के अवतरण की कथा का विस्तार बताते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी पूर्व जन्म में राजा हिमालय और मैनावती की पुत्री थी। उनका नाम पार्वती था। नारद के उपदेश के उपरांत उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या शुरू की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। तपस्या के कई चरण थे, जैसे 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताया माने, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया, फिर कुछ दिन के उपरांत कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के कष्ट सहे, 3000 वर्षों तक टूटे हुए विल पत्र खाए यानी बेल पत्र का आहार किया। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और इस तरह से अपने तपस्या में लीन रही। माँ का एक नाम अर्पणा भी है। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया, जिसका अर्थ है पत्ते को भी ना खाने वाली। इस कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया और उनकी माता मैना ने उन्हें पुकारा, जिससे उनका एक नाम उमा भी पड़ गया। देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने देवी की इस अभूतपूर्व तपस्या की सराहना की। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए और कठोर परिश्रम व संयम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, जय मां ब्रह्मचारिणी।

तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं माता ब्रह्मचारिणी की, जो कि उपासना की देवी मानी जाती हैं, तपस्या और त्याग की मूर्ति। इनकी पूजा से साधक को तप, संयम, त्याग, धैर्य और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। देवी ब्रह्मचारिणी पार्वती का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं, जो कि अविवाहित थीं। उन्हें नंगे पैर चलने और हाथों में रुद्राक्ष माला, जिसे जप माला भी कहते हैं, और कमंडल यानी जल का कलश धारण किए हुए चित्रित किया जाता है।

0: अब बात कर लेते हैं माँ के श्लोकों और मंत्रों की। सबसे पहले सबसे सरल वाला मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। इसके अलावा नवान मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके अलावा ओम ब्रह्मचारिण्ये देव्य नमो नमः। इसके अलावा दधाना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मई ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। तो इस तरह से कई सारे मंत्रों का जाप हम माँ के लिए कर सकते हैं और इसके द्वारा माँ का ध्यान निरंतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा, सप्तसती का पाठ या सिद्ध कुंजिका, देवी सूक्त, जो पाठ आपको उचित लगे उसके द्वारा माँ का अर्चन पूजन किया जा सकता है।
1: नवरात्र के द्वितीय दिवस में आज हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन करेंगे, वंदन करेंगे, अर्चन करेंगे।

ब्रह्मचारिणी की उपासना से इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी माँ की आराधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का वो सामना आसानी से कर सके। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है।

ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन अभी शादी नहीं हुई हो। इन्हें अपने घर बुलाएं, पूजन के पश्चात भोज कराएं और साथ ही में उपहार स्वरूप वस्त्र, पात्र आदि चीजें भेंट करें।

प्रत्येक सर्व साधक के लिए आराधना योग्य बहुत ही सरल और स्पष्ट मंत्र या श्लोक कह लीजिए, जो है उसको मैं आपको बता देती हूँ। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर लें, नवरात्रि के दूसरे दिन इसका जाप करें और इसका हिंदी अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले संस्कृत रूप, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। इस तरह से माँ को याद करें, उनका ध्यान करें और सुनिए

माँ ब्रह्मचारिणी देवी कठोर साधना और तपस्या की देवी हैं, जो कि हमेशा हर वक्त तपस्या में लीन मानी जाती हैं। माँ की कृपा पाने के लिए आपको उनकी आराधना किस प्रकार से करनी है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अभी जानते हैं कि माँ की आराधना से हमारा कौन सा ग्रह मजबूत होता है, जिसमें आता है चंद्र ग्रह। जी हाँ, जिसको मानसिक समस्या हो या फिर याददाश्त और एकाग्रता की कमी जिसमें पाई जाए, उन्हें माँ की आराधना और पूजन करनी चाहिए, क्योंकि माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और श्वेत चीजें उन्हें पसंद हैं। कहीं ना कहीं माना गया है कि चंद्रमा से इनका जुड़ाव है, तो जो भी साधक माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, उनका चंद्र प्रबल होता है और उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में होंगी, उनका निदान होता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी।

अब मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी। उपाय ये है कि हमने देखा है कई बार जब हमारे छोटे शिशु होते हैं जिनको चंद्रमा पहनाया जाता है, उसके लिए बहुत उपयुक्त वक्त है आज का। जी हाँ, नवरात्रि का दूसरा दिन जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं। आपको करना क्या है आइए जानते हैं। देवी माँ को सफ़ेद फूल अर्पित करें, अर्ध चंद्र चांदी का माँ के श्री चरणों में अर्पित करें, साथ ही साथ सफ़ेद वस्तु चढ़ाएं, कोई श्वेत मिठाई अगर आपके पास हो तो अर्पित करें, अन्यथा रहने दें। उसके उपरांत तीन माला चंद्र का पौराणिक मंत्रों से जाप करें, फिर लाल धागे में उस चंद्रमा को बच्चे के गले में धारण करवा दें। हर 6 माह पर आने वाली नवरात्रि के दूसरे दिन ऐसा करें, जिससे ये चंद्रमा जागृत होता रहे और आपका बालक स्वस्थ रहे। तो आइए माँ का फिर से ध्यान करते हैं और उनके श्री चरणों में खुद को अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की, उनके पूजा उपासना की और इसके साथ में माँ के कुछ प्यारे प्यारे भजन सुने। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और माँ का ध्यान करते रहिए और ऊर्जावान रहिए, साथ ही साथ अपने मन को संयमित रखिए। राधे राधे, जय जिनेंद्र, खुदा हाफिज़।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9817961 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

0: देख लो इधर तो एक बार मैं भी हूं ना, ऑफ कोर्स मैं हूं ना। सो फिर आपको टेंशन किस बात की। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मंडे मॉर्निंग स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम। यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और आज तारीख है 12 अक्टूबर।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो फिलहाल अब चलते हैं आपको ले करके आज यानी मंडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे की तरफ। सो आज का मंडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्या पैगाम लाया है बतौर सोमवार के लिए, ये सब कुछ अब जानने वाले हैं आपके गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं उस थॉट की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि भाई थॉट क्या ला रहा है और थॉट क्या कुछ कहने वाला है। सो आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ज़्यादा शानदार है और बिल्कुल मंडे के अकॉर्डिंग परफेक्ट थॉट है। सो आज का थॉट क्या कहता है? आज का थॉट कह रहा है कि जिंदगी में एक ऊंचा एम बनाओ, एक ऊंचा एम। जिंदगी में एक ऊंचा एम बनाओ, एक ऊंचा एम। 100 कामनाओं में बटे बटे मत रहो। सो जो 100 कामनाएं होती हैं, ये भी वो भी ऐसे भी वैसे भी इधर भी उधर भी, ये होने वाला है नहीं। और उससे बेहतर है कि एक ऐसी चीज़ हो जो पूरे डेडिकेशन के साथ आप जिस पर अपना लगा सके, एफर्ट्स लगा सके, उस पर कुछ कर सके, यानी प्रॉपर उसको वक्त दे सके, उस पर अपने इमोशंस लगा सके, उस पर अपनी कोशिशों को लगा सके, उससे उम्मीद रख सके, एक ऐसा एम, एक ऐसा उद्देश्य। क्योंकि ये जो छोटी छोटी कामनाएं होती है इसमें हम बट के रह जाते हैं और कोई भी चीज़ बेहतर नहीं हो पाती है। जब हमको सब कुछ चाहिए होने लगता है तो फिर वहाँ पे मसले हो जाते हैं, कभी ये मिल जाए, कभी वो मिल जाए, कभी ऐसा कभी वैसा। तो ये हमको शायद समझने की बात है जो आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि भाई ऐसी 100 कामनाओं में बटने से बेहतर है एक बहुत बेहतरीन लाजवाब सा उद्देश्य हो आपकी लाइफ का, ताकि आपको उसे करने में मज़ा आए, उसको अचीव करने में मज़ा आए, उस तरफ जाने में मज़ा आए, आप फील कर पाए कि वाओ क्या चीज़ है यार, और इसको अचीव करना अपने लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। सो यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। अब आज का थॉट ऑफ द डे जो बात कह रहा है, मुझे लगता है कि भाई आप इस बात को बखूबी समझ पा रहे होंगे और ये थॉट ऑफ द डे आपको उस एक एम को बनाने की दिशा में आगे सोचने को ले जा रहा होगा जिससे अभी तक आप महरूम थे या जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे थे। क्या होता है, क्या है पता है, जब हम चीज़ों को बिल्कुल छोड़े रखते हैं और कुछ भी नहीं होता है तो हम आगे बढ़ने की उतनी चाह रख नहीं पाते। हमको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें उतनी रिलेवेंट ना हो हमारे लिए और बहुत कुछ चाहने लग जाते हैं। लेकिन जब कोई भी एक चीज़ ऐसी जो आपकी मर्ज़ी का हो, जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो, उसके लिए जब आप जुटते हैं ना, उसके लिए जब आप कुछ करते हैं ना, लिटरली बता रहा है जीने का मज़ा आता है, स्ट्रगल का मज़ा आता है, हर्डल्स का मज़ा आता है, रास्तों को एंजॉय करते हैं, परेशानियों को गले लगाते हैं और अपॉर्चुनिटी को साथ लेते हैं और उसके बाद मकाम को हासिल कर लेते हैं। ये सब कुछ होता है जब कुछ बड़ा होता है विजन में। तो बड़ा कहने का सेंस ये बिल्कुल भी नहीं है कोई बड़ा ओहदा या बड़ी सी प्रॉपर्टी। बड़ा यानी कि आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देने वाला, बेहतर चेंज कर देने वाला, जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप सोचते हैं, उस लिहाज से कुछ तो ऐसा आप कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, राइट? और आज वैसे भी मंडे है और मंडे तो कहता ही है कि हम शुरुआत है, तो क्यों ना आज की इस शुरुआत वाले दिन को एक ऐसे ही बड़े मकाम वाले, ऊंचे दर्जात वाले किसी एम्बिशन को दिया जाए जहां पर हम इन चीज़ों को लगाएं और उसके बाद हम फील कर पाए कि हाँ, हम जो वक्त लगा रहे हैं, हम जो कुछ करना चाह रहे हैं वो बेहतरीन है, वो अव्वल है, वो बेहतरीन से बेहतरीन है। और यही होना भी होता है, कहीं ना कहीं ये बात सच होती है कि हम जो है ऐसी चीज़ों के बारे में जब काम करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, तो शायद हमको समझ में आता है कि यार कितना बेहतरीन है ऐसी लाइफ को जीना जहाँ पे हम अपने सपनों में, एक सपना जो सबसे
अव्वल तरीन है, जो सबसे ज़्यादा उत्तम है, सर्वोत्तम है हमारे लिए, उसके लिए हम अपना काम कर रहे हैं, और ये फीलिंग ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो देखा, मैंने कहा था आपसे कि भाई जिस पल आप इस बात को जान लेंगे उस पल आप खुश हो जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि मंडे ने हमको एक ऐसा मैसेज दे दिया है, एक ऐसा थॉट, एक ऐसा एम्बिशन दे दिया है जिसको करने का भी मज़ा है और जिस पर चलने का लाजवाब अंदाज होने वाला है हमारा। सो आज का ये थॉट ऑफ द डे आपको क्या बता रहा है, आपको क्या बताया, ये ज़रूर सोचिएगा, और लिख सकिए तो चैट पर आकर लिखिएगा भी। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, विद योर मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।

0: तुम तक आ गए फिलहाल तुम तक, यानी आपके शो तक। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, मॉर्निंग चौक आरजेतनान, ओनली ऑन रेडियो 11:38.9.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सो हम बात कर रहे थे आज के थॉट की, और देखिए थॉट पर आपके कुछ रिएक्शंस भी आ गए हैं। सो आपको हम बता दें, फिलहाल आप हमको सुनते हैं फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। सो इसी एप्लीकेशन पर आपको मिलता है चैट का ऑप्शन, और उस पर जो कुछ लिखते हैं वो सीधे लाइव हम तक पहुंच जाता है। तो आप सीधे चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ, आप पहले उससे वेलकम करते हैं जो भी इस वक्त गुड मॉर्निंग गोंडा शो में आ गए हैं थ्रू फ्रिक्वेंसी, थ्रू रेडियो गार्डन और थ्रू रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM से एप्लीकेशन। सो अभी क्या है कि चैट पर कुछ मैसेजेस हमको नज़र आ रहे हैं, तो चलिए इन मैसेजेस को पढ़ते हैं और बताते हैं कि आपके पैगाम में आज क्या कुछ लिख भेजा है आपने बतौर तोहफा आरजे अदनान को।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई सबसे पहले जो मैसेज आया है वो आशु जी का आया है, लखनऊ से लिखा है। सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। आप लिखती हैं, जीवन में सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो आप पर विश्वास करते हैं उनका भरोसा कभी ना टूटे। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच आशु जी लखनऊ से इस प्यारे से मैसेज को भेजने के लिए। इसके बाद प्रीति जी हैं बहराइच से, प्यारा सा सुप्रभात सर जी, प्यारा सा सुप्रभात आपको भी, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में गोंडा एफएम पर। सुशील यादव जी लिखते हैं, अगर कोई आपसे अपने मन की बात शेयर करता है तो समंदर बनना न्यूज़पेपर नहीं। वाओ, मतलब उसको अपने ही अंदर समा लेना, उसको गाना नहीं, ये तो कहना चाहते हैं ना, है ना, देखा हम समझदार है। इसके बाद आप लिखते हैं, पानी सब पेड़ों को एक समान मिला, फिर भी गन्ना मीठा, अंगूर खट्टा, करेला कड़वा और मिर्ची तीखी होती है। ये पानी के कारण नहीं, अपने स्वभाव के कारण होते हैं। वाओ क्या बात है, बहुत ही परफेक्ट से एग्जाम्पल दिया आपने। एंड अरविंद भी मौजूद हैं, लिखा है, माँ दुर्गा आपको मुश्किल वक्त ही में हिम्मत दे, हालात चाहे जैसे हो आपका भरोसा और हौसला बना रहे। क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शारदीय नवरात्र की मुबारकबाद। प्रीति जी लिखती हैं आज के थॉट को लेकर के, सच में एक ही नाव पर सवारी करना सभी को अपने एम की तरफ आसानी से ले जाता है। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। एंड हमारी गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से मौजूद हैं, लिखती हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आशु जी ने भी लिखा है, शायद हर चीज़ किसी अच्छे के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें बस हमें तोड़ने, बदलने और ये सिखाने के लिए आती हैं कि हर बार किसी अच्छे अंत का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं, कभी कभी ख़ुद को समेट कर आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा होता है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी और बहुत सच्ची बात कही आपने, थैंक यू सो मच। इरफान शाह आ गए हैं, और सिसक सिसक कर गेहूं रोए, फफक फफक कर धान, खेतों में फसलें नहीं उगने लगे मकान। आह क्या बात है, बात तो सही है, फैक्चुअल है। थैंक यू सो मच इरफान, स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो आपने हमको ट्यून कर लिया है 89.6 FM पे फ्रिक्वेंसी पर, इसके अलावा रेडियो गार्डन पर और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। सो चलिए भाई, अब मिल गए हैं, एक साथ हो गए हैं, तो अब बढ़ने वाले हैं और चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ। वापस से आएंगे तो आने के बाद बताने वाले हैं आपको आपकी सिटी की अपडेट।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यह आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड गोंडा।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9216-9976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। अब बताने वाले हैं आपको आज की गोंडा अपडेट्स के बारे में, यानी सिटी में क्या कुछ चल रहा है। सिटी अपडेट्स बताने के लिए सो व्हाट, लेट्स गो। और क्या,
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा।

तो चलिए अब आपको गुंडा की अपडेट्स से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहली जो अपडेट्स आ रही है वो चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें जो लगेंगी उसको लेकर के आ रही है। आपको बता दें, शहर के सुनियोजित और आधुनिक डेवलपमेंट के लिए ज़िला प्रशासन ने 33 करोड़ रुपए की एक प्लान तैयार किया है। नवयुग पालिका योजना के तहत 5 साल में यातायात व्यवस्था सुधारने, पार्कों का सुंदरीकरण, सार्वजनिक सुविधाओं के विकास और नगर पालिका की आय बढ़ाने से जुड़े काम जो है वो प्रस्तावित हैं। डीएम प्रियंका निरंजन ने कार्य योजना शासन को भेज दी है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संत राम ने बताया है कि बड़गांव LBS, अंबेडकर चौराहा, गुरु नानक चौराहा और ट्रैफिक लाइट लगाने का यहाँ पर प्रस्ताव है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए 3 जगहों पर हैवी ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे। यानी शहर में अब 3 जगह हैवी ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे, ताकि इससे नगर पालिका की आय में बढ़ोतरी भी होगी और ईवी के जो वाहन हैं उनको कहीं ना कहीं इनकरेज किया जा रहा है। इसके लिए विकास भवन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय और मनकापुर बस स्टॉप के पास में जगह स्पॉट की गई है। यानी एक मनकापुर बस स्टॉप के पास में, एक विकास भवन के पास में, एक मेडिकल कॉलेज से जो संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय है मनकापुर, यहाँ पर यहाँ ई रिक्शा सहित 2 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की जो योजना है वो हो रही है। 5 पार्कों का सुंदरीकरण भी होने वाला है। हाउसिंग कॉलोनी में मौजूद चिल्ड्रन पार्क, चेतना पार्क, क्रांति उपवन और सुंदरीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा मेवतियान में मौजूद फुरकानिया और सर्किट हाउस के पास नए पार्क डेवलप करने का प्रस्ताव है। गांधी पार्क स्थित जो टाउन हॉल है इसका भी कायाकल्प किया जाएगा।

इसके अलावा धौरहरा शाहपुर रास्ते को 59 करोड़ से चौड़ा किया जाएगा। सो लोक निर्माण विभाग ने धौरहरा शाहपुर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग ने 59 करोड़ की अनुमानित लागत से ई निविदा जारी की है। सो निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 15 महीने तक की समय सीमा तय की गई है। इसके बाद में संबंधित कार्यदायी संस्था को 5 साल तक का सड़क का रखरखाव भी करना होगा। सो रास्ते को चौड़ा करने के बाद सुदृढ़ीकरण धौरहरा बरगदी चरसड़ी कूरी मिठिया भटपुरवा रुदौली बेनीगंज और पस्का समेत करीब 30 गांव के लोगों को यहां पे आना जाना आसान होगा। अब चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल होमगार्ड भर्ती से जुड़ी हुई आ रही है। सो होमगार्ड भर्ती में जो सफल 826 कैंडिडेट्स हैं इनका स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस चरित्र सत्यापन जो है वो 12 अक्टूबर से आज से शुरू हो रहा है। सो पुलिस लाइन में सुबह 9 बजे से होने वाले इस प्रोसेस में 661 पुरुष और 165 महिला अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। सो जिला कमांडेंट होमगार्ड्स कार्यालय के हिसाब से पुरुष अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण 12 से 20 अक्टूबर तक होगा और 21 से 23 अक्टूबर तक छूटे हुए अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व दिवस निर्धारित किए गए हैं। महिला अभ्यर्थियों की जांच 24 से 26 अक्टूबर तक होगी। 27 अक्टूबर को उनके लिए रिजर्व दिवस रखा गया है। सो हर रोज 75 कैंडिडेट्स का परीक्षण होना है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और शहर से गांव तक की सड़कें गड्ढा मुक्त बनाने का प्लान भी चल रहा है। बारिश के बाद गड्ढों में तब्दील सड़कों से लोगों को जल्द राहत दिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। विभाग ने ग्रामीण जो रास्ते हैं वहां 15 नवंबर और बाकी जिला मार्गों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए संबंधित खंडों को निर्देश जारी किया गया है। बारिश की वजह से जिले में कई सड़कों के हालात खराब हैं। जगह जगह गड्ढे से अवगमन में परेशानी होती है। त्योहारों के बढ़ने पर यातायात जो बढ़ता है उसको देखते हुए विभाग ने मरम्मत का काम कराने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो आपको हम बता दें कि घटिया सड़क निर्माण को लेकर के ग्रामीणों ने काम भी रुकवाया है। जी हाँ, सो झंझरी ब्लॉक के शुक्लाहाता में आरसीसी सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप लगा करके ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया। चूंकि वहां के लोगों का कहना है कि 5 बोरी सीमेंट डालने पर आपत्ति जताई तो ठेकेदार ने 14 बोरी डालने को तैयार हो गया। शिकायत के बावजूद अधिकारी जाँच करने नहीं पहुंचे और कल संडे को दोबारा निर्माण शुरू कराने की कोशिश हुई, लेकिन ग्रामीण जो है वो गुणवत्ता की जांच होने तक काम के लिए तैयार नहीं हुए हैं। सो जांच के बाद अब शुरू होगा काम। आपको बता दें कि अवर अभियंता ने बताया है कि ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मानकों की अनदेखी से इनकार किया है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि शिकायत मिली है। निर्माण की जिम्मेदारी अवर अभियंता की है। उनको मौके पर नहीं पहुंचने पर वो खुद जांच करेंगे। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने निर्माण रोक दिया है। जांच के दौरान बाद में काम शुरू हो पाएगा। इसके अलावा आपको हम बता देते हैं अगली अपडेट की तरफ ले चलते हैं। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है गोंडा की आर्या जो है वो बनी है मिस मेट गाला। जी हाँ, सो जिले की डॉक्टर आर्या सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और मुंबई में 5 अक्टूबर को जो आयोजित मिस मेट गाला 2026 कॉन्टेस्ट हुआ उसमें इन्होंने विजेता का खिताब अपने नाम किया है। इसमें देश भर से 800 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में डॉक्टर आर्या ने जीत हासिल की। खास बात ये रही कि इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं देखी जाती बल्कि डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पर उनका जो आत्मविश्वास है और जो सामाजिक सरोकार है ये भी देखा जाता है। सो रगड़गंज निवासी डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर एकता सिंह की जो बेटी हैं डॉक्टर आर्या की अचीवमेंट को जिले के लिए गौरवपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ। सो अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है स्पेशल ट्रेन का गोंडा में ठहराव को लेकर के। जी हाँ, सो त्योहारों और पैसेंजर्स की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने फिरोजपुर कैंट पूर्णिया के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन का संचालन फिरोजपुर कैंट से 26 नवंबर तक हर बृहस्पतिवार और पूर्णिया से 28 नवंबर तक हर शनिवार को होगा। सो दोनों दिशाओं में 8-8 फेरे लगाए जाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि 04634 फिरोजपुर कैंट पूर्णिया साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बृहस्पतिवार को फिरोजपुर कैंट से शाम

5:30 बजे रवाना होगी और ये शुक्रवार दोपहर 12:40 पर गोंडा पहुंचेगी। वापसी में 04633 पूर्णिया फिरोजपुर कैंट स्पेशल शनिवार को पूर्णिया से 6 बजे निकलेगी और ये शनिवार की शाम 7:30 पर गोंडा पहुंचेगी और 7:35 पर रवाना होगी। ट्रेन का जो ठहराव होगा वो सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, चंडीगढ़, अम्बाला कैंट, गोरखपुर, छपरा, हाजीपुर, इसके समेत 18 स्टेशन्स कई स्टेशन्स पर होगा। इसके अलावा इसमें कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें से 5 जो है वो AC थर्ड, 6 जो है वो स्लीपर और 5 जो है वो सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि गोंडा तुलसीपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन भी शुरू हो रहा है। सो नवरात्र मेले में पैसेंजर्स की फैसिलिटी के लिए रेलवे गोंडा से तुलसीपुर के बीच अनारक्षित मेला विशेष ट्रेन चलाएगा। ट्रेन का संचालन जो है वो रविवार से शुरू होगा, जो 25 अक्टूबर तक गोंडा से, 12 से 26 अक्टूबर तक तुलसीपुर से हर रोज किया जाएगा। सो 05078 गोंडा तुलसीपुर मेला स्पेशल गोंडा से रात 11:30 बजे रवाना होगी और ये सुभागपुर, इटिया थोक, भवानीपुर कला, बलरामपुर, झारखंडी, गैनजावा, कौवापुर, लक्ष्मणपुर होते हुए रात 1:55 यानी 2 बजे तुलसीपुर पहुंचेगी। वापसी में 05077 तुलसीपुर गोंडा मेला स्पेशल रात 3:10 पर तुलसीपुर से चलेगी और सुबह 5 बजे गोंडा पहुंचेगी। रास्ते में लक्ष्मणपुर, कौवापुर, गैनजावा, झारखंडी, बलरामपुर, भवानीपुर कला, इटिया थोक, सुभागपुर होते हुए स्टेशन्स पर रुकेगी। सो ये एक अपडेट जो थी वो लोकल मेले को लेकर है, जो कि देवी पाटन मंदिर में मेला लगता है उसको लेकर के। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पंडालों से विसर्जन स्थान तक होंगे अग्नि और विद्युत सुरक्षा के इंतजाम। जी हाँ, सो पंडालों की रोशनी और विसर्जन के दौरान करंट से होने वाले हादसे को रोकने के लिए बिजली विभाग के ने जो है वो दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सो पंडालों में सुरक्षित वायरिंग, उचित अर्थिंग और अग्निशमन के इंतजाम जो है वो जरूरी करार दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है साइबर ठगों को सिम बेचने वाले गिरफ्तार भी हुए हैं। सो देहात कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की जो संयुक्त टीम है इसने फर्जी KYC और कूटरचित आधार कार्ड के जरिए सिम एक्टिव करके साइबर अपराधियों को बेचने के आरोपी अजय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं खरगुपुर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल म्यूल बैंक खाते के मामले में वांछित दिवाकर शुक्ल को गिरफ्तार किया है। सो पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, एयरटेल के 2 सिम कार्ड और फर्जी आधार कार्ड जो बरामद किए हैं। सो फिलहाल आपको हम बता दें कि COCT ने बताया है देहात कोतवाली क्षेत्र के ठठिया मठिया निवासी जो हैं अजय कुमार सिंह का सिम अधिकृत विक्रेता था। वो सिम खरीदने या पोर्ट कराने वाले ग्राहकों से सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर एक से ज्यादा बार फेस KYC कराता था। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ संदिग्ध लगता है KYC के दौरान तो आप भी समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसमें बताया यही गया है कि फिलहाल ये जो अधिकृत विक्रेता था वो सिम खरीदने या फिर पोर्ट कराने वाले जो कस्टमर्स आते थे उनसे सर्वर डाउन होने का बहाना बना करके एक से ज़्यादा बार फेस KYC कराता था। इसके बाद कस्टमर को एक सिम देने के साथ दोबारा कराई गई KYC का जो है वो दुरुपयोग करके दूसरा सिम भी एक्टिवेट कर लेता था। सो जांच में फोटो एडिट करके फर्जी आधार कार्ड तैयार करने और दूसरे कस्टमर्स की फेस ID का जो है गलत इस्तेमाल करने की बात भी सामने आई है। सो उन्होंने बताया कि आरोपी इन सिम कार्डों को साइबर अपराधियों तक पहुंचाता था, बदले में उसे साइबर ठगर की जो है रकम 25% कमीशन या नकद कुरियर से मिलती थी। इसके जरिए जारी सिम कार्डों के खिलाफ कई सारे राज्यों में विभिन्न साइबर अपराधी जो धोखाधड़ी की शिकायत मिलती हैं उसके बाद शुरू हुई थी। और फिलहाल अब आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो भी आपके शहर गोंडा से ही आ रही है। सो फिलहाल आपको हम बता दें कि आज कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। आज जो है वो सुबह 7 बजे से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिसवा मनकापुर में NCC कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि आज अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता जो है वो शुरू हो रही है। सो
सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जो है आज मंडे से 3 दिवसीय अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सुबह 12 से 14 अक्टूबर तक चलने वाले इन कॉन्टेस्ट में जिले के 9 विद्यालयों के 308 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे और पहले दिन वॉलीबॉल और खो खो के मुकाबले होंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया भी है कि 13 और 14 को अंतर विद्यालयी ताइक्वांडो प्रतियोगिता होगी जिसमें 14 को सभी खेलों में फाइनल मैच और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा ऑफकोर्स आरटीई से 6,339 बच्चों को मिला है ऑफकोर्स एडमिशन। आरटीई के बारे में ज़रूर हमको रूबरू रहना चाहिए और इसके लिए हमको अवेयर भी होकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये सब कुछ जो है अपडेट्स वो समझ में आ गई होगी और आप तक बखूबी पहुंच गई होगी। तो चलिए भाई अब चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, जो कि आज काफ़ी सारी अपडेट्स हमने बताया कि गोंडा में क्या कुछ नया होने वाला है, किस तरह से ईवी चार्जिंग स्टेशंस 3-3 आने वाले हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, नगरपालिका का नया कार्यालय बनने वाला है, सड़क का चौड़ीकरण, ट्रेन का ठहराव और साइबर ठगी का मामला, इसके अलावा होमगार्ड भर्ती से जुड़ा स्वास्थ्य परीक्षण, ये सब कुछ हमने आपको बताया आज आपकी अपडेट्स में। आई होप कि आपके लिए काफ़ी कुछ रहा है आज की गोंडा अपडेट्स में। अब चलते हैं आगे की तरफ यानी अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। आप बने रहिए गोंडा एफएम पर, क्योंकि आने के बाद पिटारे में बहुत कुछ है।

0: अरे पूरा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ।
1: और ये पहली बार कदमों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: 2 साल की उम्र में 3 दिन की बहन के साथ उन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया। अब बड़े होकर के देवेंद्र ने करीब 27 लाख बच्चियों को बाल विवाह से बचाया है। कौन है आखिर ये देवेंद्र और 27 लाख बच्चियों को बाल विवाह से बचाया है? सच में सुनकर के हैरान करने वाली बात लगती है। तो चलिए बताते हैं कौन है हमारे ये देवेंद्र साहब, आज के सुपर हीरो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तुम सच में ये हैरान कर देने वाला बात है, लेकिन सच है, बिल्कुल सच है। बिल्कुल ऐसी है जैसे एक रियल हीरो होता है, बिल्कुल वैसे ही। सो 2 साल की उम्र में 3 दिन की बहन के साथ इन्हें सड़क पर छोड़ दिया गया था और अब बड़े होकर के तकरीबन 27 लाख बच्चियों को इन्होंने बाल विवाह से बचाया है। जाहिर है अब आप सोच रहे हैं कौन है ये। तो इनको दरअसल हम बात देवेंद्र की कर रहे हैं कि 2 साल की उम्र में देवेंद्र कुमार को इनकी 3 दिन की नवजात बहन के साथ दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में छोड़ दिया गया था। सालों बाद जब इनकी बहन पर बाल विवाह का खतरा मंडराने लगा तो देवेंद्र ने उसकी ज़िंदगी और उसके फ्यूचर बचाने की लड़ाई लड़ी, लेकिन वो उन दूसरी अनगिनत लड़कियों के बारे में भी सोचते रहे जिन्हें बाल विवाह जैसी कुप्रथा में धकेल दिया जाता है। सो इसी सोच के साथ इन्होंने 2010 में लाडली फाउंडेशन की शुरुआत की। इस सफ़र की शुरुआत इन्होंने अपनी बहन से की थी ताकि वो अपने ज़िंदगी के फैसले खुद से कर सके, पर आज ये एक ऐसे आंदोलन में बदल चुका है जिससे 27 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं और लड़कियों की पढ़ाई में मदद करने और बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाने से लेकर के 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक डिजिटल शिक्षा पहुँचाने तक ये संस्था लड़कियों को मौका देने के लिए काम करती है जो अक्सर उनसे छीन लिया जाता है, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करने का मौका मिलता है। सो कामिनी की अगर हम कहानी बताएं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो इनके परिवार में 12th के बाद इनकी पढ़ाई रोकने की बात चल रही थी और आगे शादी का जो ऑप्शन है वो देखा जा रहा था। लाडली फाउंडेशन ने इनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद की, ये एक बेनिफिशरी के तौर पर इस संस्था से जुड़ी एक लाभार्थी के तौर पर, फिर वॉलंटियर टीचर बनी, अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाया और आखिरकार इसी संस्था की ट्रस्टी भी बन गई। आज ये दूसरी लड़कियों को भी मौके दिलाने में मदद कर रही हैं जिन्हें ये खुद लगभग खो चुकी थी, और यही किसी बुरे चक्र को तोड़ने का असली मतलब है। सो सिर्फ एक लड़की को उसके फ्यूचर से बचाना नहीं है, बल्कि उसने खुद नहीं चुना था, बल्कि ऐसा भविष्य बनाने में मदद करना है जिसे चुनने का हक उसके पास हो। यानी ऐसा नहीं कि जो चीज़ बता दिया जाए वही है, फ्यूचर तो वो है जो इंसान अपनी लाइफ का खुद ही चुने। और हर किसी को हक है भाई, हर किसी को हक है, आपको है, मुझे भी है, होना भी चाहिए। एक ही लाइफ है, मेरी लाइफ है। हम बेहतर जानते हैं कि हमको आगे करियर में क्या करना है, हमको सेटल कहाँ होना है, हमको कब चीज़ों को स्विच करना है, कब कहाँ से निकल जाना है, कब कहाँ पहुँच जाना है, ये हम खुद तय करने वाले हैं। तो बस लाडली फाउंडेशन कुछ इसी तरह का काम कर रही है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनसे उनकी मर्जी ना पूछ करके सीधे सीधे फैसला सुना दिया जाता है कि ऐसा होने वाला है, जबकि उसमें बिल्कुल भी रजामंदी उन लड़कियों की नहीं होती है। सो लाडली फाउंडेशन के देवेंद्र कुमार की स्टोरी को खुद आपने सुना। जैसा कि हमने बताया कि 2 ही साल के थे और 3 दिन की इनकी बहन थी और इन्हें दिल्ली के झुग्गी बस्ती में छोड़ दिया गया था, लेकिन आज इन्हीं देवेंद्र ने 27 लाख से ज़्यादा बच्चियों को बाल विवाह होने से रोका है। ना सिर्फ बाल विवाह होने से रोका बल्कि उनको फैसला लेकर के आगे पढ़ने में और अपने सपने पूरा करने में मदद भी की है, और लगातार लाडली फाउंडेशन करता जा रहा है। सो फिलहाल आज के इन रियल हीरो यानी देवेंद्र कुमार के बारे में सुन करके आपके क्या ख्याल आते हैं, चलिए फटाफट से जो भी सोच रहे हैं हमको बता दिए, और साथ ही साथ बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि ये शो अब आ चुका है पूरी तरह से उफान पर और हम बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। सो चलिए सुनते रहिए, यानी स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

जी हाँ जी हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपके मॉर्निंग शॉक है आरजे अतनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग शॉक आरजे अतनान। फिलहाल वक्त है आपको स्पोर्ट्स की तरफ ले चलने का और बताने का कि भाई स्पोर्ट्स में क्या कुछ चल रहा है, यानी फिलहाल भारत ने कितने रन्स का जो है वो लक्ष्य दिया हुआ है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। कैसी परफॉर्मेंस चल रही है ये भी आप जानने वाले हैं। और आइए इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस बार हाज़िर होकर के आपको ले चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स की तरफ।

0: हाँ जी, तो भाई जैसा कि हमने वादा किया था कि आने के बाद आपको स्पोर्ट्स की तरफ ले चलते हैं और बताते हैं कि फिलहाल वेस्टइंडीज़ के खिलाफ क्या कुछ चल रहा है टीम इंडिया में और साथ ही टूर्नामेंट में। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं खेल जगत की तरफ।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, तो आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम की पुरानी कहानी होलकर स्टेडियम में भी कल संडे को दोहराई गई। सो अभिषेक शर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचने की नींव रखी, लेकिन बाकी बल्लेबाज सस्ते में जो है वो लुढ़क गया। सो एक वक्त तक 275 रन के आसपास पहुंचती दिख रही टीम इंडिया 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 223 रन ही बना सकी। जवाब में जो है फिलहाल यानी इस न्यूज़ के आने तक वेस्टइंडीज़ ने 4 ओवर में एक विकेट पर 35 रन जो है वो बना लिए। उसे मुझे उम्मीद है कि आपने क्या देखा था कि भाई इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज़, ऑफ कोर्स इसका क्या रहा मैच, यानी आपने अगर देखा होगा तो कितना मज़ा आया था और कितना एंजॉय किया था आपने, ये हमको अब बता सकते हैं। और फिलहाल आपको किसको ज़्यादा वोट करने का मन कर रहा है, मतलब खिलाड़ियों में अगर हम माने तो भाई कौन जो है बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, हालांकि पूरी टीम का कोलैबोरेशन होता है, लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें फाइनली जो है वो भारत ने वेस्टइंडीज़ को 14 रन से हरा ही दिया है। जी हाँ, सो भारत ने वेस्टइंडीज़ को ये जो T20 चल रहा है इस टूर्नामेंट में हरा दिया है 14 रन से, और कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी सामने देखने को मिली। और भारत बनाम वेस्टइंडीज़ का जो है ये तीसरा T20 मैच था जो कि इंदौर में खेले गए। मैच में भारत ने वेस्टइंडीज़ को 14 रन से हरा करके 2-1 से बढ़त भी हासिल कर ली है। सो अर्शदीप के शानदार परफॉर्मेंस के बाद इसी बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज़ को 14 रन से हरा दिया। इससे पहले अभिषेक शर्मा की 30 गेंदों पर खेली गई 69 रन की पारी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज़ के कप्तान शाई होप के जरिए टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर की टीम के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए 5 मैच की T20 सीरीज के तीसरे मैच में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद भारत ने 20 ओवरों में 223 रन बनाए और वेस्टइंडीज़ ने रांची में एक लंबा बड़ा स्कोर का पीछा करते हुए इनडायरेक्टली जीत हासिल की, जिसके बाद सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सो भारत की बल्लेबाजी तो लगातार जो है वो प्रभावशाली बनी हुई है, लेकिन गेंदबाजी जो है वो फिक्र का विषय बनती जा रही है। वनडे सीरीज के दौरान शुभमन गिल को भी इसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और T20 सीरीज में भी अय्यर की जो विपक्षी टीम है इसको रोकने में नाकाम रहे। हालांकि इस बार गेंदबाजी आक्रामक जो है थोड़ा सा अलग दिखी हुई है। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ में उतार चढ़ाव भरा है इसका प्रदर्शन, और भारत की तरह इनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी दमदार रही है, लेकिन भारत के अपोजिट में देखा जाए तो इनकी गेंदबाजी ने इस सीरीज़ में एक बार फिर से उम्मीद की प्रदर्शन नहीं किया, जबकि भारत ने बीच बीच में शानदार गेंदबाजी की है। सो फिलहाल ये तो मैच के बारे में था जो कि हमने बताया, T20 जो सीरीज़ है ये वेस्टइंडीज़ के साथ में भारत जो खेल रहा है। सो 14 रनों से जीत हासिल की कल संडे को हुए मैच में, एंड आई होप कि भाई आपने भी देखा होगा और ज़रूर एंजॉय किया होगा मैच, क्योंकि कल हमने देखा था भाई कई सारे लोग जो हैं वो बिज़ी थे, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर थे और कुछ लोग कॉमेंट्री सुन रहे थे। सो ऑफकोर्स ये मैच ज़बरदस्त रहा, बहुत गज़ब का रहा, बट आपको कैसा लगा ये तो आप बता ही सकते हैं। आने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम जो है कि भाई आप जॉब्स कहाँ देखे, स्पेशली फ्रीलांसिंग की जॉब घर बैठे करने वाली, तो चलिए इसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं, और ये जो बात है ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम की होने वाली है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। सो भाई प्लीज़ प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर समझिएगा और ट्राई करके देखिएगा, शायद आपके काम की सच में काफ़ी ज़्यादा निकल जाए। फिलहाल आप बने रहिए अपने 89.6 FM पर, क्योंकि यही तो है गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी भाई, सुबह ही जिस वादे के साथ हम फिलहाल आपको बोल के गए थे कि वापस आने के बाद आपको बताने वाले हैं किस तरह से आपको जॉब्स देखनी है, स्पेशली अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की यानी घर बैठे करने की, तो चलिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या है और इस पर क्या हो रहा है, सब कुछ बताते हैं आपको आपके इसी मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

अब तो ऐसे कई लोगों की तादाद बढ़ गई है जिनको घर से काम करना अच्छा लगता है। ना डेली तैयार होने की टेंशन, ना ऑफिस जाने की जरूरत, बस लैपटॉप या कंप्यूटर खोल करके काम शुरू हो जाता है। सो अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं और इसी उलझन में है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर ऐसी जॉब्स मिलेंगी, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में कहां से मालूम होगा, अप्लाई कहां करें, तो आइए आपको हम बताते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है। दरअसल आपको बता दें कि पोर्टल नेशनल करियर सर्विस यानी NCS पर सिर्फ ऑफिस वाले ही नहीं बल्कि घर से काम करने वाली नौकरी भी मिल रही है। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, महिलाएं हों, फ्रेशर्स हों या फिर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हों, सो इस प्लेटफॉर्म पर जॉब ढूंढ सकते हैं। जो कैंडिडेट्स अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे, वो इस प्लेटफॉर्म को नौकरी पाने के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो सवाल आता है कि NCS पोर्टल क्या है। NCS का फुल फॉर्म है नेशनल करियर सर्विस। सो ये प्लेटफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट के श्रम और रोज़गार मंत्रालय की एक पहल है जो नौकरी ढूंढने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी फील्ड में आई नई जॉब्स की अपडेट टाइम टाइम पर मिलती रहती हैं। सो कैंडिडेट्स अपनी एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ नौकरी सर्च कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर जॉब फेयर एडवाइज और स्किल से जुड़े डिटेल्स भी मिलती है जो कि कैंडिडेट्स को जॉब के लिए रेडी बनाने में मदद कर सकती है। सो तीन ज़रूरी बातें जिसको आपको ध्यान रखना है जॉब देखते हुए NCS पोर्टल पर, क्या है वो बातें, चलिए बताते हैं। दरअसल आपको हम बता दें कि NCS पोर्टल पर कैंडिडेट्स बहुत ही सिंपल से कुछ फेजेस के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, आप बिल्कुल फ्री ये प्रोसेस पूरा करके वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तीन चीज़ों को ख़ास तौर पर आपको ख्याल रखना होगा। पहला है स्किल, दूसरा है सुविधा और तीसरा है करियर। सो जॉब ढूंढते वक्त इनका ख्याल रखेंगे तो आपको नौकरी के मिलने के बाद दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ इंटर्नशिप भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो जॉब्स, करियर गाइडेंस, जॉब फेयर, करियर सेंटर जैसे ऑप्शंस और जॉब की अपडेट एडवाइस भी आप ले सकते हैं। सो NCS का क्या कहना है कि काम की तलाश अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। NCS पोर्टल पर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना है और अपनी स्किल्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सही जॉब भी रोल खोज सकते हैं। यस, अब बात आती है कि भाई वर्क फ्रॉम होम जॉब कैसे खोजें NCS पर। जाहिर है कई लोगों को मन करता है कि वर्क फ्रॉम होम करें यानी घर से ही काम करें। तो बात आती है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढे कैसे NCS पर। तो बहुत ही कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप यहां पर जॉब सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आप नेशनल करियर सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट ncs.gov.in पर जाएं। यहां होम पेज पर जाकर सर्च जॉब्स वाले पेज पर आपको जाना होगा। तीसरे स्टेप में अब आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से जिस तरह की जॉब्स चाहिए होंगी, जैसा डेटा एंट्री, कंटेंट राइटर, कस्टमर सपोर्ट, इसको आपको लिखना होगा। एडवांस सर्च वाला जो ऑप्शन है वो खोलते ही आपका वर्क नेचर फिल्टर में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिलेगा, और अगर यहाँ अवेलेबल नहीं होता है तो आप रिमोट WFH लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम। अप्लाई करने से पहले कंपनी सैलरी एलिजिबिलिटी जैसे काम की जानकारी पहले पूरी तरह से ज़रूर से चेक कर लेना है। एलिजिबिलिटी के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। सैलरी आपके लिए सही है कि नहीं है, कंपनी कौन है, ये सब आप ज़रूरी जानकारी पहले ही ले लें। अगर सब कुछ आपको ठीक लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की डिटेल जो है वो सही सही भरना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, आपसे कम्युनिकेट कर पाए। सो ये है NCS पोर्टल के बारे में जहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं और यहाँ पर आपको मिल सकता है। चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं इस वक्त इस शो को सुन रही हैं जो काम करना चाहती हैं और घर से ही, लेकिन उनको समझ में नहीं आता करना है कैसे क्या है। तो आप फिलहाल फ़ोन पर जा कर के इसकी जानकारी पूरी तरह से ले सकती हैं, निकाल सकते हैं NCS पोर्टल के बारे में। और अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप लैपटॉप मैनेज करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं या जिस भी मोड में करने के आप दे सकते हैं
उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप ज़रूर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल आई होप कि भाई ये जानकारी तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके लिए हर कोई कोशिश करता है कि भाई अपनी मेन जॉब के साथ भी कोई वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, या फिर हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, हम घर भी संभाल रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे भी जॉब मिल जाएगी तो मैं घर से देख लूँगा। यानी ऐसे कई सारे पुरुष भी हैं और कई सारी महिलाएँ भी हैं जो घर से ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ के कुछ ऐसे हालात हैं कि भाई वो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और उनको अपने ही शहर में रह करके कुछ ऑनलाइन काम करने का अगर मौका मिले तो ये अच्छी बात है। सो NCS पोर्टल पर आप जा करके एक्सप्लोर कर सकते हैं और आ करके अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि आपका फ़िलहाल एक्सपीरियंस कैसा रहा NCS पोर्टल के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की है, साथ ही साथ आप उन लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएँगे जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी जो लोग जॉब्स देख रहे हैं और वो चाहते हैं जॉब करना, आप उन तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुंचाने वाले हैं। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी हमने आपको बताई है, याद है या भूल गए? अच्छा चलिए फिर से बता देते हैं। सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ncs.gov.in। जी हाँ, ncs.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पर जा करके आपको अप्लाई करना है। इसमें वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको घर बैठे, और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकेंगे और शायद ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम का निकल आए। हो सकता है आपके पॉकेट मनी आपके एक्सपेंसेस को बेयर कर ले, हो सकता हो कि आप कोई सही ऑर्गेनाइजेशन को मीट कर लें और उसके बाद आपका काम भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि होने को तो हो ही सकता है, राइट? बस कोशिश क्या करना है हमको, थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स मारने हैं, थोड़ा सा ट्राई करना है और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट हमारे सामने होगा। सो डेफिनेटली आप भी NCS पोर्टल का फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं। एटलीस्ट एक बार आप फ़ोन पर ही गूगल पर जा करके उसके बारे में और डिटेल्स निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको बता दिया है। और ये आपके काफ़ी काम का होने वाला है, मुझे भी इसके बारे में ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपके काफ़ी काम का हो, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कहीं इंगेज हैं, कोई काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, और साथ ही साथ उनको लगता है कि इतना वक्त बीच में भी रहता है, प्रॉपर रहता है कि मैं अपनी इस स्किल वाला काम को कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और वो काम आप आराम से मैनेज कर लेते हैं अपने दूसरे काम के साथ में। सो ऑफकोर्स ये फिर मौका आपके लिए है जिसमें आप सारी डिटेल्स को देखते हुए, उस जॉब के नेचर को समझते हुए, अपनी स्किल्स को समझते हुए आगे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। आई होप कि भाई ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर बैठे इस तरह की जॉब करना चाहते हैं। हो सकता हो वो स्टूडेंट हो सकता हो वो कोई वर्किंग महिला हो सकता हो वो हाउस मेकर हो, कोई भी हो सकता है और जॉब कर सकता है। सो NCS पोर्टल को एक बार आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर आपके लिए वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। फिलहाल कैसा लगा NCS पोर्टल के बारे में जान करके, ये भी आप हमको चैट बॉक्स पर आ करके बता सकते हैं। और फिलहाल हम लेकर चल रहे एक बेहतरीन से लाजवाब से सॉन्ग को सुनाने के लिए।

0: तो भाई चलिए एक बार वापस से आपका वेलकम कर लेते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और साथ ही साथ कुछ मैसेजेस आ चुके हैं चैट बॉक्स पर, उनकी तरफ भी चलना है। यस सो लेट्स गो।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा।

तो एक कंटेंट भी है प्रीति शुक्ल जी का, जो कि हमारे पास शुक्रवार को आया था, किसी कारणवश हम ले नहीं सके थे। आज हम आप तक जरूर पहुंचाने वाले हैं। और आपने लिखा था फलसफा जिंदगी का जी। सुप्रीति जी ने लिखा था, सुनो सबकी, करो अपने मन की, यही है जिंदगी का वास्तविक फलसफा। लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना, बिन मांगे मुफ्त की सलाह देना, लेकिन स्वयं उचित राहों पे ना चलना। अपनी सद्बुद्धि से जो लोग सोच विचार कर उचित मार्ग अपनाते हैं, वही मंजिल पाते हैं। राह भटकाने वाले होते हैं बहुत अधिक, लेकिन जो उचित मार्गदर्शन करते हैं वही होते हैं अपने सच्चे मित्र हितैषी। इसलिए प्राथमिकता यही है, जो स्वयं पर भरोसा कर अपनी सद्बुद्धि का उचित मूल मंत्र अपनाएगा वही व्यक्ति अपनी उचित मंजिल पाएगा। क्या बात है, बहुत खूब माई प्रीति जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने बहराइच से। थैंक यू सो मच टू यू। आप जो सोचती हैं, जो फील करती हैं, उसको एट रैंडम लिख देती हैं और हम तक पहुंचा देती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लिटरली इट्स अप्रिशिएबल, बहुत बड़ी बात है। सो इसके अलावा ऑफकोर्स चैट बॉक्स पर मैसेजेस आए हुए हैं। प्रमुख कुमार फ्रॉम लुधियाना, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, कैसन हैं आप? बढ़िया हैं भैया, अपन बतावा। गुड मॉर्निंग टू यू, आपको भी आपका स्वागत है, वेलकम है प्रमुख मॉर्निंग वाले स्पेशल शो में। आसिफ अंसारी जी हैं हैदराबाद से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू आसिफ जी, आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो के मॉर्निंग जॉग आर जे अदनान। प्रीति जी ने लिखा, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन NCS पोर्टल के बारे में, थैंक यू सो मच कि आपने सुना और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी, सबसे अच्छी बात ये। और ये इन्फॉर्मेशन आप बाकी लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। ऑफकोर्स हम आप सबसे कह रहे हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी काम की हो सकती है किसी और के लिए, किसी के लिए काफ़ी बड़ी हेल्प हो सकती है, वो इसी चीज़ की तलाश में हो और आप उनकी तलाश को मुकम्मल कर दें। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम अवस्थ विकास हैं सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिल से जिंदगी क्या है, एक लतीफ़ा है, लेट में आया तो क्षमा बोलने का यही तरीका है। नाइस। सच में लेट आए और सच में आपको ये जो सॉरी बोलने का जो तरीका है ना, ये काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। थैंक यू सो मच टू यू। और मुझे लगता है आज तो बहुत सारी बातें हुई और इन सारी बातों का कहीं ना कहीं हम लोगों ने काफ़ी फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करने का सोचा है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया है। एंड यस प्रीति जी, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे थॉट्स लिखती भी हैं और साथ में हम तक पहुंचा भी देती हैं। आपकी लिखावट को हम हमेशा यही कहेंगे, जारी रखिए, क्योंकि वो आपको बेहतर पता है कि आपकी लिखावट आपके लिए क्या मायने रखती है। सो बहुत मायने रखती है, जो लोग लिखते हैं वो हर शख्स जानता है कि लिखना आखिर कितना मायने रखता है ना। सो भाई, आज के शो में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा फन, बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे म्यूजिक, बहुत सारी बीट्स, ऑल ओवर। आपको ये शो कैसा लगा आज का, हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल अब चूंकि हमारे चलने का वक्त हो चल रहा है, सो आपसे हम इजाज़त ले रहे हैं, हमको आप इजाज़त दें और इसके बाद हम वापस से मिलने वाले हैं आपको आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, यानी कल की मॉर्निंग में। सो फिलहाल बने रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर, क्योंकि यही है गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
6: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
5: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
6: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
5: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
7: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
7: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
7: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी समता गांव की गूंज का नया एपिसोड लेके आई हूँ फिर से, जिसमें हमारी मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे की मधुर मधुर आवाज में गीतों की माला पिरोई गई है। और इस बार हमने गांव की गूंज को अवधि के रूप में दिया है।
9: उठो श्वेता, समता, तुम दोनों क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? उठो, तुरंत उठो, बिस्तर छोड़ो।
10: क्या किरण दी, क्या हो गया? क्या ऑफर आ गई?
11: अभी तो केवल 5 ही बज रहे हैं।
12: अब क्या हो गया किरण दी, क्यों हम सभी को सुबह सुबह जगा दी हैं?
9: अरे सभी उठोगे तो बताऊंगी ना, सभी को गांव लेकर चल रहे हैं। रोज रोज बोलते थे ना कि गांव चलना है, गांव चलना है, तो चलो सभी गांव की सैर करने निकलते हैं।
12: यानी हम सभी को गांव की ठंडी ठंडी हवा और वो खेत खलियान देखने को मिलेंगे।
9: हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो सभी को ले चल रही हूँ। अच्छा श्वेता, वो ढोलक मंजीरा हारमोनियम सब रख लिया है ना?
11: हाँ हाँ किरण दी,

0: अरे किरण जी, बड़ा मजा आया सुन के और गाते बजाते। हम कब रामपुर आ गए पता ही नहीं चला।
1: हाँ समता, सच में। पर सुनो, वहाँ शुद्ध अवधि में ही बात करनी है हम सभी को, ताकि गांव वालों को तनिक भी ये ना लगे कि हम सब शहरी हैं।
0: अच्छा तो चलो, जरा हमों की गाना सुनाए दो।

0: अरे भाई, रामपुर में पहुंच कर हमें तो सब भूल ही गए।
1: अरे किरण दी, नमस्कार, कैसी हैं? और आप कहाँ इन कुमकरणों को इतनी सुबह सुबह उठा लाई हैं?
2: अरे जिम्मी, कैसी हो भाई, ठीक हो?
1: हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ।
3: किरण दी, वो बाकी सूरतिया वाला गाना सुना दीजिए जरा।
0: लगता है तुम्हें जिम्मी को देखकर ये बाकी सूरतिया वाला गाना याद आया है ना?
3: समझ तो गई।

0: वाह किरण दी, मजा आ गया।
1: श्वेता देखो गांव में कितनी रौनक है ना, देखो देखो बैल से खेत जोते जा रहे हैं।
2: हाँ और देखो ठंडी ठंडी हवा के साथ सूर्य देवता भी मुस्कुरा रहे हैं, पर अपना प्रकोप नहीं दिखा रहे हैं। ये होता है हमारा गांव, समझे?
0: किरण दी वो एक गाना गाती थी ना आप, जिसमें बयरिया चुनरिया और आम की बगिया का वर्णन था, हम सबको भी जरा वो गाना सुना दीजिए ना।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, लो भाई

0: वो देखो उधर, अरे उधर देखो उधर, आम की बगिया में झींगुर। वाह कितना मनमोहक दृश्य लग रहा है।
1: और वो देखो, किसान काका ने हम सबके बैठने के लिए खेत में ही पूरा इंतजाम कर दिया है।
2: आओ आओ बिटिया, सभी पहले ही तरबूज के शरबत पियो और हमहू गनवा सुनाए दियो।
3: तो लीजिए किसान काका सुना देते हैं।

0: वाह किरण दी, अच्छा अब सभी चलो चलो पीपल के पेड़ के पास।
1: क्यों भाई, वहाँ क्यों?
0: अच्छा चलो तो सभी को बताती हूँ भाई, वहाँ बिंदु दीदी सभी के लिए सत्तू लाई है और चटपटे प्याज के पकौड़ों के साथ चटनी भी है, वहाँ तो चलो सभी जल्दी।
2: अच्छा बताओ, गर्मियों में कच्चा प्याज क्यों खाते हैं?
1: मैं बताऊं?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं?
1: क्योंकि हमें लू ना लगे।
2: अरे वाह जिम्मी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो बच्चा।
1: अच्छा किरण दी, एक गाना जो आप गाती थी वो सासू पयनिया कैसे जाऊं, वो सुना दीजिए ना।

0: कितना प्यारा मौसम है यहाँ का और कितना फर्क है गांव के और शहर के टेम्परेचर में। इस समय यानी 1 बजे है, शहर में निकलो तो शरीर ही जलने लगता है और यहाँ गांव में तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है।
1: सच कहा समता, वाकई में। अरे ये क्या है, ये तो पॉलिथीन से बना बेना है। वाह कितना सुंदर है ना, देखो देखो देखो जिम्मी।
2: हाँ यहाँ ऐसे ही बनते हैं, ठंडी ठंडी हवा देते हैं।
3: वो देखो बच्चों की टोली आ रही है, तुम सभी को कुछ देने। इनके हाथों में कमल के फूल हैं जो यहीं पाए जाते हैं।
1: तुम सभी को किरण दीदी की आवाज में सुनोगे सभी?
4: क्यों नहीं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, प्लीज सुनाइए ना।
3: अच्छा भाई सुना देती हूँ।

0: अरे श्वेता, याद है हम सभी एक बार नौबस्ता गांव चले थे? वहाँ पे नाव पे हम लोग घूमे थे, झूले पे कितनी फोटो खिंचवाई थी ना?
1: हाँ हाँ, याद है बिल्कुल। और वहाँ पे वो जो मेला था ना, बड़ा ही मजा आया था। चलो हम फिर से चले नौबस्ता गांव। चलो किरण दीदी से कहते हैं, वही ले चलेंगी हमें वहाँ।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब अगली बार हम सब नौबस्ता ही चलेंगे घूमने, क्यों जिम्मी?
3: हाँ बिल्कुल, पर आप सभी यहाँ आए बड़ा आनंद आया, कितनी जानकारियाँ मिली, फिर आइएगा सभी।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यह आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड, गोंडा।

0: हेलो हाय नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप सभी एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, यानी कि हमारे सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजी नति, और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट संध्या। आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM गोरा शहर की धड़कन पर। प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना आफ्टरनून स्पेशल वाला शो ज्ञानस्थली लाइव।
1: हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप?
0: हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप?
1: यस, मैं हूं आपकी को होस्ट संध्या।
0: ओके, और मैं आपकी को होस्ट हूं नति। यू नो मी?
1: यस,
0: आई नो यू।
1: यस,
0: फिलहाल ये बताइए संध्या जी, आप अपने हाथ में फोन लेकर क्यों बैठी हैं?
1: मैम, फोन लेके बैठने का मतलब क्या है? ये तो सब लोग लेके बैठते हैं, वैसे मैं भी लेके, क्योंकि इसके बिना हम रह ही नहीं पाते।
0: और यही तो मेरा सवाल है कि हर दूसरा बंदा फोन लेकर ही क्यों बैठता है?
1: सच में मैम, ये बात तो मैं भी आज सोच रही थी कि हाँ, हम फ़ोन ही लेके, फ़ोन ही के साथ क्यों ज़्यादा रहते हैं? हम लोग की आदत हो गई है, एक मतलब पूरी लाइफ का एक पार्ट बन गया है फ़ोन।
0: वेल, ऐसा तो है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता नहीं है कि अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो सबसे पहले अपना फ़ोन पलट कर साइड में रख देती हूँ। क्या मैसेज आ रहा है, क्यों मैसेज आ रहा है, डजंट मैटर ना, क्योंकि हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं और तुम मेरे साथ बैठी हो, तुम्हारे हाथ में फ़ोन नज़र आ रहा है और हमको ये बहुत खटक रहा है बहुत देर से।
1: यस मैम, ये बात तो आप सही कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, तो फिर मैं आप पे ध्यान देने के बजाय मैं फ़ोन में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ।
0: हाँ, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है
1: मैम?
0: हम किस लिए?
1: मैम, ये क्या है कि आज डिजिटल डिटॉक्स एंड सोशल मेंटल हेल्थ है, ये उसी का इफ़ेक्ट है, क्योंकि हम चीज़ें को समझ नहीं पाते हैं और हम ऑल टाइम फ़ोन में ही रहते हैं।
0: ओके, तो यू मीन कि भैया आज हमारा डिजिटल डिटॉक्स का दिन है, यानी कि आप जो दिन भर अपने फ़ोन में किटर बिटर करते रहते हैं, आप जो टिपर टिपर उंगलियाँ चलती रहती हैं, उनको आराम देने का दिन है और आपको ये सीखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल आप जो पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, ये किस तरह से आपको परेशान करता है और कैसे खुद को इस इंटरनेट से, इस फ़ोन की दुनिया से बाहर निकाल कर असल दुनिया में जाएं। क्योंकि हमें ना दुनिया इतनी फिल्टर वाली देखने की आदत हो चुकी है कि अब ऐसा लगता है अगर आंखों से देखते रहता है दुनिया का रंग चला गया है, दुनिया बेरंग हो गई है।
1: यस मैम,
0: है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम की फोटोज में तो पत्तियों का रंग बहुत अच्छा हरा दिखता है, लेकिन जब असल जिंदगी में उन्हीं पत्तियों का रंग देते हैं तो बड़ा बेरंग से दिखता है कि इतना ब्राइट तो नहीं है यार।
1: यस मैम,
0: इसके पीछे
1: इसी की वजह से हम लोग का रिश्ता भी ऐसे कुछ फेयर होता जा रहा है।
0: रिश्तों की बात, ये बात तो सच है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर किसी ने हमें 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई कर दिया देन वो हमारी वैल्यू करता है। अगर वो अपने काम में बिजी है और उसने रिप्लाई नहीं किया तो हमारी इंस्टाग्राम की दुनिया कहती है अगर आपका बंदा आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, अगर वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो आपको पसंद नहीं करता है, दैट मीन्स वो आपको प्यार नहीं करता है, दैट मीन्स वो आपको इग्नोर कर रहा है। और इसके चलते न जाने कितने लोग, न जाने कितनों से भिड़ जाते हैं कह करके कि तुम मुझे 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो।
1: यस मैम, और मैम ये भी होता है कि कभी कभी मेरे सामने मेरी फैमिली बैठी होती है, हम उन पे ध्यान दें, उनकी बातों पे ध्यान देने के बजाय हम फ़ोन में ही लगे रहते हैं, जबकि हमें उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं डिजिटल डिटॉक्स में ही आता है।
0: जी हाँ, तो भाई ये एक्चुअल में होता है, पहले हम जब बैठते हैं तो बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल हमारा ध्यान हमारे फ़ोन में रहता है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमारे ध्यान को तुरंत ले जाता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता, जब मैं मेरी मम्मी के साथ बैठती हूँ और हम लोगों की बातें इस लेवल पर होती हैं, सकता है पहले 2 दोस्त बात कर रहे थे, फिर 2 दुश्मन बात कर रहे थे, फिर 2 पार्टी बात कर रही थी।
1: यस मैम,
0: और इन्हीं चक्कर में कभी कभी मेरी और मेरी माँ की बहुत बहस हो जाती है और मैं उठ के चले जाती हूँ, बात ही नहीं करनी है मुझे किसी से।
1: यस मैम, यस मैम, तो फिर ये चीज़ें। हाँ अच्छा, मेरा अपने लिसनर से एक क्वेश्चन है कि मैम वो सुबह उठते ही क्या करते हैं?
0: पानी पीते
1: नहीं,
0: ब्रश करते
1: नहीं मैम,
0: बाहर जाते।
1: मेरे लिसनर्स इतने अच्छे हैं,
0: तुमको क्या लगता है हम अच्छे नहीं हैं?
1: नहीं मैम, आप तो अच्छी हैं ही हैं, ऐसा नहीं कि आप
0: मतलब अच्छी मैं अच्छी हूँ तो मेरे लिसनर अच्छे नहीं होंगे।
1: लेकिन मैम आपकी मॉर्निंग वाली एक्टिविटी क्या थी, आप ही बता दीजिए हमें।
0: भाई मेरी मॉर्निंग वाली एक्टिविटी मैंने कल ही बताई थी कि मेरा कुत्ता मुझे जगाता है, सबसे पहले उसे ही बाहर लेकर जाती हूँ मैं।
1: अच्छा मैम, लेकिन पता है मुझे, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करती हूँ अपना कि कोई नोटिफिकेशन आई है, या फिर अगर नहीं आई है तो फिर क्या करती हूँ मैं, रील स्क्रॉल करती हूँ।
0: सुबह उठते ही पहला डोज रील का?
1: यस मैम,
0: कमाल की बात है
1: मैम, मैं ही।
0: और अगर वही पहली रील सैड आ जाए, पूरा दिन सैड नहीं हो जाता है फिर?
1: यस मैम, वो तो हो ही जाता है पूरा,
0: ये सोच सोच कर कि यार कल रात किसी से बात नहीं हो पाई, मेरा दोस्त नहीं रहा, दुश्मन दुश्मन नहीं रहा, बस यही सोच सोच कर दिमाग नहीं खराब होता है।
1: यस मैम, लेकिन मैम पता नहीं, हो सकता है हमारे लिसनर का सुबह फोन से नहीं बल्कि सुबह की सूरज की किरणों के साथ हुआ हो।
0: नहीं, मुझसे पहले सूरज उठ जाता है, इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ तुम्हें।
1: यस मैम,
0: मैं सूरज के बाद ही उठती हूँ। इवन कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं सूरज के साथ साथ उठ के क्या फोटोसिंथेसिस करने वाली, मैं सूरजमुखी हूँ जो सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाऊँ।
1: नहीं मैम, आप बात तो एकदम सही कह रही हैं, पर मेरे लिसनर्स बताएं मुझे कि वो सुबह उठ के क्या करते हैं, फ़ोन देखते हैं या फिर सुबह सुबह घूमते हैं टहलते हैं या मॉर्निंग वाला वाइब एकदम अच्छा इंजॉय करते हैं।
0: चलो भैया, तो इनका सीधा सवाल ये है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप अपना फ़ोन चलाते हो या आप घूमने टहलने निकल जाते हो? क्योंकि भैया हम मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, तो हम सुबह तब उठते हैं जब सूरज आसमान में आ चुका है और मेरी मम्मी मेरे सर पे आ चुकी हैं कि अब उठ जाओ, सूरज तुमसे पहले निकल गया। ऐसा लगता है जैसे मानो मैं सूरज के साथ कंपटीशन में थी और वो मुझसे जीत चुका है, मैं वो खरगोश बनके सो रही हूँ, वो कछुए की तरह आगे निकल चुका है।
1: मैम एक की बात बता दूँ आपको, कल रात मैंने सोचा था कि आज नवरात्रि स्टार्ट है, कल ही ये स्टार्ट था लेकिन मुझे आज व्रत रहना था। मैंने रात में माइंड सेट अपना बना लिया था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और आज मैं जल्दी उठ के और सुबह वाला मैंने सारा काम फिनिश किया है, लेकिन आज मैं फ़ोन पे बिल्कुल नहीं गई हूँ। पहले मैं उठ के पहले आज
0: तो मैं आपको इसके लिए पद्मश्री दिलवाऊँ?
1: अरे मैम ना पद्मश्री दिलाइए, पर हमारे लिसनर खुश हो जाए मेरे लिए वही बहुत है।
0: यू मीन टू से कि आपकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि आपने सिर्फ एक दिन ये काम किया है, हालांकि अच्छा काम किया है।
1: थैंक यू मैम।
0: बस हो गई खुश?
1: यस मैम।
0: चलिए तो भाई, कई लोगों की आदत होती है, यूँ तो कहते हैं कि सुबह उठते ही आपको अपना हाथ देखना चाहिए, यानी कि हथेली देखनी चाहिए, उसके बाद आपको बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहिए, लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, अब तो ये हाल है कि बेड के पास ही फ़ोन को चार्ज किया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम बेड के बगल में ही प्लग लगवा लेते हैं, वहाँ चार्जर लगा देते हैं, फ़ोन वहीं चार्ज होता है। हर नोटिफिकेशन हमें डिस्टर्ब भी करती है और सबसे पहले उठ के वो फ़ोन ही चेक होता है, उसके अंदर रील्स चल रही हैं, किसने फॉलो किया, किसने अनफॉलो किया, किसका क्या कॉमेंट था, क्यों कॉमेंट था, किस लिए कॉमेंट था, और जिस इंसान का इंतज़ार हमने रात भर किया है उसके साथ अलग ही कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसने मुझे मैसेज किया नहीं किया, उसने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे।
1: यस मैम।
0: तो फिलहाल आप उठकर क्या कर रहे हैं ये ज़रा मुझे बताइए चैट बॉक्स में, क्योंकि हम तो हमारे कुत्ते की वजह से उठते हैं, हमारा अलार्म साइड में रह जाता है, एक वो जीता जागता अलार्म मुझे जगा देता है आकर के। तो आपके साथ भी ऐसा कोई है? अगर आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका डॉग, आपका पपी, आपका मेरी तरह अगर आपका भी कोई मुन्ना है तो आकर मुझे बताइएगा कि आप उनके साथ सुबह उठकर सैर पे जाना पसंद करते हैं या पसंद करते हैं फ़ोन के अंदर की दुनिया को देखना, बताइएगा जरूर। फिलहाल मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, और मुझे लगता है कि आपको 90s के नगमे सुनाने चाहिए क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है आपको सुनाने का, हमको तुमसे प्यार है। सुनते रहिए।

0: कुमार सानू और अलका जी की आवाज़ में आप एंजॉय कर रहे थे 90s का बेहद ही खूबसूरत नगमा हमको तुमसे प्यार है। टाइटल ट्रैक था ये फिल्म का। ऑफ कोर्स इसी के साथ आपका स्वागत करते हैं वापस से आपके अपने वाले शो ज्ञानश्री लाइफ में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर श्रीमति और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट संध्या।
1: यस, मैं हूं आपकी को होस्ट संध्या और हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स के बारे में।
0: डिजिटल डिटॉक्स यानी कि जैसे कि हम अपनी बॉडी का डिटॉक्स करते हैं ना, हमें लगता है कि कोई ड्रिंक पीने से हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये काम आपका लिवर एंड किडनी ऑलरेडी कर रहा है एंड वो उसी के लिए डिज़ाइन होते हैं, बट इसके बाद भी मार्केट में आपको हज़ारों चीज़ें डिटॉक्स के नाम पर भेजी जाती हैं। ऐसे ही किया जाता है डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि जो आप पूरा दिन 2400 घंटे इंटरनेट पे रहते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, रील्स देखना, यूट्यूब पे जाना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया से कनेक्टेड रखती हैं, हमारा स्क्रीन टाइम इंक्रीज करती हैं, इनसे कैसे दूर हटना है आज हम इस पर बात करने वाले हैं आपके अपने शो ज्ञानस्थली लाइफ में।
1: यस मैम,
0: फिलहाल तुम बताओ अगर तुम्हें डिजिटल डिटॉक्स करना हो तो तुम क्या करोगी?
1: मैम मैं क्या करूँगी, मैं एक बैग तो कोई चीज़ें कम नहीं कर पाऊँगी, पर जितना मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया कोई ऐप उससे थोड़ा कम टाइम लूँगी। अगर मैं उसे इंस्टाग्राम पे आधे घंटे रहती हूँ मैम एक्टिव, तो उस पर मैं आधे घंटे बजाय मतलब मैं स्टार्टिंग भी ये है नहीं कि मैं उसे छोड़ दूँगी, पर मैं उसे 10 मिनट दूँगी।
0: ओके,
1: यस मैम।
0: और तुम्हें पता है कि डिजिटल डिटॉक्स करने से फ़ायदा क्या होता है?
1: यस मैम,
0: क्या होता है?
1: थोड़ा जो हम लोग के अंदर चिड़चिड़ापन या बोरिंग सा आ जाता है वो हम लोग को थोड़ा फ़ोन से दूर रहने पे थोड़ा सा अच्छा फील होता है।
0: तो भैया हम आपको बता दें कि डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए अपने स्मार्टफोन, अपने कंप्यूटर, अपने मीडिया, इंटरनेट और डिजिटली जितनी भी चीज़ें आपके आसपास मौजूद हैं उनसे दूर रहना, वो भी जानबूझकर। ये नहीं कि काम आ गया इसलिए दूर है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से दूर हो रहे हैं उसे कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। इससे होता क्या क्या है? सबसे पहले तो इससे आपका तनाव कम होता है, यानी कि आपका स्ट्रेस कम होता है। अब स्ट्रेस नहीं है तो आपकी नींद अच्छी आती है, और नींद अच्छा अगर आ रही है तो ऑफकोर्स आपका फोकस बढ़ेगा आपके काम को लेकर के। आजकल हमारे फोकस में बहुत ज्यादा कमी है, चाहे स्टूडेंट्स हों या फिर ऑफिस वर्कर हों, हमें हर 1-2 सेकंड पर अपने फोन को चेक करने की बहुत ही गंदी आदत पड़ चुकी है। हर वक्त अपना फोन चेक करते रहते हैं, एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा फोन साइलेंट ही रहता है, आता रहे नोटिफिकेशन।
1: यस मैम, ये सही बात है। हाँ, क्योंकि मैम हम लोग खाना खाते हैं तो भी हम लोग फोन में ही दिन भर उसी में रहते हैं, उसी को चलाया करते हैं, तो उनसे भी थोड़ा दूरी बनाए रहे हम लोग।
0: ये बात तो है, लेकिन मेरे घर का एक सिंपल सा रूल है और आई थिंक ये बहुत सारे घरों में एक सा रूल चलता होगा कि जब हम खाना खाने बैठते हैं, डिनर टेबल पे बैठते हैं, तो वहाँ पर पूरी फैमिली साथ में बैठती है, और जब हाँ फैमिली बैठती है वहाँ फ़ोन का कोई काम होता नहीं है।
1: यस मैम,
0: एक तो हमारी आदत है, जब भी बचपन से मैं देख रही हूँ लोगों की आदत होती है कि स्कूल से आए हैं बैग अलग फेंक दिया है और उसके बाद खाना खाने के लिए टीवी चला रही है। वो मेरी भी आदत थी, हालांकि मेरी नानी चला नहीं देती थी। नानी कहती थी कि खाना पहले खाओ, टीवी देखनी है बाद में देखो।
1: यस मैम,
0: चिड़ तो बहुत ज़्यादा लगती है कि यार पूरे दिन के बाद आए हैं, कार्टून देखने का भी मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन ये आदत एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छी है। इसको आपको फ़ोन फ्री जोन बनाना पड़ता है, यानी कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए, लाइक आपका बेडरूम है, आपका फैमिली टाइम है, आपका डिनर टेबल है, इन जगह पर आपके पास फ़ोन की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट अगर कॉल्स आ रही हैं तो आप अटेंड कर रहे हैं, अदरवाइज फ़ोन को खुद से दूर रखते हैं। ये सिर्फ दूसरों के लिए बोलने के लिए नहीं होता, सबसे पहले खुद पे अप्लाई करना होता है। हम बच्चों को तो बोल देते हैं कि खाना खाते वक्त फ़ोन नहीं चलाते, इसका उल्टा हम खुद कर रहे होते हैं।
1: यस मैम,
0: होता है घर में अगर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं या जो उनके फादर हैं, उन्हें लगता है कि हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं और वो डिनर टेबल पर बैठ के भी अगर फ़ोन चला रहे हैं, तो इसकी जो आदत है वो आपके बच्चों तक जाएगी ही जाएगी। उन्हें लगता है जब पेरेंट्स खुद नहीं रुक रहे हैं तो फिर हमें क्यों रोकेंगे। आप उन्हें रोकते हैं तो उनका सवाल यही होता है कि आप भी तो सेम टू सेम वही कर रहे हैं ना, तो हम क्यों बंद करें।
1: यस मैम, ये आपने एकदम सही, मतलब हम बच्चों का क्वेश्चन आपने छीन लिया और सोल्यूशन भी दे दिया कि हाँ कैसे करेंगे, क्योंकि हाँ वो बच्चों को बोल देते हैं कि फ़ोन ना चलाओ, इवन वो खुद चलाया करते हैं।
0: हाँ, इसीलिए मेरी नानी एक कहावत कहती थी, इवन एक कहानी सुनाती थी जो गांधी जी से जुड़ी हुई थी। वो कहती थी कि गांधी जी के पास एक मम्मी की कंप्लेन आती है कि उनका बच्चा बहुत गुड़ खाता है। उन्होंने कहा कि आप बाद में आना, मैं एक हफ्ते बाद बताता हूँ। एक हफ्ते बाद गए तो उन्होंने कहा, फिर से कहा एक हफ्ते बाद आना। ऐसे कर करके उन्होंने 2-3 बार उन्हें बुलाया, लास्ट में इरिटेट होकर उन्होंने सवाल किया कि यार आप बार बार बुला रहे हो, सोल्यूशन तो बता नहीं रहे हो। तो उनका जवाब था कि मैं आपके बच्चे को तब रोकूंगा, तब सलाह दूंगा ना, जब मैं खुद उसको बंद करूंगा। मैं खुद बहुत गुड़ खाता हूँ तो मैं कैसे बोल दूं कि तुम बंद कर दो।
1: यस मैम, तो इसीलिए पहले खुद पे अप्लाई करो।
0: हाँ, सलाह देना बहुत इजी होता है, लेकिन उसको अपने पे अप्लाई करो, खुद उस चीज को फॉलो करो, देन जाकर आप किसी को बोलो कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है। अगर मुझे किसी से कहना कि बेटा आप हेल्दी खाना खाओ, तो इसका मतलब है कि मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, देन मैं आपको बोल रही हूँ। अगर मैं खुद ही जंक फूड के पास बैठी हूँ ऑल द टाइम, तो मैं किस मुंह से बोलने वाली हूँ।
1: अच्छा, तभी तो मुझे पता चला है कि जब मैं फोन यूज कर रही थी, जब मैं आई थी, तब आपने मुझे टोका था कि संध्या क्यों फोन में हो। अब मुझे पता चला आपने किस लिए कहा है, क्योंकि आप खुद फोन चला नहीं रही थी और मैं चला रही, तो आपने मना किया।
0: बिल्कुल, और जहाँ पर काम करने हम बैठते हैं, वहाँ पे फोन की जरूरत है भी नहीं।
1: यस मैम।
0: हालांकि आजकल हमारे काम ही ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट फोन के अंदर होते हैं, लाइक जो लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उनका काम है एडिटिंग करने का, वो ऑल द टाइम उसी में रहते हैं। लेकिन इससे आपका स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा बढ़ता है, और कल भी मैं इसी पे बात कर रही थी कि स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी आंखों से लेकर के हमारे मेंटल हेल्थ पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी निगेटिव वे में।
1: अच्छा मैम, तो अब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं क्यों परेशान रहती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे तो फिजिकली कोई वर्क ज़्यादा करने ही नहीं पड़ता, लेकिन ये कंप्यूटर के सामने और ज़्यादा फ़ोन यूज करने से मेरे अंदर ना मैं परेशान रहती थी। मतलब कोई मुझे कुछ बोल दे तो मैं परेशान रहती कि हाँ, मतलब गुस्सा आती थी मुझे। अब मुझे रीज़न पता चला कि ये मेरा ज़्यादा फ़ोन यूज करना ही मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है।
0: एक्चुअली मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ करना, फ़ोन की वजह से तुम्हारे दिमाग को शांति ना मिलना और उसकी वजह से नींद ना आना।
1: यस मैम।
0: एंड मैं तुम्हें बता दूँ, एक रिसर्च में है कि एक फीमेल्स को मेल से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, और अगर आप नहीं सोते हैं, क्योंकि इंडिया में स्लीप सेविंग बहुत ज़्यादा है, सोने को लेकर के बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया जाता है। अगर आप बहुत सोते हैं तो आपका नाम कुंभकर्ण से जोड़ दिया जाता है।
1: अरे मैम, तो ये बात तो एकदम सही बोली। हम अपने रूम पे थोड़ा लेट में सो के उठते हैं, मेरा मजाक बनाया जाता है।
0: बट इसमें मजाक बनाने वाली कोई भी चीज है नहीं। आप जितना काम करते हैं, आपकी बॉडी को उतनी ही नींद की जरूरत होती है। नींद एक तरह की मेडिसिन है जो आपकी रिकवरी में आपको हेल्प करता है। इंडिया में भले ही, यानी कि भारत देश में भले ही आपको सोने पर शर्मिंदा किया जाए, लेकिन बाहर के देशों में नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए जितने भी लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर्स उन्हें नींद के लिए बोलते हैं कि आप नींद लो, भरपूर मात्रा में नींद लो, क्योंकि आप सोते हो तो आपकी बॉडी रिकवर करती है।
1: यस मैम, मतलब कम्प्लीटली नींद बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ के लिए।
0: हाँ जी, और जब आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटेड पर्सन दिखाई पड़ेगा, उसकी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। आप तुम देख सकते हो, 3 से 4 घंटा ही सो रहा है, ज़्यादा वो सो भी नहीं रहा है।
1: मैम,
0: तो फिलहाल डिजिटल डिटॉक्स का सबसे पहला काम तो यही है कि आपकी नींद की साइकिल को बढ़िया कर देता है। आप सुबह भी अच्छे से उठते हैं, फ्रेश उठते हैं। अगर आप सुबह उठने के बाद बहुत लेजी फील करते हैं, थकान सा फील करते हैं, या पूरे दिन आपकी एनर्जी नहीं रहती है, तो नोटिस कीजिएगा कि आपकी स्लीप साइकिल तो नहीं ख़राब है। हम बेड पर पहुंच जाते हैं 11 बजे, लेकिन नींद नहीं आती 3 बजे तक। क्यों? क्योंकि हम अपना फ़ोन ही स्क्रॉल करते जा रहे हैं। जिस वक्त आपको नींद आए, उस वक्त आप सोने की कोशिश करें। हमारे दिमाग को ये सिग्नल नहीं मिलना चाहिए नींद के वक्त कि अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, बल्कि इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप रील्स देख रहे हो।
1: यस मैम। मैम, अब आप एक बात बताइए मुझे।
0: पूछिए।
1: कि मैम, आपका मॉर्निंग तो आपका पेट करा देता है, लेकिन आपका वो सोने वाला क्या है? आप सोती कैसे हैं?
0: सोती मैं बहुत गहरी नींद में हूँ। एक बार सो गई तो भूकंप आने पे भी नहीं उठूंगी।
1: अच्छा। हाँ। लेकिन जब आप बेड पे जाती हैं अपना वर्क फिनिश करने के बाद सोने वाले पर्पज से, हाँ, तो मैम फिर आप अपना फोन चलाती हैं या नहीं चलाती
0: है? नहीं, फिर मैं फोन नहीं चलाती। मेरा फोन दूसरे कमरे में रहता है, और मुझे स्टोरी भी सुननी होती है तो मैं ऑडियो सुनती हूँ, ताकि मेरी आंखों को वो चीज़ ना दिखे, क्योंकि आंखों पे जब तक लाइट जाएगी मेरी आंखें जगेंगी और मेरा दिमाग नहीं सोएगा।
1: और मैम, मुझे तो लगता है सुनने से नींद भी अच्छी है। आप सुनते सुनते कोई अच्छा स्टोरी या कुछ भी सुन रहे हैं, फिर वो प्यारी सी नींद।
0: अच्छी स्टोरी का पता नहीं, मैं हॉरर स्टोरी जरूर सुनती हूँ।
1: मैम, फिर भी आपको नींद अच्छी पड़ जाती
0: है। हाँ, तो क्या, सबके लिए अलग अलग है। अभी देखो क्या है ना, जो पर्सन ADHD से सफर कर रहा है, या जो पर्सन ADHD का है, उन्हें ऐसी चीजों में मजा आता है।
1: यस मैम।
0: उनका दिमाग बहुत हाइपर एक्टिव होता है, और उनके हाइपर एक्टिव दिमाग की वजह से वो लास्ट मोमेंट तक उनके पास कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए होना ही चाहिए। अगर वो कुछ देर खाली बैठ जाते हैं तो वो बोर हो जाते हैं।
1: यस मैम।
0: इसीलिए या तो उन्हें काम करते रहना है, उनका इंटरेस्ट होता है, और उन्हें रात में ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं सुनता, लाइक हॉरर स्टोरी, लाइक क्राइम स्टोरी, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफरेंट हैं, वो अलग सोचते हैं। और इन सारे सिग्नल्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो एन ADHD पर्सन।
1: अच्छा, तो इसका मतलब है हमें जल्दी से जल्दी सोने से पहले जल्दी से जल्दी मतलब फोन अपना साइड में रख के,
0: हाँ, अगर आप
1: और डीप मतलब वो स्लीपिंग करनी चाहिए।
0: अब डीप स्लीपिंग तो तब होगी जब आप आराम से सोएंगे, आप कंफर्टेबल पोजीशन पर होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी आड़े टेढ़े लेट गए तो नींद आ जाएगी।
1: यस मैम।
0: मुझे तो नहीं आती।

0: अब मैं सोने से आधा घंटा पहले अपना फ़ोन खुद से दूर रखूंगी, सारे काम, इवन फ़ोन को भी उसी काम में, मतलब ये कि मेरे सारा काम हो गया, फ़ोन भी देख लिया है, अब मुझे दूर रहना है फ़ोन से ताकि मैं अच्छी नींद ले सकूं, खुद को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हर तरीके से सही रख सकूं।
1: इमोशनली सही रखने के लिए नींद ज़रूरी है, नींद को सही रखने के लिए आपको डिजिटली डिटॉक्स होना ज़रूरी है।
0: yes,
1: और डिजिटल डिटॉक्स करना आपके विल पावर पे ही डिपेंड करता है, आपका विल पावर कितना अच्छा है, क्योंकि गलत आदतें आप नहीं छोड़ सकते हो, अच्छी आदतें आप बहुत जल्दी छोड़ देते हो, लाइक आप दूध पीना छोड़ सकते हो लेकिन आप अल्कोहल कंज्यूम करना नहीं छोड़ पाते हो।
0: यस मैम,
1: बिकॉज इसका डोपामिन लूप होता है जिसमें आप फंस चुके हैं बहुत ज़्यादा। स्पेशली जितने भी इंटरनेट के लोग हैं, जाते हैं, जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, बार बार वो एक डोपामिन लूप में फंस चुके हैं। और ये डोपामिन लूप क्या होता है हम आपको बताते हैं, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए अलीशा जी की आवाज़ में तिनका तिनका। मिलते हैं इस गाने के उस पार, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानासली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, विद राजनीति एंड मेरी को होस्ट संध्या के साथ।

0: बाल के नीचे गांठे जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: It's me on the track.

0: जब इंटरनेट की लत लगती है। हाँ जी, कुछ यार नजर नहीं आता, घर बार नजर नहीं आता, संसार नजर नहीं आता, काम धंधा नजर नहीं आता, काहे काहे की इंटरनेट है। होता है ना?
1: यस मैम।
0: बिजली जाएगी तो डर किस बात का है, हाय मेरा फोन चार्ज नहीं था, अब ये तो बंद हो जाएगा।
1: ये बात एकदम सही है मैम।
0: इधर चार दिन जब लाइट गई थी, लोगों को टेंशन नहीं थी कि घर के बाकी काम रुके हुए हैं, खाना नहीं बन पा रहा है, मेरा फोन चार्ज नहीं है, ऐसा करो जिसके यहाँ पे जनरेटर चल रहा है वहाँ चार्ज कर लो। मुझे याद है मेरे घर पे जनरेटर आया था और मेरे घर पे पूरे मोहल्ले का फोन आया था कि चार्ज कर दीजिए।
1: अरे मैम, ये एंड्राइव सेट का 20-25-30 रुपए लेते थे एक फोन का, वो जनरेटर से चार्ज करने के।
0: हाँ, फिलहाल मैंने पैसे तो नहीं, पहले बताना चाहिए था यार, पैसे वैसे हो जाते मेरे पास।
1: नहीं मैम, यहाँ नहीं, गाँव में ऐसा था।
0: कोई बात नहीं, अब अगली बार मैं ध्यान रखूंगी ये बिजनेस का आइडिया।
1: यस मैम, इस बार तो मैं ध्यान रखूंगी, कहीं लाइट जाएगी मैं अपना पावर बैंक पहले चार्ज कर रखूंगी।
0: तुमको कैसे पता चला कि कब लाइट जाने वाली है, पावर बैंक चेंज करना है?
1: अरे मैम, जब अगर ऐसा कहीं कुछ सुनने में आया तो अगर ऐसा, अब फिलहाल तो मुझे नहीं लगता मैम कि ऐसे फिर कभी होगा, होगा फिर देखा जाएगा।
0: ये बात तो है। हालांकि ये जो इंटरनेट की बात है जिसपे हम बात कर रहे हैं, इसमें हम खुद भी बहुत बड़े आदी होते हैं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे आज उन्होंने बैठ के आपको ये बोल रही है कि इंटरनेट से दूर रहो, तो वो खुद बहुत दूर रहती है, नहीं रह पाते हैं क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है।
1: यस मैम,
0: दिन भर कहीं ना कहीं हम बिजी रहते हैं, फिर ये होता है कि पूरे दिन काम निकालने के बाद रात में मौके मिलते हैं अपने दोस्तों से बात करने के लिए, तो वहाँ पे लगे हुए हैं हम।
1: यस मैम,
0: और उसके पीछे से मेरी मम्मी की आवाज़ आती है, फोन रख रहे हो कि तोड़ दे तुम लोगों का फोन। और हम कहते मम्मी नहीं तोड़ो ना, बस रख रहे हैं ना मम्मी, मान जाओ ना मम्मी, मान जाओ। और मम्मी कहती है पूरा दिन लड़की का फोन चलता है। अब उनको नहीं पता मैं पूरा दिन नहीं चलाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो मैं ऑफिस में रहती हूँ।
1: मैम ऑफिस में रहती हैं, और प्लस ऐसा होता है कि हम लोग, हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं कि हम लोग काम क्या करते हैं, तो वो चीज़ें घर वाले नहीं काउंट करते हैं। जैसे हम अपना काम फिनिश करके और फोन लेके बैठेंगे, फिर तुरंत मेरे घर वाले देखते हैं, हाँ दिन भर लड़की फोन चलाती है।
0: ये दुख काहे खत्म नहीं होता है भैया।
1: सच में मैम, लेकिन ये सच में एक्चुअली ये बात है।
0: तो फिलहाल के लिए अब हम इसकी बात कर ही रहे हैं। वैसे मैं कहूंगी कि जो रेडियो का टाइम होता है ना,
1: यस मैम,
0: ये कैसा टाइम होता है जो आपको फोन से दूर कर सकता है, है ना? yes, क्योंकि रेडियो पर हमारे बस का कुछ है ही नहीं। जब हमारे कोई चीज बस में नहीं होती है, हमारे हाथों में नहीं होती है, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं कि इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेना।
1: Yes,
0: हम रेडियो ऑन करके बैठ जाते हैं क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। आप लगातार स्क्रीन हम देख नहीं सकते क्योंकि रेडियो तो स्क्रीन बंद होकर चलता है।
1: Yes, ma'am.
0: गाने खुद से स्किप कर नहीं सकते हैं, इसलिए बार बार छूने का मतलब भी नहीं बनता है। अगर आपको आरजे कुछ बोल रहा है तो आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा, गाने बजा रहा है तो आपको एंजॉय करना ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है रेडियो इकलौती ऐसी चीज है ना जो आपको इंटरनेट से बहुत दूर ले जा सकती है।
1: यस मैम, और मुझे लगता है कुछ दिनों बाद लोग रेडियो सुनना ज्यादा ही पसंद करने, क्योंकि ये सब लोग,
0: सच में ऐसा है क्या
1: मैम? ऐसा मैं,
0: अगर ऐसा है तो मैं तुमको 2 किलो रसगुल्ले खिलाऊंगी, देखो खाना पड़ेगा वो अलग बात है।
1: तो मैम मैं अभी से प्रैक्टिस कर लूँ, पता नहीं मेरी बात लग जाए, क्योंकि लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें पता है कि हाँ ज़्यादा फ़ोन में रहना उस सेफ नहीं है।
0: तो चलिए भैया, मैं आपको बता दूँ कि डिजिटल डिटॉक्स करना कैसे है। ये सब तो बता दिया कि बातें बातें हो गई हैं,
1: कैसे करना है मैम?
0: छोटा सा शुरुआत करो, हर एक चीज़ देखो, हमारी हमारी एक आदत होती है कि जो भी करेंगे बहुत बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे ही नहीं।
1: मैम हम लोग सपने ही बड़े देखते हैं,
0: बट हो नहीं पाता ना, वो सपने ही रह जाते हैं फिर। तो सपना सपना ना रहे, इसके लिए शुरुआत कीजिए छोटे छोटे टाइम से, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। आप खुद को टारगेट दीजिए कि 5 मिनट तक तो नहीं देखूंगी, 15 मिनट तक तो इस फोन को छूंगी भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आपकी आदत होगी, आज 15 मिनट हो गया, कल 20 मिनट करते हैं, फिर 30 मिनट करते हैं, फिर आप 1 घंटे पर जाएंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फोन में कुछ है ही नहीं दोस्त, इसको क्या देखे, इस डिब्बे के अंदर कुछ नहीं है, और मैं तो कहती हूँ रिचार्ज ही मत कराओ।
1: यस मैम, लेकिन इस फोन की वजह से हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट होता है ये रील के चक्कर में।
0: हाँ, रील्स के चक्कर में एक्चुअल में होता है, बट अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते तो नहीं होता।
1: मैं सोचती हूँ कि मैं बस 5 मिनट के लिए रील स्क्रॉल कर लूँ, थोड़ा सा माइंड सेट थोड़ा अच्छा हो जाए। मैम वो 5 मिनट का 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, मैं खुद नहीं जान पाती।
0: एक चीज है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, सिर्फ काली और सफेद नहीं होती है। इसी तरह से हमारा फोन भी सिर्फ काला सफेद नहीं होता, हालांकि वो दिखता जरूर काला है ऊपर से, बट वो होता नहीं है। इसके अंदर अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं।
1: यस मैम,
0: आपको दुनिया जहान की बातें पता चलती हैं। मैं, मेरे जैसे लोग जिन्हें खाना बनाने का शौक है, जो सिर्फ इंडिया का खाना बना रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में रहकर सिर्फ यहीं की डिशेस जानते हैं, वो यहां से निकल करके कहां कोरिया जापान के रामेन बनाने पर तुले पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की बदौलत हमें वो रेसिपीज पता है।
1: यस मैम,
0: पहले पहले के लोग करते थे कि वो जो बुक्स आती थी
1: रूपायण,
0: हाँ, उससे भी निकाल निकाल कर खाना बनाते थे, बट उसमें अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो मसला हो जाएगा। तो इंटरनेट आपको बहुत कुछ देता है,
1: मैं वो तो बहुत बना कुछ के भी दिखा देता है कि कैसे बनाना है।
0: बिल्कुल, वहां पर आपको अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, बट शर्त ये है कि आप अपने काम की चीज देखने के बाद उसको रख दिया करें, क्योंकि काम की चीज देखने के बाद सोचते हैं ये काम हो गया ना, आप कुछ और करते हैं, और ये तो कुछ और करने की आदत है। अगर ये हमारे फोन से जुड़ी हुई है तो फिर हमारा कंजप्शन बढ़ जाता है, और जब कंज्यूम करते हैं वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों है। आपका बच्चा क्या देखता है, आप क्या देखते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि जो इंटरनेट पर चल रहा है वो आपके थॉट प्रोसेस को कितना ज्यादा इम्पेक्ट करता है, आप क्या सोचना शुरू कर देते हैं।
1: यस मैम,
0: कई बार देखा है किसी इंसान के बारे में आपने ऑनलाइन सुना होगा, आप उससे नफरत करने लग जाते हैं बिना उसका सच जाने, बिना उसके हिस्से का सच सुने, आपको लगता है यही है क्रिमिनल, क्या पता आगे जाके वो विक्टिम निकल आए तो।
1: यस मैम,
0: होता है ना। क्यों? क्योंकि इंटरनेट आपके थॉट प्रोसेस पे इतना गंदा इफेक्ट डालता है कि आपको सोचने का भी मौका नहीं देता, आपको लगता है कि ये सारी चीजें तो मेरे दिमाग की हैं, बट एक्चुअल में वो सारी चीजें आपको इंटरनेट से मिलती हैं। तो भैया इंटरनेट से थोड़ा दूरी बनाइए, 5-10-15 मिनट से शुरुआत कीजिए, इसके बाद एक ऐसी जगह बनाइए जहां आपका फोन आपके पास नहीं होगा, जिसको हम कहेंगे फोन फ्री जोन, या फिर एक ऐसा समय। हम आपको बता दें महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है जहां पर हर रात हर शाम में 1 घंटे के लिए ड्रिल बजती है, और 1 घंटे के लिए टीवी, रेडियो, FM, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, PC सब बंद कर दिया जाता है, और 1 घंटे तक एक भी इंसान इन स्क्रीन टाइम को ऑन नहीं करता, वो खुद को डिजिटली डिटॉक्स करते हैं, वो 1 घंटे इन चीज़ों से दूर रहते हैं। अब चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो घर में बैठ के बातें करते हैं, वो टॉपिक्स क्रिएट करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। 50 लोग एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो आपको अलग अलग नज़रिया मिलता है सुनने के लिए।
1: यस मैम, तो मैम ऐसा नहीं हो सकता ये चीज़ें अपने
0: बिल्कुल हो सकता है,
1: ये बहुत अच्छी चीजें हैं मैम।
0: बिल्कुल हो सकता है, मैंने क्या कहा कि मैं और मेरी मम्मी अक्सर खाना खाने के बाद या चाय पीने के बाद डिस्कशन पे बैठ जाते हैं, कभी कभी हम दोस्तों की तरह एक ही टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर अचानक से एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम दोनों अलग अलग पार्टी से हो जाते हैं और हम दोनों पक्के दुश्मन हो जाते हैं, फिर हमारे में बहस चलती है, बट डिस्कशन खत्म हो चुका होता है, फिर हम बहस करते हैं कि नहीं मम्मी ये बात यहाँ पे सही नहीं है, मम्मी कहते अच्छा तुम हमको सिखाओगे बात सही नहीं, हम कहते हाँ मैं सिखाऊंगी ये बात सही नहीं है, और ये डिस्कशन लड़ाई में भी कन्वर्ट हो जाती है कई दफ़ा, बट हमको याद होता है कि जो सामने बैठा है वो कोई दुश्मन नहीं है, वो मेरी खुद की माँ है, वो अलग बात है, दिमाग ख़राब होता है तो 2 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर वापस मुंह लटका के आ जाते हैं, अच्छा मम्मी बस सुनो ना, बात करो ना मुझसे।
1: अच्छा मैम ये चीज़ें तो मेरी मम्मी का तो उतना नहीं पता है, क्योंकि ऐसा कुछ, पर मेरी जो छोटी सिस्टर मेरे साथ रहती है, कल मेरी दोनों बहनों के ऐसे मतलब बात बात में लग रहा था कि हाँ बहुत ज़्यादा बात ऊपर
0: जा रही है, बात बन जाती है, बात बिगड़ भी जाती है,
1: बिगड़ जा रही
0: है, लेकिन एक बात होती है कि आपको एक अलग अलग नज़रिया मिलता है।
1: सुनिए मैम क्या हुआ, फिर मेरी बहन वो उसकी यही आदत है कि जब मेरी उससे बात होती है तो वो मतलब क्या करती है, वो रूम से निकल के चली जाती है, जो कि मुझे उस बात से बहुत चिढ़न होती है।
0: तो आपने कभी उनसे ये बात कही कि तुम रूम से निकल के मत जाया करो क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट होता है, तो मेरी बात पूरी सुन के जाया करो?
1: मैं सोचती हूँ
0: यही दिक्कत है आजकल के इंटरनेट वाली दुनिया में कि हमें अज्यूम करने की आदत होती है, हम हर एक चीज सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई अगर उसने मेरे से ये बात कही है इसका मतलब उसके दिमाग में यही बात थी। हम ये नहीं देखते कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल के चला जाता है।
1: मैम मेरा मतलब रहता है कम से कम मेरी बात तो पूरी हो।
0: अभी ये बात कभी कहने की कोशिश की है आपने उनसे? नहीं ना।
1: नहीं,
0: क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, और जब हम अपने इसी दिमाग ख़राब को लेकर के इंटरनेट पे जाते हैं तो हमें उससे रिलेटेड 50 रील्स और मिल जाती हैं, फिर कोई एक जनाब आकर के या एक मोहतरमा आकर के आपसे बोलती हैं गुस्से में बोला गया हर एक शब्द सही होता है, क्योंकि इंसान गुस्से में वही बोलता है जो उसके दिमाग के अंदर कई सालों से भरा पड़ा होता है। जस्ट इमेजिन आपकी मम्मी आपसे रोज़ कहती हैं घर से बाहर निकल जाओ, मेरी मम्मी तो जाने कितनी बार मुझे घर से बाहर निकाल चुकी हैं, और लेकिन जैसे ही मैं 1 घंटे घर से बाहर रहती हूँ मेरी मम्मी का तुरंत कॉल आता है, वो भी 50 बार, कहाँ हो बेटा घर के अंदर आओ। अब मैं ये मान लूँ कि उनके दिमाग में जो चीज़ उन्होंने गुस्से में बोली है वो सच है, ऐसा नहीं है। गुस्से में इंसान सोच समझ कर नहीं बोलता, वो जो भी बोलता है बस बोल देता है, उसे खुद भी आइडिया नहीं है कि उसके मुंह से कौन सा शब्द निकल रहा है। बट इंटरनेट इसी चीज का फायदा उठाकर आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है जिससे आप दूर होते हो।
1: प्ले करता है।
0: बिल्कुल, ये जो हर 2 मिनट में हमें लगता है किसी ना किसी का हम साइड लेते हैं, कभी लगता है नहीं सारी की सारी लड़कियां बहुत सही हैं, सारी की सारी लड़के बहुत सही हैं। तो यहाँ भी गलती हमारी ही होती है क्योंकि हम इंटरनेट का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं, दूसरा तो हम देख ही नहीं रहे हैं।
1: मैम मैं इंटरनेट पर जो मतलब एक एक रील देख के या शॉर्ट देख के कभी कभी मुझे लगता है कि
0: हाँ कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि मम्मी प्यार नहीं करती, पापा नहीं समझ रहे हैं, मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ रहा है।
1: प्यार की बात छोड़िए, मुझे तो लगता है कि इस जीवन मेरा खुद का कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, नथिंग हूँ यहाँ पे। मतलब वो चीजें मोटिवेशन या जो भी है देखने के बाद मुझे ये लगता है कि सच में मैं कुछ नहीं हूँ, फिर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि यार नहीं मुझसे कुछ नहीं हो रहा।
0: बिल्कुल सही। अब हम ये भूल चुके हैं कि हर इंसान का अपना एक ग्रोथ टाइम होता है।
1: yes,
0: पहले होता था कि 25 साल के इंसान ने एक कंपनी खड़ी की है, धीरे धीरे वो 20 साल का हुआ, धीरे धीरे अब वो 15 साल का एक बच्चा खड़ा करता है, और आप 25 साल की अगर नौकरी नहीं कर रहे तो आपको यार 15 साल के बच्चे ने कंपनी बना दी 100 करोड़ की, मैं 100 रुपया नहीं कमा पाया।
1: यस मैम।
0: बट हम ये भूल जाते हैं कि हम दोनों बहुत अलग हैं। और यही कंपटीशन जो अभी तक हम अपनी मम्मी से लड़ते आए थे कि हमें शर्मा जी के बेटे से कंपेयर मत करो, यही कंपेयर हम खुद को करते हैं एक 15 साल के बच्चे से।
1: यस मैम।
0: बस तरीका बदला है, काम तो वही है और दिमाग भी वही है, बट अब हमें ये बात पता नहीं चलती है ना। कमाल की बात,
1: बहुत कमाल की बात।
0: अब क्योंकि तुम मेरे साथ बैठे, तुम्हें मेरा नजरिया सुनने को मिला, मुझे तुम्हारा नजरिया सुनने को मिला, तुम घर जाके हो सकता है तुम 50 चीजें और सोचोगी।
1: यस मैम।
0: और हो सकता है ये 50 चीजों से रिलेटेड तुम्हें कुछ इंटरनेट पे भी मिल जाए, तुम्हें लगेगा कि हाँ ये बात तो सच है, बट हो सकता है मैंने भी बहुत सारी बातें गलत कही हूँ जिससे तुम एग्री ना करती हो।
1: नहीं मैम, पर ऐसा तो मुझे लेकिन अब कुछ चीजें जो एक्चुअल मुझे सच्चाई पता चली है कि हाँ फैक्ट क्या है।
0: बिल्कुल। और ये फैक्ट को तभी आप सीख पाओगे जब आपके पास सोचने की शक्ति होती है, और सोचना तभी आता है जब आप इंटरनेट से हटकर एक असल दुनिया में देखते हो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। आजकल ये एक स्किल की तरह मार्केट में डिमांड में रहती है कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस आती है, आप क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। बट कमाल की बात ये है कि आजकल ये जो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए इसको लोग स्किल बनाते हैं, इसको लोग सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, है ना।
1: yes,
0: क्यों? क्योंकि हम सोच नहीं पाते, हम दो अलग अलग हिस्से से, दो अलग अलग नजरिए से एक ही चीज को देख नहीं पाते, हमें सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखने की आदत पड़ गई है। एंड बिकॉज ऑफ,
1: लेकिन मैम सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये भी हम लोग को ध्यान देनी चाहिए।
0: बिल्कुल। दुनिया हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, जहाँ सफेद है वहाँ काला भी होगा, जहाँ काला है वहाँ सफेद भी होगा। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपने माइंड पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे, जब आप खुद पर थोड़ा काम करेंगे, फोन से निकल कर किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, दुनिया को देखेंगे, फिल्टर वाली दुनिया से निकल कर एक असल दुनिया में आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो फिल्टर में दुनिया दिखती है उससे बहुत अलग है। और इसके लिए ही आपको डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, नोटिफिकेशन बंद करना चाहिए, स्क्रीन टाइम को कम करना होगा, आपको अपनी ऑफलाइन गतिविधियां बढ़ानी होंगी, यानी कि ऑफलाइन एक्टिविटी जिसमें आपके गेम्स आते हैं, दोस्तों के साथ बैठना होता है, मिलना होता है, अपने किसी दोस्त जिससे आपने सालों से बात नहीं की उसे बात करना होता है, फैमिली के साथ डिस्कशन करना होता है, बच्चों के साथ बात करना है, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आती है जो ऑनलाइन नहीं होती।
1: मैम एक बात तो आपने गेम्स की बात की, तो मुझे लगता है जब मेरे पास आज के 3-4 साल पहले जब फ़ोन नहीं था तो फिर हम लोग लूडो साथ में बैठ के खेलते थे, फिजिकली खेलते थे, ये डिजिटली वाला नहीं।
0: हम लूडो खेलते थे, हम कैरम खेलते थे, समर वेकेशंस में हमेरा और मेरे भाई का चैलेंज चलता था, बीच में ही कैरम उठा के फेंक देते थे कि जाओ तुम रानी ले गए हम कुछ भी नहीं लेंगे।
1: हाँ मैम, तो सच में तब बहुत अच्छा रहता था। अब जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, फोन हमारे साथ में हो रहा है
0: और हमें लगता है कि हम ऑनलाइन ही गेम खेल सकते हैं।
1: हाँ मैम, और ऑब्वियसली लोग खेलते ही हैं, मैं खुद खेलती हूँ मैम, लेकिन अब सच में है कि मुझे लगता है कि ये डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है हम लोग।
0: बिल्कुल। आपके फिजिकल, आपके मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे दिखाई गई हर एक चीज़ अच्छी नहीं होती, और ये बात आपको समझने में बहुत वक्त लग जाएगा अगर आप डिजिटली खुद को डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं तो।
1: यस मैम।
0: तो भैया मुझे लगता
1: और
0: है हाँ, कि
1: डिजिटली या इंटरनेट से देखी हुई हर चीज़ों को रियल लाइफ में कभी मैच
0: अप्लाई नहीं करना चाहिए,
1: क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में होता नहीं है।
0: हाँ, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए होती हैं।
1: और सच में ये बताएं, मैं कई रील स्क्रॉल की, फिर मैंने एक वीडियो ऐसी देखी अच्छी थी, फिर मैं भी ये वही वीडियो वही चीज़ें मैं अपने सामने वाले इंसान से भी एक्सपेक्ट करने लगी कि वो भी मेरे साथ में ऐसा करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उस मतलब मैं सोचती थी वो इंसान मेरे साथ
0: इंसान को इंसान नहीं रहने दिया, हमने रोबोट बना कर रख
1: दिया बना है। दिया है हाँ, तो फिर मतलब
0: और हम ये भी और ये भी भूल गए कि हर इंसान अलग होता है।
1: हाँ, हर इंसान अलग होती है, हर इंसान की माइंडसेट अलग होती है,
0: उसके काम करने का तरीका अलग होता है, उसके मोहब्बत दिखाने का तरीका अलग होता
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ, तो भाई वो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग रील देख के तो सच में अप्लाई ना करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए होता है दोस्त, जिंदगी के लिए नहीं।
1: उनको क्या, उनको तो पैसे मिल गए हैं, तुम अपनी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद।
0: और इसीलिए मैं कहती हूँ डिजिटल डिटॉक्स करे ही करे, जिस तरह से मार्केट में आपको चीजें मिलती हैं डिटॉक्स ड्रिंक के नाम से, ना खरीदें, क्योंकि आपका लिवर किडनी वही काम करता है। ये मार्केटिंग का प्रोसेस है जिसमें आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, आपका तो कुछ नहीं लेकिन उनकी 100 करोड़ की कंपनी तैयार हो चुकी होती है।
1: पर मैम मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं डिजिटल डिटॉक्स करूंगी, पक्का चैलेंज खुद से लेती।
0: चलिए अभी थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ किसके हाथ में कितना फोन दिखता है।
1: मैम
0: तो भैया घड़ी ने इशारा कर दिया कि वक्त है आपसे विदा लेने का। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया है कि किस तरह से इंटरनेट आपके थॉट के साथ खेलता है और क्यों आपको इंटरनेट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आसिफ अंसारी जी हैदराबाद से जुड़े हैं और आपने लिखा है, अरे उन्नति मैम कैसे हो? अरे जी मैं ठीक हूँ आसिफ जी, आप बताइए आप कैसे हैं। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सॉन्ग अच्छा है तारीफ कर देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड काश ये कोई हम कोई कहे हमें भी, चलिए आप भी बहुत अच्छे हैं आपकी भी कर देते हैं। हम उठकर पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं फिर मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं, क्या बात है। हालांकि हम मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं इसलिए हम चांद को देख के वॉक कर लेते हैं। इसके बाद है, हेलो रति मैम, जय माता दी, जय माता दी, आपको कैसे हैं आप?
1: हाँ मैम नवरात्रि चल रहा है इस टाइम तो बहुत अच्छा।
0: एंड कल आप कहाँ खो गए थे? अजी हम नहीं खोए थे, हम तो यहीं मौजूद थे। आई थिंक आप हमारे शो से गायब हो गए थे इसीलिए हम आपको नजर नहीं आए। एंड इसी के साथ आइए चलते हैं अब, क्योंकि वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो मेरी मुलाकात होगी 3 से 4, लेकिन तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए गोंडावाला अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम। स्क्रीन ऑफ करके, स्क्रीन ऑन नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है स्क्रीन ऑन करने की, क्योंकि आप एंजॉय करने जा रहे हैं गुंडे फिल्म से जश्नेश का। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 सालों में पड़ती है। इस दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चे का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को कब क्या और कितनी मात्रा में खिलाना है। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी टीकन भाभी। भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। भाभी हमको ये बताइए कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है ना कि अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में इसका सही तरीका क्या है ये जरा हमको बताइए और हमारे श्रोताओं को बताइए।
3: जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता रहता है।
1: अच्छा मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी हो जाता है क्या?
3: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है। अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना दिया जाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
1: अच्छा तो भाभी बच्चे को खाने में वैसे क्या क्या देना चाहिए?
3: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे अच्छा विकल्प है, जैसे कि मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दाल। ये बच्चे को ताकत देंगे और उसका शरीर स्वस्थ बनाएंगे। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा भी मिलता है। या फिर मूंग के दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे के हड्डियों को मजबूत करती है। अब सब्जियों की बात करते हैं, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चों को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी, के, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं और एनीमिया से भी बचाते हैं और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चों को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहार नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दूध और दूध से बने पदार्थों की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियाँ बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इस सब को मसल कर बच्चों को दिया जाता है।
1: तो भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या कुछ और खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जरा इसके बारे में भी बताइए।
3: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त व दुरुस्त होता है।
1: तो भाभी, लोग तो ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितना खिलाएं और कितनी बार खिलाएं। मुझे तो यही लगता है, आपका क्या मानना है?
3: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार देना चाहिए और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
1: हाँ भाभी, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको जरा विस्तार से समझाइए हमारे श्रोताओं को।
3: देखिए भैया, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन भर में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ ही 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
1: सीधी बात यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बार बार खिलाने का तरीका भी बढ़ाना चाहिए।
3: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
1: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखता हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं, तो कुछ उसके खेलते वक्त मुंह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
3: बिल्कुल नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर ही होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिरा सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
1: ये बात तो सही कहा आपने, बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
3: ये भी ठीक नहीं है, बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
1: तो भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट्स, चिप्स या बिस्किट्स दे देते हैं, सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा, क्या ये तरीका सही है?
3: यही तो सबसे बड़ी गलती है भैया, ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती है। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसी चीजों से भर गई तो असली पोषक खाना वो खा ही नहीं पाएगा, इसलिए बच्चे को इनसे दूर ही रखना चाहिए।
1: और भाभी, एक बात मुझे और बताइए, क्या 6 से 23 माह के बच्चों के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
3: हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का खाना खाने लगता है तो माँ के दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही जरूरी होता है। माँ के दूध में ऐसे पोषक तत्व और एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
1: तो भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ का ही काम है?
3: अरे नहीं भैया, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है, खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पलता है।
1: तो यहाँ पर पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
3: देखिए, पिता की पहली जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है। पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषक वाला सामान जरूर हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्तों वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा या मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
1: सही कहा भाभी। और दादी की क्या होती है भूमिका?
3: दादी को चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर दे तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है, उसे दुलार कर सकती है ताकि माँ थोड़ी सी राहत पा सके।
1: भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना?
3: हाँ बिल्कुल, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वे अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं या उसके साथ खेलते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उन्हें समझाते हैं, हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसी बातें बार बार याद दिलाते रहते हैं।
1: तो श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 महीने यानी 180 दिन का हो जाए, अभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताजा आहार देना शुरू कर दें, और ये क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताजा बनाकर नरम और अच्छी तरह से मसल कर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह से पिसी दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल कर दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
3: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चों को खिलाइएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सौंच जाने के बाद, खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें। इसे शेयर ना करें, इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक से बनती है। और सबसे जरूरी बात ये है कि परिवार के हर सदस्य, माँ, पिता, दादा दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग करें, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी। तो दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ ले करके जाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे
4: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का
4: साफ सफाई और स्वच्छता का
1: पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
1: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं, अच्छी खबर कब आएगी? लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं। साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।
5: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: रेडियो 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराए, जीवन को जिताए। 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
4: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
4: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे, कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
5: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
4: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
5: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
4: अच्छा।
5: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
4: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
5: बहुत सारी,
4: जैसे?
5: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
4: जी।
5: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
4: और बाकी?
5: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
4: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
5: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
4: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए?
5: देखिए आकांक्षा जी,
4: जी,
5: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
4: जी
5: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है, देर मत करो। आरजे दीदी
4: जी,
5: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए, ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
4: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
5: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, कैम्सी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल ना घी ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाए, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
4: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है।
5: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
0: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है।

यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: हाँ बिल्कुल, साचे दरबार की जय। और आ गई है आपकी आर्य समता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड सभी भक्तों को जय माता दी। भाई आप सभी प्यारे भक्तों को आज नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भाई ये वाले जो नवरात्रे आते हैं ना, और मतलब नवरात्रे तो मार्च अप्रैल वाले भी होते हैं, बट ये वाले जो नवरात्रे होते हैं ना, हम लोग इसको बड़े नवरात्रे कहते हैं, क्योंकि इसमें साथ ही साथ दशहरा भी आता है। साथ ही साथ में लेकर के आती है माँ अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ, समृद्धि, स्वास्थ्य और हम सभी के प्रति प्रेम। तो भाई माता जी आ चुकी हैं, आज है उनका दूसरा दिन। आज के दिन की आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन करके ही जान गए होंगे कि हमारे सुन सहेली में हर बार की तरीके से पिछले 3 सालों से नवरात्रों में हम दोपहर में करते हैं माता की चौकी का एक बड़ा सा आयोजन। माता की चौकी का मतलब ये है कि आज आपको सुनने को मिल सकता है आपके अपने बहुत सारे ऐसे गीतों की, जैसे कहते हैं ना, भेंट हम लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं। तो आज के गीतों की अर्जी लगाने के लिए आप जल्दी से आ जाएं, लेकिन आपको सिर्फ माता जी के ही भजनों की अर्जी लगानी है वन बाय वन। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में। मैं हूँ आपकी आर्य समता और आज है सोमवार का दिन, यानी कि खाना खजाना। तो खाना खजाना तो होगा ही, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि व्रत का दिन चलता है और व्रत में बहुत सारी चीजें खाने को मिलती हैं। तो ऐसे ही साथ ही साथ हमारे साथ मास्टर शेफ आ चुकी हैं और देखते हैं कि व्रत में वो क्या बताएंगी। मतलब मन करता है ना कि व्रत की चीजों को हम यूं ही खा लें, भले हम व्रत भी ना रखें। तो खिलाऊंगी, बताऊंगी, लेकिन इस प्यारी सी दोपहर को विश कर देते हैं आप सभी को प्यार भरा शुभ दोपहरिया एंड साथ ही साथ सभी भक्तों को जय माता दी। सीधा रुख करते हैं हमारी मास्टर शेफ की तरफ और उनका करते हैं वेलकम। स्वागत है, अभिनंदन है मैम आपका।
1: सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार
0: जी।
1: ये शरदीय नौरात चल रहे हैं
0: जी, जी।
1: शरदीय नौरात की बड़ी महिमा रहती, पूरा शहर देखो सजा हुआ है,
0: बिल्कुल
1: कितना सुंदर लग रहा है,
0: बिल्कुल मैं।
1: और सब लोग जो है भाव विहोर हो रहे हैं और कम से कम पूजा के लिए तो भगवान के प्रति श्रद्धा रखे ही रखे,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हम लोग का ये त्योहार बहुत धूम से होता है, क्योंकि इसके बाद दशहरा आता है, रावण को रामचंद्र जी मानते हैं।
0: हाँ।
1: तो वो कोई मारने की बात नहीं है, मतलब बुराइयों को मारने की बात है, व्यक्ति को मारने की बात नहीं। हाँ। होती है। तो हम लोग इस नौरात को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लगभग शहर में सभी लोग व्रत होंगे।
0: हाँ।
1: कुछ लोग यहाँ पर परेवा वाले दिन रहते हैं।
0: हाँ,
1: और कुछ लोग दोत्या में, कानपुर लखनऊ में सब लोग परेवा वाले दिन रहते हैं
0: जी, जी।
1: लेकिन गोंडा में हमने देखा सब लोग दुतिया वाले दिन रहते हैं।
0: हाँ, व्रत आज से शुरू करते हैं।
1: हाँ। जैसे हम भी आज दुतिया में हैं।
0: अच्छा,
1: कल पूजा जरूर कर ली थी पर व्रत आज ही है।
0: अच्छा जी,
1: तो थोड़ा बहुत बताए, बाकी आजकल तो जो है कोई साबूदाने की खिचड़ी है, आलू की टिकिया है, सूखा आलू है, आलू के चिप्स हैं, लच्छे, ये सब तो बहुत दिन से सब लोग बना ही रहे हैं।
0: जी, जी।
1: लेकिन आज हम कुछ थोड़ा सा अलग एक डिश लाए हैं।
0: अच्छा जी।
1: आप उसको बना के देखिएगा और खा के देखिएगा, सच में आप तारीफ करेंगी, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी है
0: जी।
1: तो साबूदाने आलू के गोले जिसे कहते हैं
0: जी,
1: वो बना रहे हैं
0: जी।
1: ठीक है
0: जी।
1: तो चलिए आप लोग सामान लिख लीजिए पहले, फिर मैं शुरू करती हूँ, डायरी और पेन भी रख लीजिए
0: जी।
1: तो सबसे पहले आप 2 बड़े आलू ले लीजिए, लगभग 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, बहुत सारों की हमें ज़रूरत नहीं है। इनको आप उबाल लीजिए, उबाल करके छील लीजिए और छील करके आप मैश कर दीजिए।
0: हाँ।
1: इसको अलग रख दीजिए
0: जी।
1: इसके बाद मूंगफली लीजिए जो है वो 1/4 प्याला, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है
0: जी।
1: इसको आप भून लीजिए बिना घी के
0: जी,
1: और फिर इसका छिलका उतार के अलग रख लीजिए। अब आप हरी धनिया ले लीजिए, थोड़ी ज़्यादा
0: जी,
1: 3-4 हरी मिर्च, अगर कोई कम खाता हो तो आप या 1 या 2 डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है 3-4 या 5-6 जो भी खाता, ये तो स्वाद के अनुसार है। और अदरक ये थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा
0: जी।
1: इन चीज़ों को ले लीजिए, फिर जो आपने मूंगफली छिलका उतार के रखी हुई है
0: जी,
1: उसको आप मिक्सी में डालिए, हरी धनिया, हरा मिर्च, अदरक डालिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए
0: जी,
1: और सबको आप पीस दीजिए। सन का मतलब बहुत महीन भी नहीं कि चटनी की तरह, पानी नहीं डालना है, सूखा सूखा पीस रही हैं। फिर आप इसको निकाल लीजिए और इसमें जो है अलग करके रख दीजिए। फिर आप जो है इसमें जो है वो करिए कि इसकी छोटे छोटे गोले बना लीजिए। गोले बना के इसको आप अलग रख लीजिए। अब क्या करेंगे कि आप आधा प्याला साबूदाना लेंगी। साबूदाना आप साफ कर लेंगी, इसको आप धोएंगी नहीं, इसको आप सूखा कढ़ाई में डाल के 3-4 मिनट हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगी। इसका रंग नहीं बदलना चाहिए। अब जो है आप इसको उतार के ठंडा करिए। ठंडा जब हो जाए तब इसको मिक्सी में डालकर महीन पीस लें और इसी समय थोड़ा सा आप इसमें नमक भी डाल दें, हल्का सा डालें, ज़्यादा नहीं
0: जी।
1: फिर इसको पीस करके आप एक कढ़ाई में निकाल लीजिए। कढ़ाई में निकाल के आप अभी कढ़ाई में गैस ना जलाना, सादा ही रखना
0: जी।
1: फिर इसमें आप 1.25 कप नाप के पानी डालेंगे
0: जी।
1: जो भी आप आधा प्याला ले रही या आधी कटोरी, जो भी आपके घर में प्याला छोटा हो बड़ा हो, ये तो आप अपने परिवार के हिसाब से बड़ा भी छोटा भी जैसा भी चाहे ले ले। हम तो एक साधारण प्याले की बात कर रहे हैं कि आप उसको 1.25 कप नाप के पानी इसमें डाल देंगी, थोड़ा सा नमक डाल देंगी और ठीक से घोल देंगी। जब आप इसको घोल देंगी तब इसमें जो है आप क्या करेंगी कि इसको कढ़ाई को आंच पे चढ़ा देंगी
0: जी।
1: और मध्यम आंच पे आप धीरे धीरे इसको चलाते हुए पकाएंगी
0: जी।
1: जब ये फिर ये एक गाढ़ा घोल सा बन जाएगा, फिर ये सूखने लगेगा तो हलवे की तरह हो जाएगा। तब आप इसको जब ये डोसा तैयार हो जाए तब आप आंच बंद कर दीजिए और इसको अलग निकाल के रख लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तब आप एक अप्पम पैन ले लीजिए।
0: अप्पम वाला पैन
1: ले लीजिए। अब आप क्या करें, एक आता है इडली स्टैंड जो छोटी छोटी
0: छोटी बिल्कुल छोटी बिल्कुल छोटी
1: है ना, वो भी आप ले सकती हैं। लेकिन आप इसमें आप अप्पम पैन लीजिए, उसमें आप जो भी व्रत में घी तेल जो खाती हैं वो आप लगा लीजिए। लगाने के बाद इसमें अलग रख दीजिए। अब आप क्या करेंगी, जो आपने हरी धनिया और उसको पीस के गोले बनाए थे
0: जी,
1: आलू आपने मैश कर लिया था, अब थोड़ा थोड़ा सा आलू पतला पतला
0: जी
1: उन गोलियों पे चढ़ा दीजिए, हल्का सा नमक डाल के
0: जी।
1: और कुछ मत डालना, बस नमक डालना क्योंकि अंदर का स्वाद फिर खराब हो जाएगा जो गोली का है। उसके ऊपर बहुत पतला पतला गोले आप चढ़ा देंगे। अब आप क्या करेंगी कि अप्पम पैन लिया, घी लगा दिया, अब आप उसमें थोड़ा सा साबूदाना
0: जी
1: उसमें फैला लेंगी।
0: अच्छा, कटोरी ऐसा उसी के
1: फैला लेंगी, पूरा भी नहीं डालेंगी, पतला पतला। उसके बाद आपने जो ये आलू मूंगफली का गोला तैयार किया वो आपको इसमें रख देंगी, सभी में रख देंगी।
0: मतलब पहले उप्पम वाले जो जिसे जो
1: कहते
0: हैं जो कैविटीज होती है उसमें है ना, उसमें वो पूरा लगा देना,
1: पूरा लगा देना
0: और फिर ये गोला,
1: और फिर गोला रख देना, फिर ऊपर से फिर आप थोड़ा पतला साबूदाना से ढक देंगे।
0: घोल से ढक देना है,
1: ढक देना है
0: जी जी।
1: घोल नहीं रहेगा, एक तरह का पतला डो रहेगा
0: जैसे वो क्या कहते हैं सेवी सर्वरी क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको जैसे नहीं बना
1: इस लरी तो नहीं, हाँ थोड़ा गाढ़ा सा रहेगा तो इसमें आप वो ऊपर से ढक देंगी
0: जी जी,
1: ऊपर ढक के घोल घोल मार देंगी तो गोले गोले हो जाएंगे। अब आप इसको मध्यम आंच पे, तेज आंच में मत पकाना क्योंकि अंदर आलू भी है ऊपर साबूदाना भी है। इसको आप जो है उसमें
0: सेम आंच पे
1: मध्यम आंच पे आप इसको घुमा घुमा के पका लेंगी और देखिएगा ये बहुत सुंदर लाल लाल हो जाएगा, लगेगा जैसे पानी के बताशे हैं। उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए, हरी चटनी, टमाटर की चटनी, जो भी आप व्रत
0: में जो खाना चाहें,
1: जो भी आप खाती हो वो तो आप बनाए होंगी। देखिए जब आलू हम खाते हैं तो भी बना लेते हैं, पूरी है तो भी, इस समय हरी धनिया आ रही है तो हम चटनी हरी धनिया एक बना लेते हैं, नहीं है तो इमली की बना लेते हैं, पिसी खटाई की बना, जैसे भी हमारे पास सुविधा रहती है चटनी तो हम लोग खाते ही खाते हैं बना के, चाहे टमाटर की मीठी चटनी बना ली छौंक करके, जैसे भी है। तो इसको आप बना लीजिए और गरम गरम।
0: मैम एक चीज आपकी अभी रोकना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैम आपको याद होगा कि अभी आप पिछले शायद एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि आप अपनी एक बुक क्यों नहीं लिख रही हैं। मतलब
1: लिख रही है ना बिल्कुल
0: मैम, उसको मतलब उसको जब प्रकाशन होगा
1: बिल्कुल
0: तो आप मुझे दीजिएगा, मैं उसको छपवा के दूंगी और उसका प्रकाशन ऐवे नहीं करवाएंगे हम।
1: अच्छा हो जाएगी।
0: हाँ
1: अच्छा,
0: हम
1: अच्छा।
0: उसका प्रकाशन ऐसे नहीं करवाएंगे, हम एक छोटा सा प्रोग्राम रख करके
1: बिल्कुल,
0: अपनी
1: बिल्कुल।
0: मास्टर शेफ को और अपने जैसे अभी 9 दिसंबर को हमारा 3 साल पूरा होता है और 4th साल लगेगा।
1: हाँ।
0: तो मतलब मुझे लग रहा है कि इतने बड़े दिन पर अगर मास्टर शेफ द्वारा बताई गई रेसिपीज की एक बुक अगर लॉन्च की जाए तो लिसनर्स कैसा रहेगा, मुझे आपका भी आइडिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी लगता है कि मेरे भी सब रिश्तेदार कहते रहते हैं इतनी चीजें बनाती है, बुक लिख डालो तो नई भी रहोगी तो याद बनी रहेगी सब लोग का भी।
0: ऐसा मत नहीं, कभी
1: कोई हाँ, भी अमर होके नहीं
0: अमर
1: आया
0: नहीं
1: है
0: आया, exactly,
1: लेकिन ये है कि जो भी हमारी चीजें हैं फिर हाँ, वो मेरे ही संग चली जाएंगी।
0: एग्जैक्टली exactly,
1: तो ये सब तो, चीजें अच्छी अच्छी हैं
0: बिल्कुल,
1: और सिंपल सिंपल है,
0: सिंपल सिंपल सी है मैम। हाँ, इसीलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते जब आई थी तो मैंने आपको ये बात बोली थी, तो आप प्लीज आप इसको लिखना शुरू कर दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और अब आपको मैंने डेट भी दे दी है 9 दिसंबर उसके हाँ उसके पहले आपको आपकी बुक जो है ये पब्लिश भी
1: अच्छा,
0: कर देंगे और बुक को किस तरीके से छापना
1: हाँ,
0: है
1: हाँ,
0: वो मैं बताऊंगी आपको।
1: हाँ,
0: और मैं एक एक बुक जैसे होंगे ना जो लिसनर्स भी आते हैं उनको भी हम लोग गिफ्ट करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये जो है
1: हाँ सभी अपने श्रोताओं को, शहर के श्रोताओं को तो बुलाएंगे ही कि वो आ जरूर जाए, और बाहर वाले श्रोताओं को जो भी होगा वो हमारी किताब ले और पढ़े
0: तो,
1: और अपने किचन में आप जरूर रखें। मैंने बहुत
0: exactly,
1: अच्छे टिप्स और ये सब लिख रही
0: हूं और इतनी अच्छी
1: सरल,
0: मुझे बहुत खुशी होगी कि मतलब मैम को बहुत सारे लोगों ने कहा होगा पर मुझे लगता है ना जिसने आखिरी बार कहा होगा तो उसकी बात ज्यादा दिमाग में आ गई कि बनाना ही है अब बुक को,
1: बनाना
0: है
1: ही है बिल्कुल।
0: तो रंजना मैम की बुक रेडी हो रही है और उस बुक से आपको सभी को बहुत लाभ होने वाला है। मैम यहाँ छोटा सा ब्रेक
1: बिल्कुल,
0: ठीक है तो हम यहाँ चलेंगे, अभी हमको एक बहुत ही प्यारे सी माता की भेंट वाला गाना एक मिल गया है, आइए सुन लेते हैं और उसके बाद फिर से आएंगे हम बहुत ही प्यारी सी एक रेसिपी को सुनने हमारी मास्टर शेफ के साथ में। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द वायरस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें।

0: धन्यवाद।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: दोस्तों आ गई आपकी आज समता, तो आइए फटाफट शुरू करते हैं मास्टर शेफ के साथ उनकी दूसरी रेसिपी को। देखते हैं अब हमारी दूसरी रेसिपी जो खट्टी मीठी क्या हो सकती है। जी मैम,
4: भाई देखो सब लोग तो व्रत नहीं रहते हैं, कुछ लोग बिना व्रत के रहते हैं, तो कुछ स्वाद वाला खाना उन्हें भी तो मिलना चाहिए।
3: हाँ, ये तो बात सही है।
4: तो चलिए फिर हम बताते हैं कि मूंग की दाल ले लीजिए, धुली हुई मूंग की, बिना छिलके वाली। अगर छिलके वाली भी हो तो भी चल जाएगा। आप एक प्याला भिगो दीजिए और 3-4 घंटे में भीग जाती है मूंग की दाल वैसे भी जल्दी, लेकिन आप 3-4 घंटे जरूर दीजिएगा क्योंकि अच्छे से वो भीगी रहे
3: जी।
4: फिर आप उसको निकाल लीजिए पानी से, उसके बाद आप मिक्सी में डाल दीजिए और मिक्सी में बिना पानी के चर्न करके धीरे धीरे आप उसको चलाइए, फिर बंद कर दीजिए,
3: मतलब पल्सर मोड पे। हाँ, पल्स मोड पे चलाना।
4: फिर आप धीरे कर चलिए कराइए। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं पिस रही है, कभी कभी कोई कोई मिक्सी नहीं लेती है, तब आप 1 टेबल स्पून उसमें पानी डाल दीजिए
3: जी।
4: और अब आप इसको चलाइए तो आराम से चलेगी। फिर आप इसमें जो है अदरक का टुकड़ा और ये क्या कहते हैं हरी मिर्च
3: और लहसुन, अगर खाना
4: नहीं नहीं लहसुन अच्छा। तो नहीं हाँ। हरी मिर्च और अदरक डाल दो बस, और इसको भी मिक्सी में दाल के संग पीस लो।
3: मैम दाल मतलब बहुत पतली करनी
4: है? खूब महीन करनी
3: है,
4: पतली नहीं करनी, पानी नहीं डालो बट महीन को पीसनी है। जब खूब महीन पीस जाए तब उसे थाली में निकाल लो, और निकालने के बाद आप उसको किसी चीज से ढक के 10 मिनट रख दीजिए।
3: अच्छा,
4: बिल्कुल तुरंत मिक्सी से निकाल के मत करिएगा कोई काम
3: जी।
4: अब आप इसमें जो है फिर 10 मिनट बाद हाथ से खूब फेटेंगी, एक तरफ चलाइएगा, मिक्सी में ज्यादा चली होगी तो ये आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
3: हाँ।
4: एक या दो बार में ही अच्छे से हो जाएगी
3: जी।
4: फिर जब ये जैसे ही आप फेटेंगी ये सफेद सी हो जाएगी।
3: अच्छा,
4: इसका रंग जो है एकदम बदल हाँ। जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगी, नमक डालेंगी और 1/4 चाय का चम्मच आप मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डाल देंगी। यूँ तो वैसे भी फूलेगा, लेकिन बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा डालने से ये होता है कि ये बहुत अच्छे से और फूल जाती है। फिर इसमें आप हल्का सा नमक डालिए, जो भी आप खा रही हैं, आप इसको फिर रख दीजिए। अब रखने के बाद जो है, अगर आपको वो है आपके यहाँ पास जैसे इडली स्टैंड अभी हमने बताया छोटा वाला,
3: हाँ हाँ।
4: तो आप इसमें जो है दाल को उसमें इडली स्टैंड में तेल लगा के रख दीजिए और भाप दे दीजिए।
3: हाँ।
4: तो छोटी छोटी बताशे नहीं रहते उतने
3: हाँ।
4: बड़े बड़े बन जाते, जैसे पहले मीठे बताशे आते थे बड़े, उतनी बड़ी बड़ी बन जाएगी। और अगर आपके पास नहीं है इडली स्टैंड या कुछ भी छोटा वाला, तब आप इसकी पकौड़ी ऐसी तल लीजिए, तल करके आप इसको अलग रख लीजिए, पर सेकेंगे आप मध्यम आंच पे ही।
3: अच्छा।
4: बहुत तेज आंच नहीं रखिए, नहीं ऊपर की जो सल्फेट है वो कड़ी कड़ी हो जाती, जली जली
3: हाँ।
4: पर अंदर तोड़िए तो कभी कभी दाल कच्ची रह जाती है। अब आप एक क्या करेंगी, 1 कटोरी या दही जो भी प्याला, 1 कटोरी आप ताजा दही ले लेंगे
3: जी।
4: और दही में आप 2 कटोरी और पानी मिला देंगे।
3: अच्छा,
4: क्योंकि हमारा पतला घोल तैयार हो रहा है, इसमें आप पानी डाल देंगी, थोड़ा सा अच्छा सा नमक डाल देंगी।
3: हाँ।
4: और उसके बाद अब आपने ये तली के रखा ही हुआ है, अब आप इसमें आप वो डाल देंगी पकौड़ियाँ जो आपने करा है।
3: हाँ।
4: और अगर आपने इडली इसी बनाई है तो भी आप इसी घोल में डाल देंगी
3: जी।
4: अगर लगे थोड़ा पानी कम है, थोड़ा दही पानी और मिला दीजिएगा, लेकिन दही फेंट लीजिएगा, ये नहीं है कि दही अलग है और पानी अलग है, ऐसा नहीं हो। अब आपने जो कढ़ाई में तेल था उसको निकाल लीजिए, थोड़ा सा बस तेल उसमें छोड़ दीजिए वो तड़के के लिए। अब आप उसमें महीन खूब काट के करी पत्ता डालिए।
3: अच्छा,
4: करी पत्ता जो है वो जो लोग हमने देखा लोगों साबुत डाल देते हैं
3: हाँ।
4: या ऐसे हाथ से तोड़ा डाल देते हैं
3: हाँ।
4: वो नहीं अच्छा रहता है, क्योंकि अलग छौंक निकालना है तो अलग बात है, लेकिन जब आप उसमें डाल रहे हैं कि पेट में चला जाए आपके हेल्थ के लिए, तो आप खूब महीन काट लीजिए। उसको डाल दीजिए और इसमें जीरा डालिए।
3: अच्छा, जैसे उसी घोल हाँ, में डाल
4: उसी, अभी नहीं उसी कढ़ाई में, अभी घोल में नहीं डाल रही, अभी तड़का बना रही हो तुम। फिर उसमें जीरा डाल देंगी, फिर जो है अगर आप चाहती हैं कि वो बनारसी राई लोगों को बहुत पसंद है,
3: हाँ।
4: कुछ लोग खाते हैं
3: जी।
4: तो आप चार दाना डाल दीजिए, नहीं तो जीरा अब काफी है
3: जी।
4: और लाल मिर्च गोल वाली छोटी छोटी है तो आप उसको डाल दीजिए, जिसको हम और या कश्मीरी मिर्च है या अपने घर जो हम लोग लाल मिर्च यूज करते हैं सूखी, उसको तोड़ करके आप तीन चार डाल दीजिए। और उसको फिर क्या करेंगी, इसको इसमें पानी डाल देंगी।
3: अच्छा।
4: एक चाय का चम्मच कढ़ाई में
3: उसी
4: जो तड़का बनाया है
3: ओके, हाँ ओके, ओके।
4: उसको में आप वो जो है उसमें, क्योंकि जानती दही अक्सर फट जाता
3: हाँ,
4: है
3: फट जाती है,
4: तो आप इसमें तड़के में एक चाय का चम्मच या मतलब एक टेबल स्पून
3: हाँ।
4: चाय का चम्मच गलत नहीं है, एक टेबल स्पून
3: हाँ।
4: आप उसमें पानी डाल दीजिए। पानी डाल के जो आपने दही पकौड़ी तैयार किया वो आप इसमें तड़के में डाल दीजिए,
3: तड़के में डाल दीजिए
4: और 10 मिनट तक ढक करके रख दीजिए
3: जी।
4: तो देखना खूब सुंदर सुंदर फूल जाएगा। आप दही पानी के संग आप ये पकौड़ियाँ दीजिए मूंग की दाल की, और बहुत स्वादिष्ट लगती है।
3: तो मैम इसको ऐसे ही खाएंगे कि किसी रोटी के साथ, मतलब ये नाश्ता वाला
4: Okay. या दही में, बहुत से लोग दोपहर में सिर्फ दही पीते हैं या लस्सी खाते हैं उसकी जगह,
3: उसकी जगह
4: और ऊपर से आप हरी धनिया तो जरूर डालिए,
3: अच्छा खासा पेट भी भर जाएगा और एक वो भी हो जाएगा कि हाँ, मतलब
4: और अगर पुदीना है तो आप पुदीना जरूर डालिए ऊपर से, क्योंकि दही का कॉम्बिनेशन पुदीना है
3: हाँ।
4: पुदीना बहुत अच्छा लगता है,
3: ये तो है।
4: या आप दोनों मिला के डाल दीजिए, हरी धनिया भी और पुदीना भी
3: जी जी।
4: अगर और कोई कुछ खाता हो तो कुटा हुआ मिर्च भी आप तड़के में डाल सकते
3: हैं। अगर आपका व्रत नहीं है तो हम लोग कुछ भी उसमें खा सकते हैं,
4: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं
3: जी।
4: और नहीं
3: जी।
4: है तो आप आलू के जो रोल बना रही हैं
3: हाँ।
4: आप तल लीजिए इसको
3: हाँ।
4: तलने के बाद आप इसी पानी में दही वाले में डाल दीजिए
3: हाँ, हाँ। है ये
4: ना?
3: भी,
4: ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, कभी भी खा के देखो
3: मैम। एक तो इस समय इतनी भूख लगी रहती है ना, और ऊपर से आपकी जो रेसिपीज होती है कसम से ये दिल की बात हम बोल रहे हैं, मन करता है बस आप बना रही है ना, अभी बनाती हुई मुझे बताएं कि बस वो खाने को मिले
4: खाने को।
3: तो थैंक यू सो मच मैम, और हम मिलेंगे आपसे फिर
4: बिल्कुल,
3: और होप सो कि आप मुझे कल फिर से यहाँ पर मिलें, एंड कल के शोज में भी हमारे साथ रंजना मैम होने वाली हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम,
4: आप लोग को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मेरी आप लोग रेसिपी पसंद करते हैं इसलिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का
3: जी। तो थैंक यू सो मच मैम, चलिए अब हम मिलते हैं आपकी नई एक मेरे साथ अभी आएंगी आरजे, तो उनकी आवाज में आपको रेसिपी बताएंगे, लेकिन मैं आती हूँ मैम को बाहर छोड़कर, तब तक के लिए इस प्यारे से गीत को सुने। थैंक यू।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और यस एग्जैक्टली हमारे शोज में यानी सुन सहेली में आने वाले दिनों तक यानी हम पूरे 7-8 दिनों तक चलाने वाले हैं माता की चौकी का आयोजन। तो आप सभी को पता है कि पिछले 3 साल से हम यही नवरात्रों में करते आ रहे हैं और आज की रेसिपीज तो आपने सुनी ली होगी, बहुत ही बेहद बहुत ही अच्छी। तो देखते हैं चैट बॉक्स में जाकर के कि हमारी नई और एक भेंट क्या आई है, एक अर्जी क्या आई है। लेकिन उसके पहले आइए एक प्यारी सी रेसिपी सुन लेते हैं। हमारे पास है संध्या यानी कि आरजे संध्या।
1: हेलो मैम।
0: हेलो संध्या, कैसी हो?
1: मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? हेलो लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जय माता दी सबको।
0: बहुत ही अच्छी। और चलिए फटाफट आप मुझे एक व्रत की आप मुझे कोई रेसिपी बता दें।
1: यस मैम, आज मैं आपको व्रत की बहुत लाजवाब कुरकुरी और झटपट बनने वाली रेसिपी बताऊंगी।
0: जी,
1: कच्चे आलू का साबूदाना का थाली पीठ जिसे कि शॉर्टकट में पैनकेक कहते हैं।
0: पैनकेक, ओ माय गॉड, मतलब आप कोई चीज ऐसी रह नहीं गई है जो व्रत में हम लोग नहीं खा सकते हैं।
1: यस मैम, है बस हाँ। लेकिन मैम बनाने का मन होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए इंसान को।
0: अच्छा ऐसा है?
1: हाँ। तो इसे बनाने के लिए साबूदाना को पहले भिगोने की भी जरूरत नहीं है।
0: हाँ।
1: अब ये तो पहले ही होता था कि साबूदाना को भिगो के फिर ही कुछ बनाते हैं, पर आप तो बिना भिगोए भी उसकी मतलब बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: तो अब हम सबको बताएंगे उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सामान क्या है
0: जी,
1: उसमें क्या क्या लगते हैं
0: जी।
1: साबूदाना, कच्चा आलू, मूंगफली जो खाने वाली मूंगफली होती है,
0: हाँ,
1: दाना
0: हाँ,
1: वो
0: हाँ,
1: वाला।
0: अच्छा अच्छा।
1: हरी मिर्च, जीरा, सेंधा नमक जो व्रत में खाते हैं,
0: हाँ,
1: हरा धनिया
0: जी,
1: घी या जो भी ऑयल आप फास्ट में यूज करते हैं, जैसे कोई मूंगफली का ऑयल करता है, कोई घी करता है
0: जी,
1: तो डिपेंड करता है उस पर कि वो कौन सा पसंद करता है।
0: अब
1: बात करते हैं हम इसे बनाएंगे कैसे
0: जी।
1: मैम आप इंटरेस्टेड हैं?
0: हाँ अरे बिल्कुल इंटरेस्टेड है, मैं ध्यान से सुन रही हूँ तुम्हारी रेसिपी को।
1: यस जी। सबसे पहले साबूदाना का पाउडर बनाएं। कच्चे साबूदाने को मिक्सर या जार में डालकर आप एकदम उसे बारीक पीस लें
0: जी,
1: जैसे कि हल्का सूजी जैसा टेक्सचर उसका बन जाए, जैसे कि रवा नहीं होता है
0: जी जी जी,
1: बिल्कुल वैसा हो जाए। फिर आलू तैयार करें।
0: ओके।
1: कच्चे आलूओं को छीलकर कद्दूकस में ग्रेट कर लें, यानी उसे जैसे कि अदरक नहीं घिसा जाता है
0: ना, वैसे उसको ग्रेट कर लें,
1: वैसे ग्रेट कर लें
0: जी।
1: इन्हें पानी में डालकर अच्छी तरह से धुल लें, दो बार धुल लें। एक बार आप धुल लेंगे तो उसका झाग निकल, जो रेड मतलब रेडिश वो होता है कलर, उसका निकल जाएगा। फिर उसे अच्छे से धुल कर फिर हाथों से दबा कर सारा पानी निचोड़ दें, अपने खुद के हाथों से दबा के उसे सारा पानी निचोड़ दें। फिर जब आपको लगे कि हाँ इसका पानी निकल गया है, फिर उसे आप एक अच्छे साफ बर्तन में रख लें। फिर उसका जो मिक्सर है वो तैयार करें। एक बड़े बर्तन में निचोड़े हुए जो आपने आलू निचोड़ा था उसके लच्छे को, मतलब उसको रखें, साबूदाना पाउडर रखें
0: जी,
1: दरदरी पिसी हुई मूंगफली, जो मूंगफली का है दाना है वो, मतलब ऐसे उसे ग्राइंड करो कि मतलब एकदम एकदम पाउडर तरीके से ना हल्का
0: दरदरा वाला हो जाए।
1: हरी मिर्च, जीरा, हरा धनिया और सेंधा नमक डालें। पानी बिल्कुल नहीं डालना है
0: जी जी,
1: क्योंकि जो आपने आलू का लच्छा बनाया है,
0: हाँ हाँ,
1: उसमें अभी कहीं ना कहीं वो मॉइस्चर होता है।
0: ओके।
1: तो आलू की जो नमी यानी मॉइस्चर होती है,
0: हाँ,
1: वो अच्छे से मिक्स होकर आटा जैसे बन जाएगा।
0: अच्छा। हाँ।
1: आपके साबूदाना का जो आपने ग्राइंड वो किया है पाउडर,
0: हाँ,
1: उसमें
0: अच्छा।
1: उसमें पानी नहीं डालना है, आलू मतलब वो मिक्स हो जाएगा और मतलब वो एकदम डो जैसे आटा जैसे बन जाएगा। जब आप मिक्स करेंगे तो आटा जैसे बन जाता है। तो उसे फिर क्या करना, जो बन जाएगा तो फिर उसे आप 5 मिनट के लिए उसे ढक के रख दें,
0: हाँ,
1: ताकि वो सॉफ्ट और मुलायम हो सके
0: जी।
1: फिर थाली पीठ फैलाएं।
0: थाली पीठ क्या होता है
1: मैं बताती हूँ, हाँ, आप जानेंगे। एक तावे पर थोड़ा सा घी लगाएं,
0: हाँ,
1: अब तो पैन सब लोग के यहाँ मैम होता है,
0: हाँ,
1: उस पर घी लगाएं। मिश्रण से एक बड़ी लोई लें, जो आपने वो मतलब मिक्सर मतलब डो जैसे बना लिया है,
0: हाँ,
1: उसकी लोई लें और उसे ठंडे या हल्के गुनगुने तावे पर हाथों से थपथपाते हुए गोल पराठे जैसा फैला।
0: अच्छा, मतलब हाथ से थपथपाना है, जैसे हम लोगों के
1: चिल्ला उल्ला बनता है मैम, तो फिर वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, पर इसे लिक्विड नहीं करना है। फैला दें, ज्यादा मोटा ना रखें
0: जी,
1: ये नहीं कि ज्यादा मोटा हो जल्दी।
0: पता है हम लोग की सिंधी कास्ट में हम लोग इसको मकई का ढोडा कहते हैं।
1: यस मैम।
0: और जैसे ढोडा उस पर ऐसे उसको गूंथ के मकई के आटे को, अब सर्दियां आने वाली हैं,
1: हाँ,
0: तो हम लोग उसको तवे पे घी लगा के रख देंगे ऐसे डो,
1: हाँ,
0: और हाथ से पूरा रोटी फैलानी होती है।
1: मन तो बहुत टेस्टी लगता होगा,
0: बहुत गजब,
1: क्योंकि मुझे मक्के के जो पराठे बनते हैं वो मतलब
0: पराठे नहीं है जैसे उसको पका करके ना हाथ से,
1: मतलब उसमें तेल लगा के सेक के उसे कुछ बोलते हैं, मैं वाकई में उसे जीरा नमक
0: मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तो आलू डाल के उसको बनाते हैं, अब सर्दी आ रही है
1: तो आपके यहाँ तो और स्पाइसी बनता
0: है, बहुत बढ़िया,
1: मुझे सच में बहुत पसंद है। जैसे कि मक्के की पूरी अच्छी
0: पूरी होती है, पर हम लोगों के यहाँ ऐसे नहीं बनती, हम लोगों के यहाँ जैसे पूरा उसका डो बना के और फिर उसको तवे पे रख के हाथ से पूरा फैलाना होता है,
1: और फिर आप बताते हो उसमें आलू पड़ा तो और ज्यादा डिलीशियस लगता है।
0: आलू मूली और मटर बॉईल करके मतलब बहुत टेस्टी बनता है, तो मैं सर्दियां आ रही है ना मैं लेके आऊंगी तुम्हारे लिए।
1: ओके मैम थैंक यू। तो मतलब वो क्या कहते हैं कि उसे अपने तवे पे फैला दीजिए हाथों से, ज्यादा मोटा ना रखे, बीच में एक छोटा सा होल कर दे ताकि ये अंदर तक सीख सके
0: जी।
1: मान लो मैम जैसे हम लोग बरिया और ये नहीं बनाते
0: समझ गए, जैसे दही बड़ा भी होता है बीच से होल करके
1: तो अच्छे से फूल सके। फिर क्या करें उसे कुरकुरा सेकें, तावे को गैस पर रखें, धीमी मतलब जो उसका टेम्परेचर है उसे धीमा रखें, बहुत ज्यादा हाई ना रखें
0: जी।
1: 3 से 4 मिनट तक उसे ढक कर पकाएं, जब नीचे से थोड़ा सुनहरा या मतलब वो हल्का ब्राउन कलर तो दिखने लगता है तो जब वो हल्का ब्राउन कलर का सुनहरा कलर का हो जाए तो ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल जो आपको लगाना है वो लगा के पलट दीजिए। अच्छा। दूसरी तरफ भी बिना ढके एकदम क्रिस्पी और गोल्डन होने तक सेक लें। जैसे आपने एक तरफ ऐसे हल्का वो ब्राउन कलर का हो गया उसमें आपने घी लगाया फिर उसे पलट के दूसरे साइड में सेम मतलब वर्क करना है उधर भी ऐसे हो जाए तो मतलब इतने उसे जलने न दें लेकिन उसे कुरकुरे और गोल्डन कलर सुनहरे कलर तक होने तक सेक
0: उसको सेक लें।
1: यस मैम। फिर इसे अगर दही के रायते हैं या फिर अदरक वाली चाय है तो मैम आप गर्मा गर्म खाएं बहुत अच्छा बनेगा, मैम बहुत अच्छा बनेगा। इसका नाम ही पैनकेक है लेकिन खाने में तो और ज़्यादा डिलीशियस लगेगा।
0: ओके,
1: तो हमारे लिसनर्स अब देर ना करिए क्योंकि हमारे पास वक्त हो गया है कि
0: एक प्यारा सा गाना सुनने का, एक प्यारे सी जो भेंट आई है हमारे पास उसको सुनाने के लिए। और संध्या को सब लोग थैंक यू बोलिएगा अभी, बहुत ही मस्ती वाली, बहुत ही टेस्टी वाली, मस्ती वाली नहीं बहुत ही टेस्टी सी इन्होंने अभी एक रेसिपी हम लोगों को बताई है।
1: यस मैम।
0: तो चले संध्या
1: सुन
0: लेते एक प्यारी सी भेंट जो कि भेजी है अरविंद जी ने, और उसके बाद प्रीति जी हैं, आशु जी हैं, इन सबकी लगी हुई है। तो नेक्स्ट जो अर्जी मैं बजाऊंगी वो है प्रीति जी की, ठीक है?
1: Okay.
0: तो चलिए सुन लेते हैं इस प्यारी सी भेंट को।
1: यस।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता। यस एग्जैक्टली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सभी को प्यार भरा जय माता दी। आइए लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली एक रेसिपी सुन लेते हैं विद इन 5 मिनट, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो भी अभी एंडिंग की ओर बढ़ चुका है। तो हमारे साथ है आज हमारे साथ वाली सहेली यानी कि निधि। तो निधि क्या बताने वाली हैं आज आप?
2: जी मैं आज सभी लिस्टर्स को बताना चाहूँगी कि चल रही है नवरात्रि। नवरात्रि में सबका ये वो होता है, मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, पूरे घर के लिए बना दिया, जिसका फास्ट है मैं उसके लिए क्या बनाऊँ। और आप वही हमेशा देखते हैं, आलू बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये बना, पर आज हम कुछ अलग बनाएंगे और जो फटाफट बन जाता है और इतना टेस्टी और स्वादिष्ट होता है कि आप भी सोचेंगे मैं तो अपनी मम्मी के लिए ज़रूर बनाऊँगी।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: तो हम बनाएंगे कुट्टू का चीला।
1: ओह माय गॉड, वाह जी।
2: और मैम सबसे अच्छी बात है कि इसको बनाने में बस ज़्यादा
1: टाइम ही नहीं लगता है, ज़्यादा
2: बिल्कुल नहीं, आप बस ऐसे फटाफट बना लेंगी।
1: जी, जी।
2: तो मैं आपको पहले सामग्री बता दूं कि क्या रहेगी। तो पहले आप 1 कप कुट्टू का आटा ले लें, उबला हुआ आलू जो आप मैश करके मिलाएंगी
1: जी।
2: आप 1 चम्मच दही ले सकती हैं, हरी मिर्ची, अदरक, हरा धनिया, जीरा, काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, घी या तेल में बना सकती हैं और आप अपने हिसाब से उसमें पानी
1: जी।
2: बनाने की विधि, एक बड़े मिक्सिंग बाउल में कुट्टू का आटा, कद्दूकस किया हुआ उबला आलू, दही, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, काली मिर्च और सेंधा नमक डालें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और अच्छी तरह फेंटते हुए एक चिकना गांठ वाला घोल तैयार कर लें।
1: बिना गांठ वाला?
2: जी,
1: बिना गांठ में लंप्स नहीं पड़े उसमें,
2: और
1: है ना?
2: जी, उसको
1: अच्छे से फेंट लेना है।
2: जी हाँ, और उसको गोल करके रख दें।
1: हाँ।
2: ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल जैसे आप डोसा बनाती हैं या आपने आटे का वो चीला बनाया होगा।
1: हाँ।
2: तो आप वैसा कर सकती हैं
1: जी।
2: फिर आपके पास नॉन स्टिक या साधारण तवा गैस पर चढ़ा दीजिए गरम होने के लिए। उस पर थोड़ा सा घी या तेल लगाकर चिकना कर लें। फिर उसे आप अपने हिसाब से फैलाइए, जैसे आप डोसा फैलाती हैं गोल आकार का हल्के हाथों से। फिर कुट्टू के आटे को चिकने ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पतला फैलाने की कोशिश ना करें। आपने देखा होगा अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी भी डाल देती हैं।
1: हाँ।
2: तो ऐसे बहुत ज़्यादा चिकना चिकना हो जाता है, इसलिए आप पानी और जब उसे मिला रही हैं तो उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर डाल दें।
1: हाँ।
2: कि आपको मिलाने में भी आसानी हो। फिर उसको आप धीमी आँच पर सेकें चीले के किनारे पर, और ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा दें। नीचे की सतह हल्की सुनहरी और किनारे थोड़ा सा पक जाने पे सावधानी से उसे पलटें कि वो टूटे ना, और जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आप एक साइड हुआ दूसरी साइड पलट दें।
1: हाँ।
2: एक साइड जैसे डोसा आपका क्रिस्पी हो जाता है, फिर दूसरे साइड आप पकाती हैं।
1: हाँ।
2: दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी लगाकर इसे हल्का सा दबाते हुए सेक लें, दोनों तरफ सुनहरा सॉफ्ट हो जाएगा और इस तरह आपका चीला तैयार है। और इसे आप दही के साथ या चटनी के साथ खा सकती हैं।
1: वैसे ही भूख लगी बहुत जोर से।
2: मैम आप पहले ये देखिए, इसमें जो सारी चीज़ें पड़ रही हैं वो सारी चीज़ें अगर मिला दें किसी में क्या टेस्ट आ जाता है।
1: और वैसे भी निधि बिगवा बताऊँ
2: जी,
1: व्रत वाली चीज़ें यार जैसे भी बनाओ ना अच्छी लगती
2: है। जी मैम, मतलब ऐसा लगता है पूरा घर महक जाता है।
1: घर महक जाता है कि मैं मतलब क्या ही बता दूँ। तो बहुत ही प्यारी सी एक मुझे एक प्यारा सा भजन भी मिल गया है, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते एक प्यारा सा भजन सुना दें हम अपने भक्तों को, और उसके बाद हम आएंगे आपसे टाटा बाबाई करने। क्यों?
2: जी बिल्कुल
1: ठीक है। तो चलिए, आपको कहीं नहीं जाना, आपको सुनते रहना है हमारे साथ इस प्यारी सी भजन को, बिगड़ी मेरी बना दें ओ शेरों वाली मैया। बहुत ही प्यारा सा भजन है
2: जी, बिल्कुल बिगड़ी सबकी बन जाएगी इसी भजन के साथ।

मुझको एग्जैक्टली और माँ तो सबकी सुनती ही हैं, चाहे वो हमारी माता रानी हो, हमारी नौ बहनें जो हैं हमारी माता रानी वो हो, या हमारे घर की माँ हो, मतलब सभी जो हैं माएँ हैं वो हमारी ज़रूर सुनती हैं, हमारी परेशानियों को बिल्कुल हर लेती हैं। तो आज के लिए बस शो में इतना ही था, हम कल मिलेंगे फिर एक नई उमंग, एक नए उत्साह और एक नई आशा के साथ, क्योंकि हमारे साथ हैं अभी नौ दिन माता रानी का साथ। तो मिलेंगे कल एक नई उमंग के साथ, आज के लिए इतना ही, बस सभी को प्यार भरा टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड सभी को एक साथ हम निधि और हम क्या बोलेंगे, जय माता दी। ठीक है निधि, तो प्यार से एक साथ बोलेंगे जय माता दी।

0: या हाथ पैर का सुन पड़ जाना। इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9216-9876-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
7: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
8: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
9: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
10: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सभी। घड़ी में वक्त हो चला है 3:08 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानसली गोंडा का अपना वाला FM। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी रेडियो जॉकी उन्नति। प्रोग्राम चल रहा है कॉलर ट्यून गोंडा यानी कि फरमाइशों वाला कार्यक्रम जो 3 से 4 चलेगा मेरे साथ, जिसमें होंगी आपकी फरमाइशें आपकी बातें आपके सॉन्ग्स आपके डेडिकेटेड मैसेजेस जो ऑफकोर्स हमारा काम है उन तक पहुंचाना जिनको आपने किया है डेडिकेट। तो अपनी फरमाइश भेजने के लिए बस उठाइए अपना फोन डायल करें 6393316429 आई रिपीट 6393316429 और अपनी फरमाइश के साथ साथ अपना नाम अपने शहर का नाम जरूर से बताइएगा एंड किसको डेडिकेट किया है ये भी। फिलहाल के लिए आइए ट्यून करते हैं हमारी पहली फरमाइश को। हमारी पहली फरमाइश आई है बाराबंकी से बाबू अंसारी जी की और एंजॉय करते रहिए ये गाना जो कि डेडिकेटेड है हमारे महेंद्र जी अरविंद जी को। चलो इश्क लड़ाई से मस्ती मस्ती स्टे ट्यून्ड।

और कुछ ज्यादा ही मस्ती हो चुकी है स्टार्टिंग होते ही, यानी कि इस प्रोग्राम का आगाज होते ही इतनी मस्ती मस्ती हमने चिल्ला लिया है जो कि हमारे बाबू अंसारी जी की फरमाइश पर है। चलो इश्क लड़ाए फिल्म से आप इंजॉय कर रहे थे सोनू निगम और अलका जी की आवाज में, डेडिकेट था हमारे महेंद्र जी और अरविंद जी को। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं आपके अपने चैट बॉक्स में जो मैसेजेस आए हैं उनको पढ़ने के लिए। तो आसिफ अंसारी जी लिख रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डियर उन्नति मैम। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, एंड गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं। कॉलर ट्यून गोंडा में प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। महेंद्र दीपन जी राजस्थान से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, नमस्ते अर्जुनति मैम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं आप, अपना ख्याल रखिए, मुझे पता चला है कि आपको बुखार हो चुका है। एंड गुड आफ्टरनून, नमस्ते अर्जुनति मैम जी लिखा है हमारे प्रमुख जी ने, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मैसेज हमको नज़र आया है फिलहाल के लिए। इसके बाद मैसेज है हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी का, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। धर्मेश जी आपका भी वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। अरविंद जी लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून अति मैम, जय माता दी, गुड आफ्टरनून टू यू, जय माता दी। एंड इसके बाद है ओके, बहुत मेहनती लड़की, तारीफ मेरी थी क्या, अगर मेरी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। बाबू अंसारी जी फ्रॉम बाराबंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका वेलकम करते हैं। गुलफशा सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो लिख रही है, गुड गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड गुड आफ्टरनून टू यू। एंड इसके बाद लगातार आपके डांसिंग इमोजीज हैं, पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड आफ्टरनून टू यू। इसके बाद जो मैसेज है वो जारा खान जी का है, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। गुलफशा जी का कहना है कि हम सब मस्त, आप बताओ अति मैम कैसी है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद बाबू अंसारी जी ने लिखा है, गुड आफ्टरनून अति मैम जी, कैसे हैं आप, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। एंड वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आपने लिखा हुआ है जारा खान जी। सोनिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपको अपने गाना डिमांड करने के लिए कॉल करना पड़ेगा 6393316429 पर। एंड इसके बाद जो मैसेजेस हैं वो हम लेते हैं इस छोटे से प्यारे से गाने की फरमाइश को पूरा करने के बाद, जो कि हमारे देवी प्रसाद जी की फरमाइश है। इंजॉय कीजिए एक लड़की भीगी भागी सी।

और आप एंजॉय कर रहे थे किशोर दा की आवाज में उन्हीं की फिल्म का एक गाना जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी, देवी प्रसाद जी की फरमाइश थी, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से एंजॉय कर रहे थे आप। 1958 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था और आपकी प्यारी सी मधुबाला इसके अंदर नजर आई थी। प्रमुख जी ने गाने की बहुत तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवास विकास जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। सर कैसे हैं आप? एंड इसके बाद जो मैसेज है वो लगातार हमारे प्रमुख जी की तरफ से ही आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्नति मैम मेरी पसंद का गाना बजाएंगी तो मैं आपको ओके तुलतुले खिलाऊंगा। जो आप मुझे कुरकुरे खिलाइए, लेकिन खिलाइएगा तब जब आप मुझे कॉल कर लेंगे 6393316429 पर अपनी फरमाइश करने के लिए। रोशनी रावत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड आफ्टरनून डियर क्यूट क्यूट मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू क्यूट क्यूट क्यूट रोशनी जी। हर बार हम ही क्यों क्यूट बने, आप भी तो क्यूट हैं। एंड आई एम फाइन लिखा है हमारे आसिफ अंसारी जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि आप ठीक हैं। एंड ओके तो आपने लिखा है, हाँ उनती मैम जी बुखार हुआ है, इसके साथ आराम भी मिला, आज घर पर पड़ा हूं। उसको कहते हैं लेटना। ये भाषा जो हमारी है ना, ये बहुत प्यारी होती है। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश है दिल जंगली कबूतर, उदित नारायण की आवाज में एंजॉय करते रहिए। और ये फरमाइश हमारे पास आई है ब्रज रेडियो श्रोता मथुरा से कर रहे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति जी। तो भैया मथुरा की फरमाइश है, तो आइए गोंडा में प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं। मिलते हैं अगली फरमाइश पर जो कि हैदराबाद से आई है, यानी कि तेलंगाना से।

शारदा प्रसाद प्रजापति की फरमाइश पर आप इंजॉय कर रहे थे उदित नारायण साधना सरगम की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे बोल दिल जंगली कबूतर कहार फिल्म से। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है हैदराबाद तेलंगाना से आसिफ जी की, और वो इंजॉय करना चाहते हैं मेहंदी मेहंदी चोरी चोरी चिपके चिपके की मूवी से। इंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे आपको इस गाने के उस पार जसविंदर की आवाज है, और आप सुनते रहिए। एंड शानिया शेख हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो गुड आफ्टरनून नती मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और आप मुझे नई नवेली लग रही हैं इसलिए आपका वेलकम करते हैं। आप कहाँ से हैं ये भी मुझे बताइएगा कि आप गोंडा से सुन रही हैं या आप सुन रही हैं हमें किसी और क्षेत्र यानी किसी और ज़िला से। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश त्रिपाठी जी इस तारीफ़ के लिए।

और ये फरमाइश थी हमारी आसिफ जी की हैदराबाद तेलंगाना से। एंड प्रमुख जी, मैंने शानिया कहा भी नहीं है, इट्स ऑलवेज लाइक शनाया। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला फरमाइश हमारे पास है गुलाबशाह जी का, गाना डेडिकेट किया है उन्होंने आसिफ जी को। साजन जी घर आए तो इंजॉय करते रहिए आप। कुछ कुछ होता है फिल्म से और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के हमारी अगली फरमाइश। अगला गाना अरविंद जी का स्वागत करते हैं वापस से उनके वाले शो कॉल ऑफ ट्यून गोंडा में।

अभी देखो भैया, दुल्हन शर्मा रही है तो सवाल बन गया कि दुल्हन काहे शर्माए, और दुल्हन ना शर्माए तो भी सवाल बन जाता है कि दुल्हन काहे ना शर्माए। तो दुल्हन करे तो क्या करे, मैं तो कह रही हूँ दुल्हन जाके छोला भटूरा खाए और एंजॉय करे। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और आप सुन रहे हैं कॉल अच्छी उन गोंडा विदराज नदी, और ये है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। उन्नति श्री, गुड आफ्टरनून, द्वितीय नवरात्र की शुभकामनाएं आपको भी, एंड गुड आफ्टरनून टू यू। थैंक यू सो मच उस्मान खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून राजे मैम, गुड आफ्टरनून टू यू उस्मान जी, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में। अगली फरमाइश हमारे पास आई है निशा जी की फ्रॉम गोंडा, और वो इंजॉय करना चाहती हैं, पंछी सुर में गाते हैं, भवरे गुनगुनाते हैं, इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के हमारे राजस्थान से आई फरमाइश महेंद्र जी की, एंड देन मिलते हैं गोंडा में अगेन, क्योंकि हमारे पास है अगली फरमाइश गोंडा से।

और गोंडा सी ये फरमाइश थी हमारी निशा जी की, भवरे गुनगुनाते हैं और आप एंजॉय कर रहे थे पंछी सुर में गाते हैं। उदित नारायण की आवाज़ है, इतना खूबसूरत गाना लगता है ना, ऐसा लगता है कि पहाड़ों में सच में चले गए इस गाने को सुनने के बाद। सिर्फ तुम फिल्म से एंजॉय कर रहे थे। अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ जो कि राजस्थान से आई है, छोड़ के ना जाओ पिया, एंजॉय करते रहिए। और ये गाना आया है हमारे महेंद्र जी की फरमाइश पर, माँ तुझे सलाम 2002 में फिल्म को रिलीज किया गया था। एंजॉय करते रहिए। अलका जी की आवाज़ है, साजिद वाजिद का संगीत है, समीर साहब के लिखे बोल।

और आप एंजॉय कर रहे थे महेंद्र जी पंजी की फरमाइश फ्रॉम राजस्थान, माँ तुझे सलाम से छोड़ के ना चाओ पिया। बहुत ही प्यारी आवाज़ थी हमारी अलका जी की, समीर साहब के लिखे बोल साजिद वाजिद का गाना था। एंड इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, पेश करते हैं आपके लिए किशोरदा की आवाज़ में धर्मेश त्रिपाठी जी की फरमाइश। और फरमाइश आई है, मेरे महबूब कयामत होगी, और कयामत की तो पता नहीं, लेकिन हमारे प्रमुख जी ने काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे इमोजीज का बवाल जरूर मचा रखा है चैट बॉक्स में, ऐसा लग रहा है बाढ़ बाढ़ आ गई है। तो एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ ट्यून कोटा विद राज श्रुति, और ये है रेडियो ज्ञान 99.6 FM।

हाँ जी, और आप एंजॉय कर रहे थे मेरे महबूब कयामत होगी किशोरदा की आवाज में। बहुत ही प्यारा सा नगमा था हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी का, मिस्टर एक्स इन मुंबई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और ऑफकोर्स आप बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, आनंद बख्शी के लिखे बोलते हैं। हालांकि हम आपको बता दें, एंड अगली फरमाइश हमारे पास आई है सुरेंद्र यादव जी की। नवरात्रि की वाइब्स को टैकल करते हुए उन्होंने फरमाइश भेज दी है एक प्यारे से भजन की, और भजन इतना प्यारा है कि मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। तो एंजॉय करते रहिए सुरेंद्र जी की फरमाइश पर। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरा भवन सजा जिन फूलों से। ऑफ कोर्स

वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए ट्यून करते हैं हमारी अगली फरमाइश को। हमारी अगली फरमाइश है अरविंद जी की, ना कचरे की धार ना मोतियों के हार, तो इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। अगली फरमाइश हमारे पास है सारा खान की, राजू सलमानी जी की, रईस जी की, अन्नपूर्णा जी की, रफी खान की, अरीवा शेख की, रोशनी जी की, शनाया जी की, उस्मान जी की। लेट्स सी भैया हम कितनी फरमाइशें पूरी कर सकते हैं और कितनी हम नहीं कर पाएंगे, हालांकि हमारे पास इम्तियाज जी की फरमाइश भी आ चुकी है।

और ये फरमाइश थी हमारे अरविंद मौर्य जी की। इसी के साथ हाई ट्यून करते हैं हमारी अगली फरमाइश जो कि ज़ारा खान जी की है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर। ज़बरदस्त सॉन्ग, थैंक यू सो मच उस्मान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच धर्मेंद्र मोहन जी, भैया आज आपने कॉल नहीं किया है धर्मेंद्र जी, फिलहाल के लिए कॉल ट्यून को नामिक करना पड़ता है कॉल फॉर योर फरमाइश।

ज़ारा खान की फरमाइश पे आप एंजॉय कर रहे थे हम तुझे इतना प्यार करेंगे, एंड वक्त है हमारे अगले गाने को ट्यून करने का। बहुत ही कम वक्त है, बहुत सारी फरमाइशें हैं, देखते हैं भैया उनकी फरमाइश पूरी कर पाते हैं हम सबकी या आपसे हम माफी मांगने वाले हैं। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, आप एंजॉय करने जा रहे हैं राजू सलमान जी की फरमाइश। हम मिलते हैं अगले गाने पर जो कि हमारे रईसा की है।

0: तू निकले ना घर से।
1: और ये फरमाइश थी हमारी राजू सलमानी जी की, बीच पे रोकने के लिए चाहेंगे माफी। आइए एंजॉय करते हैं हमारी शनाया शेख की फरमाइश, और वो है सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। काकोरी से आप सुन रही हैं, तो एंजॉय करते रहिएगा। और अगली फरमाइश को हम ट्यून करेंगे जो कि हमारे रईस साहब की है, अन्नपूर्णा जी की है, रफी खान की है, रीवा शेख की है, रोशनी जी की है, उस्मान खान की। और लेट्स सी भैया, इन सारी फरमाइशें हम पूरी कर भी पाते हैं आज के शो में, इम्पॉसिबल।

सुनाया जी की बहुत ही प्यारी फरमाइश थी और बीच में रोकने पर लग रहा है जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो, बट क्या करें, माफी चाहेंगे आपसे। आइए ट्यून करते हैं हमारी अगली फरमाइश जो कि हम तुमसे है, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। और ये गाना मुझे डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी यही खोजबीन करके लेकर आती हूँ रईस साहब की लड़कियाँ लड़कों जैसी क्यों नहीं होती।

एंड ये फरमाइश थी हमारे रईस साहब की, हालांकि बहुत ही प्यारा सा नगमा था। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। एंड विकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं विकी जी, एंजॉय करते रहिए। समय बड़ा बलवान है, हमारी अनपुरा जी की फरमाइश है और लगता है कि आखिरी की दो फरमाइशें और पूरी कर पाएंगे। इसके अलावा मैं माफ़ी चाहूँगी हमारे उस्मान जी से, रोशनी जी से, जिनकी फरमाइश को आज हम प्ले नहीं कर पाएंगे। आई एम सो सॉरी।

भैया। एंड इसी के साथ ही उन करते हैं अब हमारी आखिरी फरमाइश, जो ऑफ कोर्स हमारे रफीक जी की है। तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। एंड इसी के साथ आपसे तहे दिल से माफी चाहती हूँ धर्मेंद्र मोहन जी, इम्तियाज जी, उस्मान जी एंड अरीबा शेख जी, रोशनी जी, आप सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपकी फरमाइशों को नहीं प्ले कर पाए बिकॉज ऑफ टाइम, यानी कि वक्त नहीं था हमारे पास। फिलहाल आप कल जल्दी कॉल कीजिएगा, कल मैं आपकी फरमाइश को ज़रूर से पूरा करने की कोशिश करूंगी। लेकिन जाते जाते ये गाना आप सभी को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि आपकी फरमाइश नहीं प्ले हो पाई है, बट ये गाना मेरी तरफ से आप सभी को डेडिकेटेड है। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार जी, गुलाबशाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोशनी रावत जी, आपका भी शुक्रिया। एंड जिनकी फरमाइशें नहीं हुई है, एक बार वापस से माफी चाहूंगी, तहे दिल से माफ कीजिएगा। ख्याल रखिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो 99.6 एफएम। बाय-बाय।

0: क्या आप या आपका कोई अपना जले की निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9761 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस 12।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोदली में, स्टे ट्यून्ड।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा, देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562, ये व्हाट्सएप करें 9532-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास बेलसर रोड गोंडा। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। शाम का शो आपका मनपसंद गोधुली शुरू हो चुका है आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। चूंकि इस शो में हम ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को बुलाते हैं जो अपने एरिया के खास होते हैं, आज एक ऐसे गेस्ट, एक ऐसे अतिथि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के कई सारे सवाल होम्योपैथ से जुड़े हुए होते हैं उनके जवाब देंगे। साथ ही आज होम्योपैथ को थोड़ा सा और विस्तार से जानने की हम कोशिश करने वाले हैं आपके गोधुली टॉक शो में। तो चलिए फिलहाल हम अपने आज के अतिथि का परिचय दे दें। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास त्रिपाठी जो कि होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते हैं संजीवनी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद सर।
0: तो हमारे श्रोताओं को चूंकि बहुत सारे इंटरव्यू सुनने को मिले हैं इसी चैनल के माध्यम से, लोगों ने सुना है, लेकिन हमने ज्यादातर जो बातचीत की है वो एलोपैथी पे की है, कम ही बातचीत हो पाई है होम्योपैथी पे। और हालांकि ये एक ऐसी पुरानी पद्धति है जिसका असर कहते हैं कि जड़ तक होता है, और साथ ही साथ इसको लेकर के ये भी जाना भी जाता है, माना भी जाता है कि इसका असर धीरे होता है, लेकिन चूंकि अलग पैथी है तो इसका कुछ ऐसी बीमारियों में बहुत सटीक इलाज है जो एलोपैथ नहीं उस तरह कर पाती है। तो आज वैसे बहुत सारी बातों को जानेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि पहले अपना एक संक्षिप्त सा परिचय हमारे श्रोताओं को दे दिए क्योंकि वो पहली बार आपको सुन रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर विकास त्रिपाठी, संजीवनी होम्यो क्लिनिक, और मैं स्पेशली क्रॉनिक केसेस पे काम करता हूँ
0: जी,
1: जो असाध्य टाइप के होते हैं
0: जी,
1: असाध्य रोग जैसे किडनी में स्टोन हो गया जिनका ऑपरेशन ही चाह रहा है
0: जी,
1: तो मोस्ट प्रोबेबली सारे सही हो जाते हैं।
0: लोग कहते हैं कि जादू है इसमें तो कई सारे ऑपरेशन कराने नहीं पड़ते अगर हम होम्योपैथ से आते हैं तो, जो एलोपैथ में डॉक्टर कह देते हैं कि इसका ऑपरेशन ही मुमकिन है।
1: नहीं देखिए, अब वो तो केसेस टू केसेस वेरी करता है
0: जी,
1: लेकिन अब देखिए किसी भी पद्धति को हम बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक मामला ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन मैंडेटरी हो जाता है उस केसेस में, लेकिन अगर शुरुआती में देखें या फिर किसी एक पहलू तक पहुँचे तो होम्योपैथ इसका अच्छा ट्रीटमेंट कर सकती है।
0: होम्योपैथ इसका अच्छा ट्रीटमेंट कर सकती है, बिल्कुल। तो क्यों ना शुरुआत से थोड़ा समझने की कोशिश की जाए। तो अगर मैं अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूं तो पहला ही प्रश्न आता है जहन में कि आखिर ये होम्योपैथी जो है वो काम कैसे करती है।
1: देखिए होम्योपैथ आपके मरीज के साथ साथ मर्ज का भी इलाज करती है, मतलब ये जड़ तक जाती है
0: जी,
1: जड़ तक जाने के बाद में फिर उसके रोगी के वाइटल्स को बढ़ाती है, वाइटल्स को बढ़ाने के साथ साथ ये उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए ये अपना पूरा असर दिखाती है।
0: अच्छा, यानी जो लोग कहते हैं कि अक्सर होम्योपैथी जो है बीमारी का नहीं बल्कि मरीज के स्वभाव का इलाज होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि अगर हम दूसरी पैथी की बात करें, बिल्कुल आपने पहले ही बात स्पष्ट कर दी है कि सारी पैथी की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट हैं होम्योपैथी की, जिस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, इसको लेकर कहा भी जाता है कि ये मरीज के स्वभाव पे काम करती है, और उसको आपने पहले ही प्रश्न के उत्तर में बता दिया है। डॉक्टर साहब किस तरह से ये एलोपैथ से अलग है, क्योंकि अगर हम देखें कल्चर या लाइफस्टाइल या किसी को कोई भी बीमारी होता है, इवन फीवर जो बहुत आम बात है, बुखार होना, जुकाम होना बहुत आम सी बात है, मुझे जहां तक याद है बचपन में इतना ज्यादा दवाओं को नहीं खिलाया जाता था, इवन मुझे भी कुछ भी होता था तो काढ़ा सा एक पेय पदार्थ बनाया जाता था और बड़ा ही खराब होता था, पीने का बिल्कुल मन नहीं करता था, उसको जबरदस्ती मार और पीट के पिला दिया जाता था, लेकिन यह है कि 2 से 3 बार पीने के बाद उसका असर होता था। तो मतलब कहने का ये है कि कुछ घरेलू इलाज भी होते थे। होम्योपैथ में हम देखते हैं कि लोग जब कोई लॉन्ग टर्म में इलाज चलना होता है लंबे समय तक तो होम्योपैथ की तरफ आते हैं, कोई इमरजेंसी केस होता है, कोई ऐसी बात होती है तो ज्यादातर एलोपैथ की तरफ जाते हैं। कितना फर्क है अगर हम आयुर्वेद से कंपेयर करें या एलोपैथी से कंपेयर करें?
1: देखिए होम्योपैथ जो है टोटल नेचुरल बेस्ड मेडिसिन है, इसमें मतलब सारी पेड़ों से और उनकी जड़ों से बाकी चीज़ों से ली जाती हैं, उनके अर्क निकाल के बनाई जाती है होम्योपैथ की मेडिसिन
0: जी।
1: जहाँ तक हम लोग एलोपैथ की बात करेंगे तो उसमें मैं पैथी को नहीं बुरा कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सारे केमिकल्स का यूज़ होता है जिसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं हम लोगों को आज की डेट में, ये चीज़ हमारे होम्योपैथ में नहीं है।
0: साइड इफेक्ट्स
1: नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग नो साइड इफेक्ट्स होम्योपैथ में। दवा के साथ साथ जिस चीज़ का इलाज करेंगे तो वही चीज़ सही होगी, दूसरी बीमारियां उसमें उत्पन्न नहीं होने वाली हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि होम्योपैथी जो होती है वो उसी मर्ज के लिए काम करती है जिसकी दवा दी जाती है, इस वजह से साइड इफेक्ट्स ना के बराबर रहता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि होम्योपैथ में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं, सो क्या इसका मतलब ये कि कोई खुद भी जा करके मेडिकल स्टोर से जाके दवा लेकर इस्तेमाल कर सकते?
1: जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर पेशेंट का, हर पर्सन टू पर्सन का उसका अपना खुद का एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है,
0: जी
1: उसके रोग के अपने प्रकार होते हैं। तो सुनी सुनाई दवाओं को या काउंटर बजा करके दवाओं को ले लेना उचित नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होम्योपैथ में क्या होता है कि दवाओं की प्रूविंग होने लगती है बॉडी पे ही।
0: अच्छा, इसमें क्या होता है,
1: मतलब कुछ सिम्टम्स, जैसे मान लीजिए
0: मतलब बॉडी के लिए वो ठीक नहीं होता
1: जी,
0: अगर
1: बॉडी के लिए
0: अपने
1: ठीक
0: मन
1: नहीं
0: से
1: होता
0: हमने कर लिया
1: जी,
0: है?
1: क्योंकि इसमें
0: बिल्कुल
1: 30 पोटेंसी से लेकर के और 1 लाख पोटेंसी या उसके ऊपर भी पोटेंसी भी दी जाती है।
0: जी
1: तो जैसे एलोपैथ में एमजी की आवश्यकता होती है,
0: जी जी जी
1: कितने एमजी की गोली लेनी है, वैसे इसमें पोटेंसी की आवश्यकता होती है। तो हर पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि मुझे इसको कितनी पोटेंसी देनी है, वो एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा आपसे बात करके, आपके सिम्टम्स को देख करके। चूंकि होम्योपैथ जो है टोटल सिम्टोमेटिक मेडिसिन है, ये सिम्टम्स पे काम करती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने भी पर्सनल अनुभव किया है, मैं भी दोनों तरह के डॉक्टर्स से मिला हूँ, जाता आता रहता हूँ। और मैं अगर अपनी बीमारी की बात करूँ तो एलोपैथ वाले डॉक्टर ने ज़्यादा तो नहीं पूछा है, बस टेस्ट लिख दिए और लाके दिखा दिया। बट होम्योपैथ के जो डॉक्टर से मैं जब भी मिला हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे से और देर तक बात की है, ये जानने की कोशिश की है कि मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। इवन मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी लगा कि जब डॉक्टर ने पूछा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने बनाया होगा एक सिस्टम, उनको समझ में आया होगा कि क्या है। ये क्या सही बात है कि होम्योपैथ के डॉक्टर पूरी क्वेरी करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं?
1: देखिए, हर आदमी की अपनी दिनचर्या होती है, और उस दिनचर्या के हिसाब से या उसके खान पान के हिसाब से कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, या फिर उसका डेली रूटीन क्या है, तो इन सब चीज़ों पे बात करके फिर एक मेडिसिन डिसाइड की जाती है उसके पर्टिकुलर के लिए।
0: जी
1: अब उसको कोई भी मर्ज है तो मर्ज का कारण क्या है, क्यों आया, टेस्ट तो ज़रूरी है ही है, लेकिन साथ में पेशेंट की टोटल वाइटलिटी को देख करके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी मेडिसिन देना ज़्यादा उचित रहेगा जिससे इसको तुरंत आराम हो। इसीलिए हम लोग या होम्योपैथ जो भी होगा वो लंबे देर तक बात करते हुए, उसकी पूरी सिचुएशन को समझते हुए थोड़ा लंबा समय लेता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ मेरा भी अनुभव है। मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, ऐसा होता है उनके साथ भी। अक्सर ऐसा सुना जाता है डॉक्टर साहब कि होम्योपैथ दवा लेते वक्त चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज खाने से परहेज करना पड़ता है, वरना दवा असर नहीं करती है। इस बात में दम कितना है?
1: देखिए, अब ये तो मर्ज टू मर्ज वेरी करता है, जहाँ
0: जी
1: आवश्यकता होती है वहाँ पे इसके परहेज बताए जाते हैं, लेकिन अब हर जगह पे तो नहीं होता है इसका, क्योंकि कुछ दवाएं हैं जो लहसुन प्याज से ही बनती हैं, तो हम लोग लहसुन प्याज को कैसे मना कर
0: मना
1: सकते हैं।
0: कैसे? बिल्कुल, मतलब आपने कहा कि अगर ऐसा कुछ है कि भाई उसके लिए नुकसानदायक होगा तभी आप रोकेंगे, अदरवाइज आप नहीं रोकेंगे। यानी ये कह सकते हैं मिथ है, अगर इसको कोई कह रहा 100% नहीं खाना होता
1: नहीं
0: है
1: तो
0: तो ये
1: 100%
0: मिथ है,
1: नहीं सही है, ये गलत है।
0: ये गलत है। बिल्कुल, इसीलिए मैं ऐसे सवाल भी लगातार पूछता जा रहा हूँ ताकि हमारा अगर कोई मिथ है या कोई भ्रम है तो भी आज आपसे बातचीत के दौरान खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल बहुत बदली है, जमाना बदल गया है, जेन जी और जेन अल्फा आ गए हैं, दौर बहुत हद तक चेंज हो गया है, लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर आजकल हम देखें तो स्ट्रेस, माइग्रेन, एसिडिटी, नींद ना आना, ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत आम है। इसमें अगर हम बात करें होम्योपैथी की तो कैसे मदद करती है इन चीज़ों में?
1: होम्योपैथी पूरे सिम्टम्स को लेगी, आपको समस्या क्या है, मेनली ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है,
0: जी
1: तो हम लोग दवाओं के थ्रू उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ मरीज को थोड़ा हिदायत दी जाएगी कि आप थोड़ा उस पर काम करिए, उस हिसाब से मेडिसिन देते हुए और उसके सारे वाइटलिटी को देखते हुए, उसकी पूरी दिनचर्या को देखते हुए हम लोग थोड़ा उसमें बदलाव करेंगे और कुछ मेडिसिन देंगे जिससे वो थोड़ा आगे रिलीफ फील करेगा।
0: मतलब ये मान सकते हैं ना कि लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल से होने वाली, उसमें होम्योपैथी काम अच्छा करती है?
1: बिल्कुल अच्छा काम करती है।
0: ओके, चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि भाई होम्योपैथी इसमें भी बहुत अच्छा काम कर रही है। छोटे बच्चों की डॉक्टर साहब बात करें तो इम्यूनिटी बढ़ाने और बार बार होने वाली जो सर्दी जुकाम है, इसके लिए होम्योपैथी कितनी ज़्यादा सेफ और कितनी असरदार है?
1: देखिए, होम्योपैथी इसके लिए 100% सेफ भी है और असरदार भी है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो उनकी वाइटलिटी या उनका जो शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जो होती है
0: जी
1: वो कुछ अलग ही होती है बड़ों की अपेक्षा, लेकिन होम्योपैथ इसमें भी अच्छा काम करती है।
0: मतलब अगर एक छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाना हो, जैसे जिससे उसको सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है, उसमें आपने कहा कि बहुत बेहतरीन काम
1: जी,
0: करती
1: अच्छा
0: है
1: काम करती है
0: होम्योपैथ,
1: जी।
0: बहुत अच्छा है। महिलाओं का एक अलग मामला होता है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होता है
1: जी,
0: और पीसोस या फिर थायराइड की समस्या अक्सर देखी जाती है। सो इसमें होम्योपैथी कितनी ज्यादा कारगर साबित होती है अगर हम फीमेल्स की प्रॉब्लम को देखें?
1: देखिए, फीमेल्स की प्रॉब्लम में भी होम्योपैथी 100% इफेक्टिव है, पूरा 100% काम करती है। अगर मामला कोई ऑपरेटिव में नहीं पहुंच गया है तो होम्योपैथ 100% काम करती है, इस पे अच्छा काम करती है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भाई महिलाओं से जुड़े कई सारे ऐसे समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं, और दवाएं कई बार क्या होती है कि अगर जैसे हम अंग्रेजी दवाओं की बात करें तो साइड इफेक्ट का बड़ा खतरा रहता है, तो अगर प्रॉपर डायग्नोस नहीं हुआ तो उससे और भी ज्यादा जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसमें भी क्या आप लाइफस्टाइल ज्यादातर पूछते हैं या इसमें भी कुछ जांच लिखते हैं महिलाओं को ताकि वो करा पाएं और आप उसको और अच्छे से समझ पाएं?
1: देखिए, किसी भी मर्ज को समझने के लिए डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: हम आपकी लाइफस्टाइल के साथ साथ डायग्नोसिस को भी जरूर प्रेफर करेंगे, और डायग्नोसिस के हिसाब से जो भी जांच पड़ताल में जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से फिर पूरी मेडिकेशन होगी।
0: एक चीज जो मुझे लगता है बचपन की मुझे याद है कि अगर कोई होम्योपैथिक की दवाएं खाता था तो बड़ा मन चाहता था, वजह मीठी मीठी गोलियां। और इस वक्त सुन रहे हमारे श्रोताओं के जहन में भी वही मीठी मीठी गोलियां, जाहिर सी बात है जो जैसे कोई कहता है होम्योपैथी वो छोटी छोटी शीशियां और छोटी छोटी मीठी मीठी से गोलियां याद आ जाती है। इवन डॉक्टर साहब ऐसा होता था कि हम लोग बिला वजह चुपके से चोरी करके खा लेते थे, टॉफी समझ के खाते थे। तो अगर इसकी कॉन्सेप्ट की हम बात करें आपसे तो ये जो इसकी गोलियां होती मीठी गोलियां उसको लेने का सही तरीका क्या होता है? क्या इन्हें हाथ से छूना होता है या पानी के साथ लेना होता है, ये जरूर बताइए।
1: गोलियां जो हैं तो गोलियां एक मीडियम का काम करती हैं, यानी दवा को चलाने का काम करती हैं
0: जी।
1: तो इनको हाथ में ना लेकर के जो भी शीशी का जो ढक्कन होता है उसमें डाल करके एक गोली या दो गोली, जैसा भी आपके डॉक्टर ने बताया, जैसा भी आपके फिजिशियन ने बताया, उस हिसाब से आप ले सकते हैं।
0: अच्छा, इसमें कई तरह की दवाएं होती है, कुछ होती है टॉनिक्स जिनको डाइट भी लेना होता है, कुछ पानी के साथ होता है, कुछ आप लोग कहते हैं दूध के साथ लिया जाए, कुछ कहते हैं गुनगुने पानी के साथ लिया जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये दवाओं के लेने के तरीके काफी अलग अलग है।
1: देखिए, हर दवा का चलने का अपना मीडियम है, जैसे एक गाड़ी होती है तो उसमें टायर जरूरी होता है, उसमें हवा भी जरूरी होती है, इसी हिसाब से होम्योपैथ दवा चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए दूध पानी गोली इन सब चीजों के साथ लेने के लिए कहा जाता है।
0: बिल्कुल, यानी अलग अलग दवाओं के लिए अलग अलग तरीके होते हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होती है। आजकल की अगर हम बात करें तो मरीज को पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की होती है, और अक्सर वो एलोपैथी की दवा ले रहा होता है, उसकी दवाएं रेगुलर चल रही होती, तो क्या इसके साथ में अगर मान लीजिए कोई ऐसा मर्ज है जिसके वो होम्योपैथी का इस्तेमाल करना चाहे तो क्या उसके साथ शुरू कर सकता है?
1: बिल्कुल शुरू कर सकता है, बस ये है कि दवाओं में थोड़ा गैप दे करके 5-10 मिनट का हम अपनी दवाएं अल्टरनेट भी खिला सकते हैं,
0: यानी ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा?
1: कोई नुकसान नहीं है।
0: अच्छा, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने इस बात को समझ लिया है कि आप जो है अगर मान लिया आपकी एलोपैथी की दवाएं चल रही है, अंग्रेजी दवाएं, तो कहीं ना कहीं साथ में आप होम्योपैथी की भी दवाएं चला सकते हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 से 15 मिनट का थोड़ा सा गैप देना जरूरी होता है, और ये हमारे बड़े लोगों ने बताया भी है कि भाई हाँ इस तरह से हमको गैप रखना भी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इमरजेंसी सिचुएशन पे थोड़ा सा हम और बात करना चाहेंगे क्योंकि अक्सर यही सवाल उठता है कि ये बड़ी ही स्लो काम करती है, इमरजेंसी में काम इसका कैसे होता
1: है? देखिए, होम्योपैथ अगर कोई एक्सीडेंटल है यानी इमरजेंसी केस है तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भेजना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप तुरंत होम्योपैथ लेकर के आएँ, होम्योपैथ के पास लेकर के जाएँ, क्योंकि उसको उस समय तुरंत राहत की आवश्यकता होती है, तो हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा जरूरी होता है उसके लिए।
0: तो आपने कहा कि कई चीज़ों में काम करता है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तो हम लोग देखते हैं जो एलोपैथ पे चलते हैं, क्या कोई होम्योपैथ का भी हॉस्पिटल होता है?
1: अब भारत सरकार ने एम्स में भी होम्योपैथ को जगह दे दी है, आप इसको जानते ही होंगे
0: जी।
1: तो अब होम्योपैथ के भी बहुत सारे अस्पताल बन रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसके लिए अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अब एम्स में भी होम्योपैथ बैठ रहे हैं, तो एम्स में भी अब होम्योपैथ का इलाज चल रहा है।
0: अब मीठी गोलियों की बात हुई थी, एक सवाल ये भी है कि जो मीठी गोलियां दी जाती हैं और उन पर जो लिक्विड डाला जाता है, कई लोगों को लगता है कि वो सिर्फ अल्कोहल है या पानी है और सब बीमारियों में एक ही चीज डाली जाती है, क्योंकि बचपन से हमको भी लगता था सब दिखने में तो सेम ही सेम है, तो ये अलग अलग बॉटल्स क्यों उठाते हैं, ये जो डालते हैं लिक्विड ये है क्या, जरा उसके बारे में बताइए।
1: देखिए, बॉटल का रंग एक ही है,
0: एक है, और
1: बाकी दवाएं उसमें सारी अलग अलग है और हर दवा की पोटेंसी अलग है
0: जी,
1: कुछ क्यू फॉर्म में है और कुछ पोटेंसी में है
0: जी। तो मतलब ये जो कहा जाता है कि उसमें अल्कोहल है, क्या ये सही होता है?
1: देखिए, पोटेंटाइजेशन में अल्कोहल होता है उसमें, मतलब डायरेक्ट अल्कोहल नहीं होता है उसमें, अल्कोहल के सारे हानिकारक तत्वों को निकाल करके दवा को उसमें प्रिजर्व किया जाता है।
0: सो मेरे ख्याल से ये जो एक भ्रांति थी, जो एक प्रश्न होगा हमारे श्रोताओं के मन में, वो भी दूर हुआ होगा। इसके अलावा ऐसी कई सारी भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं, जो कि होम्योपैथ को लेकर हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले। लेकिन उससे पहले अब एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है। आप सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ डॉक्टर विकास त्रिपाठी मौजूद हैं संजीवनी होम्योपैथिक क्लिनिक से, और आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी पर।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: तो एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने शो गोधुली में और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। आज हमारे साथ में डॉक्टर विकास त्रिपाठी मौजूद हैं संजीवनी होम्योपैथिक क्लिनिक से। सो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। चूंकि जाने से पहले हमने कहा था ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो हमारे जहन में होम्योपैथ को लेकर होते हैं और कई बार वो भ्रम होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज जरूर देखा जाता है, कई बार लोग शिकायत भी करते हैं कि होम्योपैथी की दवा जब शुरू किया उन्होंने तो उनकी बीमारी पहले से ज्यादा बढ़ गई। तो क्या दवा लेने के बाद बीमारी का अचानक से बढ़ना सही लक्षण है या गलत दवा का असर होता है, क्या होता है ये?
5: देखिए, मर्ज का बढ़ जाना ये होता है कि जैसे होम्योपैथ मर्ज के जड़ पे काम करती है, किसी भी मर्ज के जड़ पे काम करती है, तो जितने भी अंदर दबे हुए मर्ज हैं या उसके सारे इन्फेक्शन हैं उनको निकाल देती है। निकालने के बाद में फिर उनका ट्रीटमेंट वो कर देती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले बढ़ गया फिर खत्म हुआ, तो बढ़ता नहीं है, बस एक ट्रीटमेंट का एक पहलू है, एक तरीका है।
0: अच्छा, ये ट्रीटमेंट का ये तरीका आपने कहा एक वे है, क्योंकि पहले वो चीजों को उभारती है जैसा कि आपने कहा, जड़ पे काम करती है
5: जी।
0: और अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि मान लीजिए कोई चीज खा रहे थे उससे कहेंगे यार ये तो और बढ़ा रही है
5: जी।
0: तो मतलब ये है कि गलत दवा का नहीं है सर है, बल्कि काम करने का इसका तरीका ही वैसा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक यू सो मच। आजकल बाजार में डॉक्टर साहब बनी बनाई पेटेंट सिरप और कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स मिलती है जो दावा भी करती है कि डेंगू, पथरी या मोटापा तुरंत ठीक करें, तो क्या बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी दवाइयां लेना कितना ज्यादा सेफ है?
5: देखिए, मैं यही कहूंगा कि हमेशा जब भी आप इलाज करवाने जाएं तो किसी कुशल चिकित्सक से मिल करके और उनकी सलाह लेकर के ही कोई भी दवा का सेवन करें। बाकी जहां तक बात है काउंटर बजा करके दवा लेना तो फिर किसी के लिए भी सेफ नहीं होता है, क्योंकि अब अगर हम होम्योपैथ की बात करते हैं तो उसमें हम सारे ऑर्गन सारे वाइटल्स को देखते हैं और उसके उसकी शारीरिक संरचना कैसी है, खान पान कैसा है, सब कुछ देखते हुए फिर हम उसको दवा देते हैं।
0: मतलब डायरेक्ट लेना यहाँ पे भी आप वही रिकमेंड करेंगे कि ठीक नहीं होगा?
5: नहीं ठीक होगा
0: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है और आपने भी जिक्र किया, मैंने कई लोगों से भी सुना है कि गुर्दे की पथरी यानी जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं या गॉल ब्लैडर स्टोन के मामले में अक्सर लोग ऑपरेशन से बचने के लिए होम्योपैथी आते हैं। सो होम्योपैथी बिना सर्जरी के पथरी निकालने में कितनी हद तक और किस साइज तक निकाल सकने में कारगर होती है, इसके बारे में जरा बताएं।
5: देखिए 7 से 8 mm की पथरी जो आराम से निकल जाती है होम्योपैथ में
0: बिना ऑपरेशन के।
5: जी ये थोड़ा दवा लंबी चलती है
0: जी,
5: लेकिन वो निकल जाती है आराम से।
0: अच्छा, अगर मान लीजिए इससे ज्यादा बड़ी है 18-20 के आसपास,
5: देखिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है
0: जी
5: पथरी के साथ में तो मैं अवश्य यही कहूंगा कि एक बार जो है जा करके किसी अच्छे सर्जन को दिखाना चाहिए
0: जी
5: और उसकी भी राय लेनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कई प्रकार के होते हैं, वो तो केस क्लिनिक पे आता है उसके बाद समझ में आता है, फिर उस हिसाब से उसको एक राय दी जाती है।
0: अच्छा, यानी सेकंड ओपिनियन के लिए जाना अच्छा रहेगा सर्जन के पास भी?
5: नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा जाना अच्छा ही रहेगा। देखिए वो तो आपके चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है और आपकी बीमारी के ऊपर निर्भर करता है
0: जी,
5: बीमारी कितनी बढ़ी हुई है आपकी। अब अगर लाइफ और थ्रेट का मैटर है तो फिर आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि रिस्क लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर लाइफ ही रिस्क में हो तो फिर उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। त्वचा की बात के डॉक्टर साहब, तो त्वचा से जुड़ी बीमारियां जैसे सोराइसिस होता है, एक्जिमा है, सफ़ेद दाग है, ये लोग जो है सालों साल तक इसका इलाज करते हैं। होम्योपैथी की अगर हम बात करें स्पेशली, सो स्किन प्रॉब्लम को अंदर से कैसे जड़ से ठीक करती?
5: देखिए होम्योपैथ स्किन की प्रॉब्लम को 100% तक सही करती है। वो समस्या कोई भी हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो और सफ़ेद दाग हो या फिर और भी कोई भी दाद हो, कोई भी चीज़ हो
0: जी,
5: तो उसमें 100% इफेक्टिव है होम्योपैथ अपनी।
0: और जड़ से इलाज करती
5: जी? बिल्कुल जड़ से इलाज करती है।
0: क्या इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबा चलता है?
5: अब वो तो देखना पड़ेगा कि मर्ज कितना बढ़ा हुआ है।
0: बढ़ा हुआ कितना?
5: जी
0: अच्छा, तो मतलब ये
5: अगर मैटर सेपरेटिव नहीं है
0: जी,
5: दबा हुआ नहीं है, तो फिर ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। अगर दबा हुआ है, जैसे आपने पहले पूछा अंदर से निकालता है,
0: बिल्कुल,
5: तो अगर दबा हुआ होगा तो फिर होम्योपैथ है वो अंदर से निकालेगा और जितना वो निकालेगा फिर उतना ही वो सही भी करेगा।
0: सही भी करेगा बिल्कुल, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना दबा होगा उतना ही निकालेगा। स्पेशली अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में बात करें तो उनके लिए मॉर्निंग सिकनेस है या उल्टी की प्रॉब्लम है, तो क्या इसमें दवाइयाँ लेना सेफ है और क्या इससे होने वाले बच्चे पर कोई असर भी पड़ता है इस पे, अगर कोई दवाइयाँ लेती हैं मॉर्निंग सिकनेस को लेकर के या उल्टियों को लेकर के?
5: अब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है
0: जी,
5: जैसे प्रेगनेंसी में कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं हमने देखा है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो फिर होम्योपैथी 100% सेफ है। लेकिन अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस है किसी भी प्रकार की तो उसको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से एक बार संपर्क जरूर करना चाहिए।
0: जी अगर आपने कहा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तब तो ले सकती हैं, लेकिन अगर कोई है तो गायनोकोलॉजिस्ट से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा बुजुर्गों में अक्सर देखा जाया गया है आर्थराइटिस की बड़ी प्रॉब्लम होती है और ये बहुत लंबे वक्त तक या यूं कहें कि शायद हमेशा हो जाने वाली दिक्कत होती है। सो इसकी वजह से होने वाली जकड़न में होम्योपैथी से लंबे वक्त तक कितना आराम मिल सकता है अगर हम बात करें तो?
5: देखिए पहला तो डिपेंड कर रहा है मामला कितना पुराना है यानी मर्ज कितना पुराना है, दूसरा ये है इसमें होम्योपैथ 100% इफेक्टिव है, अच्छा काम करती है होम्योपैथ और केसेस अच्छे सही भी हुए हैं इसमें।
0: तो आपने कहा इसमें भी काफ़ी अच्छा काम करती है और काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम परहेज की बात पर आएँ तो होम्योपैथी दवाइयों को लेकर घर पर स्टोर करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इतने वक्त तक चलना होता है इनको, तो आखिर किस जगह रखा जाए इन्हें, क्या धूप में या मोबाइल फोन या टीवी या तेज जहां स्मेल वाली चीज हैं जैसे कपूर परफ्यूम, इनके पास रखने से क्या इस पर कोई असर पड़ता है?
5: देखिए अगर होम्योपैथ की दवा स्टोर करना है तो उसको कांच की बोतल में स्टोर करना चाहिए और उसको थोड़ा सनलाइट वगैरह से दूर रखें या फिर किसी कोल्ड स्टोरेज में रखें, मतलब फ्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
0: नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है इसमें कोई, बस हाँ ये आपने कहा कि धूप से कोशिश करे बचे
5: जी,
0: और कोई मतलब अगर आपने कहा शीशी है
5: कांच की,
0: कांच की तो

0: हुए कि वो आए थे तो उनके मन में कुछ अलग डर था, कुछ अलग बातें थीं। उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब वो ठीक हो गए, तो उनका नज़रिया होम्योपैथ को लेकर के बदला या उसके तरीके को लेकर के बदला, अगर ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है तो।
1: मैं एक केस कर रहा था लाइकन प्लेनस का, टंग में,
0: अच्छा
1: मतलब जीभ में उसके, मतलब यहाँ तक कि जो भी हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसका ऑपरेशन ही एक मामला बताया था कि मतलब
0: जी
1: ऑपरेशन के अलावा सही नहीं हो सकता है। तो किसी के थ्रू वो मेरे पास आई, महिला हैं, वो मेरे पास आने के बाद में उनको थोड़ा मन में बहुत भ्रम था कि सही होगा नहीं सही होगा, होम्योपैथ है, बहुत लेट में काम करती है। मैंने उनको समझाया कि काम करती है होम्योपैथ, अच्छा। एक हफ्ते में उनको थोड़ा रिलीफ मिला क्योंकि उनकी जीभ वगैरह पूरी ड्राई हो चुकी थी
0: अच्छा
1: और खाना वगैरह वो खाती थी तो कोई स्वाद नहीं था उनके मुंह में। मतलब वो कह रही थी कि मैं केवल एक पेट भर रही हूँ अपना, पेट में भूख लगी है तो फिर मैंने खाना खा लिया, बाकी मैंने क्या खाया, स्वाद क्या था वो मुझे पता नहीं चल रहा
0: पता ही
1: था।
0: नहीं चल रहा है।
1: तो वो ट्रीटमेंट मैंने किया, जो कि एक हफ्ते बाद से उनको थोड़ा टेस्ट और जो जुबान पे एक हल्की नमी टाइप की होती है जो कि
0: जी
1: उनकी सूखी थी, वो वापस आने लगी धीरे धीरे। उसके बाद से उनको होम्योपैथ पे विश्वास हुआ और कुछ लंबे समय तक इलाज चलने के बाद में उनका मर्ज एकदम सही हो गया और आज वो अच्छे से खा पी रही हैं।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसी को अगर ऑपरेशन कहा जाए और कहा जाए यही एक इलाज है, लेकिन वो होम्योपैथ या किसी भी ऐसी पैथी के पास जाए जहाँ पे उसका बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के इलाज संभव हो जाए। और ऐसे कई केसेस हमने भी सुने हैं कि जैसे बाकी डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी ही एक ऑप्शन है, बट उन्होंने कराया तो उसके बाद वो अभी फाइनली ठीक हो गए। हम ये नहीं कह रहे सबके साथ ऐसा होता है,
1: जी बिल्कुल होता
0: कुछ
1: है
0: ही केसेस में होता है, लेकिन
1: जी
0: मतलब उम्मीद होती है होम्योपैथी के पास में कि शायद वो बिना ऑपरेशन के भी चीज़ों को बेहतर कर सकती
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, अब चूंकि चलने का वक्त हो गया है, तो उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप अपनी तरफ से हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें उनकी लाइफस्टाइल को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के।
1: बस मैं गोंडा की जनता से यही आग्रह करना चाहूंगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कहीं भी बिना किसी कुशल चिकित्सक के कोई भी दवा ना लें मेडिकल काउंटर पे जाकर के, क्योंकि हर दवाओं के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं भले वो किसी भी पैथी की हो वो। और अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
0: क्या बात है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ज़रूर मानेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे खुद पूछूं कि भाई, और हमारे श्रोताओं की तरफ से पूछूं कि डॉक्टर विकास त्रिपाठी खुद को फिट रखने के लिए आखिर कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप?
1: बस कुछ नहीं सर, वही एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करता हूँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम वगैरह, और फिर अपने वही दिनचर्या, फिर क्लिनिक आ जाना दिन
0: खाने
1: भर।
0: पीने का थोड़ा ध्यान देते होंगे,
1: हाँ तो भाई
0: बाहर की चीज़ों से बचते
1: बाहर की चीज़ों से तो हमेशा परहेज करना ही
0: होंगे।
1: चाहिए, क्योंकि
0: जी
1: बहुत मिलावटी हो रहा है आजकल और
0: बिल्कुल
1: इससे काफ़ी लोग प्रताड़ित भी हैं
0: जी
1: और आते हैं हमारे पास पेट की समस्याओं को लेकर के, जिसमें अधिकतर उनके लीवर की समस्या को देखा जाता है
0: लीवर की बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और पेट में जलन, हाइपर एसिडिटी, इन सारी समस्याएं हो जाती हैं, गले में जलन, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बाहर की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें और घर के शुद्ध खाने को खाएं,
0: बिल्कुल
1: अच्छी नींद लें और थोड़ा व्यायाम करें।
0: बिल्कुल। तो इस तरह से लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए भाई, फिलहाल अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आज का ये टॉक शो कैसा लगा? होम्योपैथी के बारे में आपको इतनी सारी जानकारियां हुई, कैसा लगा आपको? आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो डॉक्टर साहब तक ही पहुंचनी चाहिए, तो हम उनसे पर्सनली भी आपकी क्वेरी आप तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल अपना जरूर ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, क्योंकि यही तो है गोंडा शहर की धड़कन।

हायो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: क्या आप या आपका कोई अपना जले के निशान, सफेद दाग, जन्मजात समस्याओं या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए बड़े शहर जाने की सोच रहे हैं? तो अब गोंडा में ही उपलब्ध है इंटरनेशनल लेवल की सर्जरी सुविधा। देवी पाटन मंडल का पहला प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर समर्पित SKKM मेमोरियल लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहां 5000 से ज्यादा सफल सर्जरी का अनुभव रखने वाले MCH स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार मौर्य द्वारा प्लास्टिक सर्जरी, जले हुए मरीजों का इलाज, सफेद दाग और दूरबीन विधि से पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, पाइल्स और भगंदर का सफल इलाज होता है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज और 24 घंटे इमरजेंसी व ICU सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही कॉल करें 0552-460-562 या व्हाट्सएप करें 9592-904-908 पर। लाइफ केयर हॉस्पिटल का पता है झंझरी ब्लॉक के पास, बेलसर रोड, गोंडा।
2: कलाकार का सफर तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए

मेरे सारे प्रिय श्रोताओं को नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, आप सभी का स्वागत है एंड जय माता दी। स्पेशली नवरात्रि पे आप सभी को शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घर में सुख समृद्धि वैभव बन के बरसे और ये पूरे 9 दिन जो है आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके परिवार में एक विशेष ऊर्जा का संचालन हो। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि माँ दुर्गा की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी होगी। दोस्तों, नवरात्रि केवल 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव नहीं, बल्कि यह 9 रूपों में नारी शक्ति, श्रद्धा, साधना और आत्मविश्वास को पहचानने का पर्व है। माँ के दरबार में कोई खाली नहीं होता, कोई खुशियां मांगता है, कोई अपने परिवार की सलामती, कोई अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, तो कोई बस माँ से कहता है, माँ मेरी परेशानियां चाहे कितनी भी हो, बस अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखना। सच कहूं दोस्तों कि कभी कभी लगता है जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर कोई एक है ऊपर जो अपनी डोर को कस के हाथ में पकड़े हुए है और हमें गिरने नहीं देता। और सच में अगर ये बड़ी ताकत पे आपको भरोसा है तो आपको ये बात कई बार महसूस हुई होगी। समस्या में लड़ने का हौसला देना ये ईश्वर ही करता है। ऐसे ही हौसले, तपस्या और दृढ़ संकल्प की देवी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है आज। जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बड़ा ही निराला है। जैसा नाम है ब्रह्म, इसका अर्थ है तत्व या आध्यात्मिक सत्य या चारणी, यानी कि सत्य आध्यात्मिक रास्ते पर, पग पर हमें चलाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, संयम, त्याग, धैर्य और साधना का प्रतीक है। एंड अगर आज की जनरेशन की बात करें, हम सभी में संयम बिल्कुल भी नहीं है, त्याग ना के बराबर, धैर्य तो होता ही नहीं, 1 मिनट के लिए अगर मोबाइल बंद हो जाए तो जान निकल के हलक में आ जाती है। साधना हार्डवर्क कहाँ करना चाहते हैं, GPT है ना। तो हम सभी को माँ से इन सभी चीज़ों को अपने पास बनाए रखने की जो एक ऊर्जा मिलती है उसे बचाना चाहिए, सीखना चाहिए और माँ की इस शक्ति से खुद को भी संचालित करना चाहिए। माँ के एक हाथ में जपमाला है, दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित है। उनका शांत और तेजस्वी स्वरूप हमें सिखाता है कि असली शक्ति केवल बाहुबल में नहीं बल्कि मन के धैर्य और विचारों की दृढ़ता में भी होती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलता। हम निराश हो जाते हैं, अपने लक्ष्य पर संदेह करने लगते हैं और सोचते हैं शायद हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सच्चे संकल्प, धैर्य और निरंतर प्रयास से कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। पौराणिक कथाओं की मान्यता की अगर बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध माता पार्वती की कठोर तपस्या से है। कहा जाता है हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव के जो कहते ना साधना की थी और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उन्होंने अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपने संकल्प को नहीं छोड़ा था, जबकि वो पर्वतराज की पुत्री थी। चाहती तो पूरी दुनिया उनके समक्ष नतमस्तक होती, परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने संकल्प लिया था महादेव को पाने का। इस कथा का भी संदेश मात्र यही है कि धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में किसी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास करने के जो कहते हैं ना मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे आप अब विद्यार्थी हों, नौकरी करने वाले हों, परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हों, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हों, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आपको अपने मन के संकल्प को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जब राह कठिन हो तो घबराना कैसा, माँ का नाम लेकर कदम पीछे हटाना कैसा, धैर्य की ज्योति मन में जलाए रखिए, अपने विश्वास को कभी डगमगाने ना दीजिए। ब्रह्मचारिणी का आशीष जब साथ हो
तो संघर्ष के रास्ते पर भी हौसलों की बात हो। ऐसी देवी की परिकल्पना करना हमारे जीवन के जो कहते हैं ना कठिनाइयों को दूर करने जैसा है। वैसे आज नवरात्रि का दिन है तो मैं भी कुछ आध्यात्मिक शुरुआत करूंगी। आज मंडे है, मंडे मतलब कॉलिंग डे है, आप लोगों से फ़ोन पे बात करनी होगी। 6393311469 नंबर आपका इंतज़ार कर रहा है और निसंदेह हम सभी को एक दूसरे के साथ इस शाम को रंगीन बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है। हर जगह धीरे धीरे सुरों के साथ माँ के जय जयकार लग रहे हैं, जगह जगह माँ का आगमन हो चुका है। कहीं माँ आने वाली हैं तो कहीं माँ का आगमन हो चुका है। रास्ते मुझे कई जगह पंडाल सजते दिखे। सच बात तो ये है कि हमें बस आस्था तक सीमित नहीं रहना है, हमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। अभी एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरा हृदय थोड़ा सा मतलब परेशान कर दिया, मेरा क्या आप सभी का भी दिल थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एक मूर्ति में आग लग गई शॉर्ट सर्किट होने के कारण। हम दिखावे की भीड़ में ऐसे भाग रहे हैं मानो क्या करने वाले हों। मैं सच कह रही हूँ, दिखावे की भीड़ में हम भाग रहे हैं। बहुत बड़ी मूर्ति लाएंगे, बहुत बड़ी। माता मूर्ति में नहीं है, आस्था में है। अगर वो मूर्ति अत्यधिक बड़ी ना होती तो शायद ये शॉर्ट सर्किट ना होता। हम ब्लेम तुरंत कर देंगे माता को कि माँ नाराज़ हो गई, किसी ने लिखा कि माँ नाराज़ हो गई। मुझे ये बात बड़ी ख़राब सी लगी कि हमने तुरंत ब्लेम कर दिया। ये हमारी उत्सुकता थी, हमारा दिखावा था। माँ का छोटा सा स्वरूप भी तो उतनी शांति देता है। आस्था बड़ी होनी चाहिए, क्या कहते हैं आप? मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे चैट रूम में आपके रिस्पॉन्सेस चाहिए। चलिए, आज जैसा कि नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज मैं आप लोग के समक्ष हूँ। कल तो मैं आ नहीं पाई थी क्योंकि कल मेरा वीक ऑफ था और मेरा थोड़ा सा मतलब कहते ना कि नवरात्रि है तो थोड़ी तैयारी व्यारी करनी पड़ती है। और नवरात्रि इज़ अ अलार्म, एक अलार्म जैसा है जो हमें ये याद दिलाता है कि भाई उठ जाओ, दिवाली आने वाली है, थोड़ी साफ सफाई करनी है और नवरात्रि से सब कुछ शुरू हो जाता है। एनीवे, मैं आज आप लोग को कुछ सुनाने वाली हूँ और आज से लेके मतलब अगले 9 दिन तक आप लोग के बीच एक संक्षिप्त दुर्गा सप्तशती थोड़ी थोड़ी हम लोग 10-10 मिनट की सुनेंगे और संध्या को एकदम खूबसूरत बनाएंगे। और ख़ास बात यह है कि ये चमनलाल भारद्वाज की किताब से लाई हूँ, मैं ये किताब लाई हूँ। इससे मैं आप लोग के मन को थोड़ा सा, जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि बहुत भाग दौड़ है, जॉब है, पढ़ाई है, उन सब के बीच सोचते हैं कि यार मैं तो भगवान का नाम नहीं लेता हूँ। सुनना भी लेने के जैसा ही है। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आप बैठ के माला जपते रहो। एक क्षण की भी अगर आपके अंदर आस्था है तो आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, उसके बाद आप लोग भी आ जाइएगा फटाफट से। तो अच्छी चीज़ की शुरुआत कहते हैं श्री गणेश से करनी चाहिए। गणपति का आशीर्वाद हो, माँ सरस्वती का अपने ऊपर छत्र छाया हो तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है। और सच में माँ सरस्वती का नाम तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये आवाज़, ये कंठ, ये ऊर्जा, सब कुछ, ये शब्द, ये टेक्नोलॉजी माँ सरस्वती के देन है। आपने ये गाना सुना होगा, एक बड़ी सुंदर सी इसकी पंक्तियाँ हैं। कहते हैं कि

बस स्तुति से शुरू हो जाती है हर अध्याय की कहानी। आपने 13 अध्याय के बारे में सुना होगा जो दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, और उन सभी को पढ़ के हम लोग को लगता है कि माँ प्रसन्न होती हैं। कई बार समय के अभाव से और कभी त्रुटियों के डर से, क्योंकि संस्कृत पढ़ना इतना भी आसान नहीं है, उन त्रुटियों के डर से हम थोड़ा सा डरते हैं दुर्गा सप्तशती को पढ़ने से। शुभ संध्या सबलू जी, कैसे हैं? और आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो उस समय एक ऐसा चमत्कार हुआ, बहुत साल पहले की बात है, चमनलाल भारद्वाज ने एक ऐसी पुस्तक छापी जो एक कहते ना कि गेम चेंजर बन गई। हर इंसान पढ़ना चाहता था अध्यात्म का, पहले बहुत ज़्यादा, मतलब अभी भी ऐसा, अब तो और भी ज़्यादा, लेकिन अब अध्यात्म से ज़्यादा दिखावा है। मुझे नहीं लगता कि लोग श्रद्धा से कोई चीज़ करते हैं। बहुत जल्दी ईश्वर पे शक करने लगना, ईश्वर को ही ब्लेम करने लगना, आई थिंक सो कि वो हमारी आस्था नहीं है, वो सिर्फ शो ऑफ टाइप है। तो ये किताब आई थी, उसमें बड़ी सारी चीज़ें दी थी। तो आज मतलब मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को एक एक अध्याय हर दिन सुनाऊंगी। तो कहते हैं सुनना और श्रवण मात्र से भी आपको सारी मतलब चीज़ें मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब आती हैं। एंड सिस्टमेटिकली बात करूँ तो ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को करने या सुनने से, क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जिनको हम अगर रेगुलेट करें तो हमारी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और अभी चलते नोबल प्राइज़ मिला है 2 साइंटिस्ट को इसी चीज़ के लिए, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए मेडिकल साइंस में कि न्यूरॉन्स को कैसे एक्टिवेट करें। न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, जो न्यूरॉन्स डेड हो जाती हैं उनमें हम लोग वाइब्रेशंस देते हैं अलग अलग तरह से, लेकिन अभी एक लाइट के माध्यम से, रेज के माध्यम से, लाइट रेज के माध्यम से हम न्यूरॉन्स को फिर से एक्टिवेट कर पाएंगे। ब्रेन के उन न्यूरॉन्स को जो काम करना कुछ समय में बंद कर देती हैं किसी तरह के हाइपरटेंशन या किसी भी कारण से हो सकता है। और ये वाइब्रेशंस भी वही काम करती हैं, जैसे गाना गाना या ये गाना सुनना, म्यूज़िक सुनना, ये हमारे अंदर वाइब्रेशंस को डेवलप करता है। मतलब हाई, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में गाने भी हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन एक छोटे से वॉल्यूम में कुछ अच्छी चीज़ें जिसकी वाइब्रेशंस अच्छी हों, वो हमारे अंदर जो है रक्त प्रवाह को और हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको रिलैक्स करती हैं। गुड इवनिंग मिस्टर ऑप्टिकल से, कैसे हैं? आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं ये स्तुति। ये भी दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद है और कह सकते हैं शॉर्ट, हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ना, तो ये शॉर्ट में है जो कठिन भाषा को सरल करके लिखा गया है चमन के द्वारा। सुनिए।

चमन गवा, टीका मतलब ट्रांसलेट, ट्रांसलेट हर कोई नहीं कर पाता है। हिंदी में टीका करना मतलब ट्रांसलेट करना। माँ के चरणों में धरा, शीश जर जभी घबरा।

तो ये स्तुति करने के बाद अब हम सुनते एक प्यारा सा गाना और अब उसके बाद हम लेंगे आपके कॉल्स। अब बाकी के अध्याय जो होंगे, अभी अध्याय शुरू नहीं हुआ, कल से शुरू होंगे, तो कल हम लोग अध्याय पे चलेंगे और सुनते समझते हुए कि आखिर में ये 13 अध्याय की कथा है क्या, इसको शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग एक एक दिन में कवर कर लेंगे थोड़े थोड़े मिनटों के साथ। थोड़ा सा हमारा भी डिटॉक्स हो जाएगा पूरे दिन भर का। तो चलिए, कहाँ कहाँ से आप लोग सुन रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कौन है जो हमारे साथ नवरात्रि के साथ रास करने वाला है। भाई अगर शहर की बात करूँ तो जगह जगह डांडिया का जो कहते हैं ना कि फुल वाइब निकल के आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी वाइब्स हैं जो डांडिया खेलने के बाद ही बनती हैं। तो चलिए सुनते हैं वो गाना जिसको सुन के

आपके मन के अंदर के ढोल भी बजने लगते हैं और मन करता है कि बस इस बार तो कोई रास पार्टनर मिल ही जाए। तो जिसको नहीं मिल रहा वो मुझे बताएगा, मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगी आपकी डांडिया पार्टनर। अगर नहीं मिलती है तो भी बताइएगा, नहीं मिलता है तो भी बताइएगा, क्योंकि हमारे चैट रूम में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। क्यों दोस्त, गुड इवनिंग गोपाल, कैसे हैं आप? चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा एनर्जी वाला गाना, इस प्यारी सी शाम को और ज़्यादा मधुर करने वाला। अगर आपको भी कॉल करके कुछ सुनाना है, किसी के लिए सुनाना है, तो 6393 3164 29 नंबर आप ही का है, डायल करते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, सुनते रहिएगा अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, अपनी फेवरेट होस्ट आरजे बीना के साथ। मुस्कुराइए, आप आरजे बीना के साथ हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं

0: का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9861-976-9216-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल 72-34-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ippbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाएं एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करें। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: तो जी हाँ, इस प्यारी सी, स्पिरिचुअल सी, पॉजिटिव सी इवनिंग में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग अगेन। एंड सब लोग लिखते हैं ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्रिय आरजे एंड लिसनर, इस दिन की पूजा के लिए नारंगी या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। बिल्कुल सही कहा, और मैंने आज सफ़ेद वस्त्र पहने भी हैं। मैं दिन के अनुसार ही पहनती हूँ कपड़े। और लिखते हैं सबलू की पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। अपने पिछले जन्म के वे राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। पिता के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से आहत होकर उन्होंने योगिनी में प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। शिव प्राप्ति का संकल्प बचपन से ही उनके मन में था। भगवान शिव उनके मन में रहते थे। देवर्षि नारद के उपदेश के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या के संकल्प लिया और माँ ने ये संदेश दिया कि जब वो ईश्वर होके अपनी, जो कहते हैं ना कि अभिलाषा के लिए जब तप कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं। तो भाई, शाम का समय है और कॉल का भी टाइम हो चुका है। जिन लोगों ने अभी कॉल करने का सोचा है वो फटाफट से डायल कर सकते हैं अपना नंबर। शाम के 6:50 हो रहे हैं एंड यस, दिस इज द प्राइम टाइम टू योर कॉल्स। जस्ट डायल योर नंबर 6393-3164-29। अपना नंबर डायल करिए और बस हो जाइए शुरू। चल गुरु हो जा शुरू। तो आज के दिन की बात हुई और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सुनाई भी आज से जुड़ी। अब आप लोग की बारी है। वैसे आज एक खास दिन भी है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा खास दिन है आज भी ना, मतलब नवरात्रि की बात कर ली आपने, और क्या है? सोचिए सोचिए, कभी कुछ चीज़ें हमारे सोचने से हमें याद आती हैं। अब आप सोचेंगे सोचना तो अभी हम लोगों ने छोड़ रखा है, क्योंकि जब से जेमिनी आ गया है, जीपीटी आ गया है, तब से हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। यानी कि थिंकिंग वाला काम जो है ना, इस पर थोड़ा हम लोगों ने बैन लगा दिया है। आजकल थोड़ा हम लोग कम सोचते हैं, ज़्यादा नींदे, थोड़ी कम सांसें, बस आराम फरमाते हैं। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाएंगे तो याद आएगा कि आज क्या है। सोचा आपने कुछ? कल नवरात्र शुरू हुआ और कल एक स्पेशल दिन था, उसी से जुड़ी बात आज भी करूंगी। कल था गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि नवरात्र की शुरुआत भी माँ ने एक मैसेज देते हुए की है कि अभी भी स्थिति में सुधार नहीं है, अभी भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। और इसी विषय पे आधारित अगर मैं वेस्ट बंगाल की कहूँ, हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा एक त्यौहार के जैसे मनाते हैं, वहाँ पे दुर्गा पूजा मतलब वहीं का त्यौहार है, लेकिन वहाँ दुर्गा पूजा थीम के बेस पे बनाते हैं। वहाँ पे एक ऐसा आयोजन होता है जो कि नवमी के दिन होता है, वहाँ पे सारे प्रदेश की जो दुर्गा पूजा है कलकत्ता की बेसिकली, वो वहाँ लेके जाई जाती है, वहाँ पे सीएम उसको ऑब्जर्व करती हैं और बेस्ट जो दुर्गा पंडाल है उसका मतलब सबको पुरस्कार सर्टिफिकेट ये सब मिलता है। तो हर बार थीम बेस वहाँ पे लोग दुर्गा पूजा आयोजन करते हैं और हर दुर्गा पूजा का हर पंडाल का अपना अपना थीम है, कोई जयपुर की थीम है, कोई कहीं की थीम है। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों नहीं हम लोग को भी ये विचार लाना चाहिए, दुर्गा पूजा को सिर्फ दुर्गा, हाँ मैंने देखा है गोंडा शहर में भी कई जगह ऐसे पंडाल बने हैं जहाँ पे कुछ थीम्स हैं, पर मैं ऐसी थीमों की बात करूंगी जो हमारे अंदर जागरूकता लाए। ओ क्या बात है, अभी आप वापसी पे नहीं आए, कब आना है सबलू जी वापस आपको? मतलब सोचा है कि वहीं पे सारे त्योहार मनाएंगे, कोई बात नहीं, समय कोई भी हो, हमारी वाइब्स मैच कर रही है ना, ये काफी हमारे लिए है कि नहीं। अगर इस बात से आप लोग भी रिलेट करते हैं तो मुझे लगता है कि खास बात होगी। तो आज के दिन की भी बात कर लेते हैं। आज यानी कि 12 अक्टूबर है और आज का दिन खास व्यक्ति को डेडिकेटेड है, यानी कि उन लोगों को जिन्होंने इस पृथ्वी को जीवन दिया। जी हाँ, फार्मर्स डे के तौर पे ये दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ आज फ्री थॉट डे भी है, यानी कि मुफ्त में विचार अगर आपको कोई देता है तो उसे धन्यवाद जरूर कहें। वैसे मैं आपको मुफ्त में विचार देती हूँ लेकिन मेरे हर बार विचार आपके मन के नहीं हो सकते, पर हाँ जैसे काम है कि विचार देते रहो, शायद किसी विचार से किसी के जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए। और सबसे ज़रूरी नेशनल सेविंग्स डे, मतलब सेविंग का मतलब ये है कि छोटी बड़ी हर वो चीज़ जिसमें आप सेविंग कर सकते हैं। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप कंजूस हो, बहुत सारे लोग सेविंग को कंजूसी से भी तौलते हैं। सेविंग का मतलब ये है कि किसी भी विषम परिस्थिति में हम सेविंग सिर्फ पैसों की नहीं होती, सेविंग समय की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जिस दिन समय की सेविंग हम लोग करना शुरू कर देंगे, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। परफेक्ट होने का मतलब कि शुरुआत छोटे से करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कमरे में रहते हैं या अपने कमरे से सुबह उठते हैं, चाहे वो लड़की लड़का बड़ा बुढ़ा बुजुर्ग सबकी बात कर रही हूँ, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करके उठें, अप्रिय चीज़ों को सबसे पहले हटाएं, इसके बाद धीरे धीरे पूरे की पूरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दें, अपने जीवन को भी। ये तभी संभव है जब हम समय का सदुपयोग करेंगे। Am I right? Yes. तो सेविंग्स के साथ समय की सेविंग सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छे लोगों की सेविंग जरूरी है। कोई है आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आप उससे कभी बात नहीं करते, तो कभी उसको वक्त दें, क्योंकि लोगों की सेविंग भी इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी चीजों की परचेजिंग ना करें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रीयूज किया जा सकता है, उन्हें दोबारा यूज करें, रिफॉर्म करें, सेविंग्स करें, बचाएं। बचत कभी कंजूसी नहीं हो सकती, बचत हमारे भविष्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। Am I right? गुड इवनिंग प्रीति जी, शुभ संध्या, जय माता दी। नागेश्वर गुड इवनिंग, जुगल जी गुड इवनिंग, जय माता दी, कैसे हैं आप? और देखिए मैंने एक सेशन माँ दुर्गा के पाठ का ख़त्म भी कर दिया और आप लोग सोते के सोते रह गए। एनीवे कल से 6 बजे आएंगे तो आपको चमन लाल भारद्वाज द्वारा लिखी दुर्गा सप्तशती का एक एक अध्याय सुनने को मिलेगा। अभी आज तो मैंने सिर्फ स्तुति से स्टार्टिंग की है, कल पहला अध्याय सुनने को मिलेगा। मैं आपके पास फ्लायर्स भी फॉरवर्ड कर दूंगी, तो कल पहला अध्याय सुनना होगा तो फटाफट से आ जाइएगा, वो भी सरलतम भाषा में। कहते हैं ना कि कोई भाषा अगर सरल हो तो वो मस्तिष्क में सीधे हिट करती है। जो भाषा समझ में ना आए उसे हम कैसे, मतलब अपनी जो समझ है उसको बढ़ा सकते हैं। गुड इवनिंग तेज जी, बहुत बेहतरीन आपके साथ बात करके हमेशा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसा आप सबके कॉल्स आने होंगे, लेकिन उन कॉल्स के साथ गुड इवनिंग आशु, कैसी हैं आप? चाय का प्याला बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मेरा व्रत है, वैसे कल भी था, 9 दिन का ही व्रत रखती हूँ मैं। अब सेविंग कह सकते हैं, फूड सेविंग, हाँ फूड सेविंग नहीं, थोड़ा सा एनर्जी सेविंग की बात हो रही है, डिटॉक्स करने की बात हो रही है। और मेरे बगल में एक छोटा सा जिला शिवहर है जहाँ कलश यात्रा निकल गया था, साथ में रथ था, जब पुल पर चढ़ा नीचे पुल से आया तो ब्रेक फेल, 25 लोगों को रेंग गई, उस वक्त माँ कहाँ थी? ओ माय गॉड। देखिए वही बात है ना कि हम थोड़ा सा ब्लेम जल्दी करते हैं, हो सकता है वहाँ इंसानों ने भी किसी चीज़ पे जल्दबाजी की हो। हम कई बार जल्दबाजी कर देते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, ऐसा हो नहीं सकता माता रानी ने या ईश्वर ने आपको अवेयर ना किया हो। बाकी मैं इस बात पे क्या ही कॉम्प्लीमेंट दूँ, पृथ्वी पे तो हर जगह विचरण अविचरण, हर जगह तबाही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बस हम दुआएं कर सकते हैं कि सब कुछ आसपास अच्छा हो। चलिए एक और एनर्जी वाला गाना सुनते हैं और इस शाम को यार बढ़िया सा बनाते हैं, हैं? क्या बोलते हैं? आपका वाला मेरा वाला फेवरेट वाला गाना छुगाड़ा। और आपका नंबर 6393-3164-29 इंतजार कर रहा है आपके कॉल्स का। तब तक के लिए पहले ये गाना सुनिए फिर अपना नंबर डायल करिए।

0: तो भाई किसकी किसकी कमरिया डोलने वाली है फिलहाल ने। गाने की बारी और एक कॉल आ रहा था, लेकिन गाने के बीच में आ रहा था तो मैंने सोचा गाना प्ले हो जाने देते हैं, आप लोग की एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव बातें करके हम एनर्जी कम नहीं करना चाहते, क्या बोलते हैं। तो जल्दी से अपने नंबर्स डायल कर लीजिए 6393 3164 29 बिना देरी किए और हम शुरू करते हैं बात आज की शाम की। पहला कॉल, चलिए देखते हैं किसकी आवाज है। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो मैं निशा। हेलो
0: गुड इवनिंग निशा, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छी हूँ, आपके आवाज सुन के और अच्छी हो जाती हूँ।
0: ओह क्या बात है। तो निशा क्या सुनाना चाहती हैं आप आज?
1: जी आज तो मंडे है।
0: हाँ तो मंडे को आपको कुछ सुनाना होता है तो आप क्या सुनाएंगी? जो आपके मन में हो आप सुना सकती हैं।
1: शुरू करते हैं। मुझसे मोहब्बत कर, मुझसे मोहब्बत कर, कोई लड़का जाता।

0: क्या
1: बात है, क्या बात है। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। इतना प्यारा आपने गाना सुना दिया और मज़ा आ गया सुन के। बड़ा प्यारा सा गाना है, पुरानी मतलब एल्बम, पुरानी मूवी का गाना है, लेकिन आपने एकदम एल्बम सॉन्ग की तरह एकदम नया करके सुना दिया उसको। तो निशा, कैसा लग रहा है आपको गाना सुनाने के बाद? क्या आप किसी को डेडिकेट कर रही थी या बस अपने मन से गा दिया आपने?
0: हम आपको डेडिकेट
1: अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या बात है।
0: थैंक यू सो मच मैम। ओके, अपना ख्याल रखिए।
1: आप भी अपना ध्यान रखिए। तो भाई, निशा ने सबसे पहले आके शुरुआत की है इस शाम को खूबसूरत शाम बनाने की। अब आपकी बात है, और सच्ची गाना तो बड़ा अच्छा था। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। चलिए देखते हैं अभी किसका कॉल है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग,
0: हेलो मैम, जय माता दी मैम।
1: जय माता दी, शुभ संध्या। कैसी हैं आशु जी? पहले ये बताइए कि
0: बहुत अच्छा मैम,
1: नवरात्रि कैसी चल रही है आपकी? आपका भी फास्ट है?
0: बिल्कुल मैम।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए बताइए, आपने क्या सुनाना है आज?
0: मैम माता जी के ऊपर ही सुनाऊंगी सॉन्ग।
1: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है।
0: भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, भक्तों ने

0: छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है, पर्वत त्रिकुटा बताई गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा मैया सवारी तेरी क्या है, भक्तों ने पूछा मैया सवारी तेरी क्या है, पीला शेर बताई गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा मैया प्रसाद तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया प्रसाद तेरा क्या है, हलवा पूरी चना बताई गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा मैया सिंगार तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया सिंगार तेरा क्या है, चोला लाल बताई गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा मैया शस्त्र तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा मैया शस्त्र तेरा क्या है, त्रिशूल चक्र बताई गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा सबसे प्यारा तेरा क्या है, भक्तों ने पूछा सबसे प्यारा तेरा क्या है, भक्तों का प्यार बताए गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। जय माता दी।
1: क्या बात है, और आपने मन मोह लिया इतना खूबसूरत सा देवी गीत सुना के। और सच में नवरात्रों में अगर छोटी सी कन्या अगर आपके पास आती है तो आपके मन में ये जरूर आता है, अरे तो माता का स्वरूप है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी, मजा आ गया। क्या बात है, तो ऐसी माता रानी की कृपा आशु जी पे भी बनी रहे और आप सब पे भी बनी रहे। और गुड इवनिंग अगेन आप सभी को, हमारे साथ अनिल जी भी हैं। स्वागत है अनिल जी, कैसे रहा आपका आज का दिन और आपके यहाँ नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, ज़रा आप भी हमें चैट रूम में या फ़ोन करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए एक और प्यारा सा गाना सुनते हैं इस प्यारी सी शाम में।

0: तो इस प्यारे से गाने को बाद में सुनेंगे, पहले कॉल लेते हैं और देखते हैं आवाज किसकी। हेलो शुभ संध्या।
1: हेलो मैम शुभ संध्या। जय माता दी।
0: जय माता दी। बहन के बाद बहन आती है, क्या ये जुड़ी बन जाती है। ऐसा तो नहीं दोनों मेरे साथ में ही बैठी रहती हैं और हम लोग को यहाँ से चकमा देती हैं।
1: पहले आने की कोशिश किया था लेकिन रिसीव नहीं हुआ।
0: कोई मतलब कहते हैं ना कि दोनों बहनों में से कोई आके पहले अटेंडेंस लगा दे।
1: माता रानी का ही भजन सुनाएंगे हम भी।
0: क्या
1: मौका अच्छा है, नवरात्र।
0: स्वागत है, स्वागत।
1: लाल फूलों की आई है बहार, फूल चढ़ाने को गणपति आए, फूल चढ़ाने को गणपति आए, गणपति आए संग में रिद्धि सिद्धि लाए। आए हो के मूसक सवार, आए हो के मूसक सवार, मैया तेरे मंदिर में लाल फूलों की आई है बहार, मैया तेरे मंदिर में फूल चढ़ाने ब्रह्मा जी आए, फूल चढ़ाने ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग में ब्रह्माणी को लाए। आए हो के हंस सवार, आए हो के हंस सवार, मैया तेरे मंदिर में लाल फूलों की आई है बहार, गुड़हल फूलों की।

0: आए, विष्णु जी आए तुम्हें लक्ष्मी को लाए, आए हो के गरुण सवार, आए हो के गरुण सवार, मैया तेरे मंदिर में लाल फूलों की आई है बहार, मैया तेरे मंदिर में गुड़हल फूलों की आई है बहार, मैया तेरे मंदिर फूल चढ़ाने को शंकर जी आए, शंकर जी आए माँ गौरा को लाए, आए हो के बैल सवार, आए हो के बैल सवार, मैया तेरे मंदिर में लाल फूलों की आई है बहार, गुड़हल फूलों की आई है बहार, मैया तेरे मंदिर में, मैया तेरे मंदिर में ज्योति जले दिन रात, मैया तेरे मंदिर में, मैया तेरे मंदिर में, जय माता दी माता रानी।
1: क्या बात है, क्या बात है, और भक्ति विभोर हो गए हम लोग ये प्यारे प्यारे गीत सुन के, मन खुशी से झूम उठा।
0: मौका है, दस्तूर भी है माता रानी का भजन सुनाने का।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन और हमारी परिस्थिति दोनों हर वक्त एक साथ साथ नहीं देती।
0: मैम और मौका छोड़ देते हैं, लेकिन हम कह नवरात्रि में तो मौका भी है, मन मन तो उमर भी है, तो
1: ओ मतलब इसे मौके की तरह यूज किया जा रहा है। मतलब हम लोग आपके टच के इंतजार में नहीं रहते हैं कि आप स्क्रॉल करें तब हम आपके पास आए, बस आपको मोबाइल ऑन करना रहता है। एनीवे थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपने समय निकाला और सच में जब भी
0: समय निकाल के आए हैं गाने के लिए,
1: दो चार पाँच मिनट का समय निकालने से कभी कभी हम लोग भी बहुत सारी मतलब कहते हैं ना कि जद्दोजहद से बाहर निकल आते हैं कुछ समय के लिए। जी थैंक यू सो मच। प्रीति जी की आवाज़ नहीं आ रही थी, चलिए कोई बात नहीं, उनका गाना तो हम लोगों ने सुन लिया, एंड सच में मौका मिले तो उस मौके को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। जी हाँ, पता नहीं किस मौके पे आके नारायण मिल जाएगा, ये बात भी सही है ना। तो चलिए आगे बात करते करते अब बारी थी गाने की, लेकिन हाँ जैसा कि मैंने कहा ना कि आज की शाम खास है, पॉजिटिविटी से भरी हुई है, और ना सिर्फ पॉजिटिविटी से, मन करता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हों जिनमें हम सभी का दिल खुशी से झूम उठे, ठीक है, और ऊर्जा वाले गाने सुनते हैं हम लोग जिससे ऊर्जा बरकरार रहे, और ऐसे ही कहते हैं ना कि दुनिया एक तरफ पर त्यौहार एक तरफ, पूरे के पूरे वातावरण में एक दीप की तरह, जैसे कहते हैं ना कि दीप रोशनी फैलाता है, वैसे त्यौहार भी होता है, और ये खुशी हमें इन फेस्टिवल्स में महसूस होती है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, हर रूप अलग अलग तरह से हमें प्रेरित करता है सच्चे मार्ग पर चलने के लिए। माँ शैलपुत्री दृढ़ता और शक्ति का प्रतीक है, माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या संयम साधना जिनके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, माँ चंद्रघंटा साहस और वीरता का स्वरूप है, माँ कुष्मांडा सृजन और ऊर्जा की देवी हैं, माँ स्कंद माता ममता और वात्सल्य। माँ कुष्मांडा की अगर बात करें तो वो ये कहती है कि कहीं रुकना नहीं है, सृजन करना है, नई चीज़ों का नव निर्माण करना है, एक ही विचार पे नहीं बैठे रहना है, अगर लगे कि आपको बदलाव ज़रूरी है तो बदलाव बहुत जल्द से जल्द आप अपने जीवन में लाएं। माँ स्कंद माता ममता और वात्सल्य के प्रतीक हैं, आपका अगर अपने आसपास प्रेम स्नेह का वातावरण नहीं आप बना पा रहे हैं तो आप किसी से जुड़ ही नहीं पाएंगे, हर चीज़ आपको नेगेटिव से लगेगी। माँ कात्यायनी शक्ति और पराक्रम हमें देती हैं, माँ कालरात्रि भय और नकारात्मकता का नाश करने वाली, जितनी ये नकारात्मक जितनी ये भयंकर दिखती हैं उतना ही इनका नाम अच्छा है, शुभंकरी। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, कहने का तात्पर्य ये है जितनी भी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पास होगी उसी में आपको पॉजिटिविटी, उसी में आपको आपकी कहते ना कि सफलता का मार्ग भी दिखेगा। माँ गौरी शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक, माँ सिद्धदात्री सिद्धियों और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक। तो चलिए सुनते हैं एक और गाना जो आपके अंदर की एनर्जी को जागृत कर देगा और आपके कॉल को हमारे तक पहुंचा देगा।

0: કેમ છો? મજામાં? કે ઓઢની કે ઓઢની કે ઓઢની, ઓઢું ઓઢું પર ઉડી જાય, ઓઢની ઓઢું ઓઢું પર ઉડી જાય, ઓઢની ઓઢું
1: પર. અગલે કોલ કે સાથ ચલીએ જોડને કા સમય હે, દેખતે હે કોન હે હમારે સાથ. હેલો.
2: હેલો, નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર, શુભ સંધ્યા.
2: शुभ संध्या, जय माता दी और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं.
1: आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं. आपका नाम जानना चाहती हूँ.
2: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश बोल रहा
1: हूँ. अविनाश, वैसे अविनाश आज कल आप भूलने लगे हैं हम लोग को.
2: नहीं नहीं नहीं, भूलने नहीं लगा हूँ, मैं तो हमेशा ही जुड़ता रहता हूँ.
1: तो आजकल अंताक्षरी में आप नहीं दिखाई देते, आपकी टीम काफी कमजोर हो चुकी है.
2: अच्छा, इस बार आएंगे. अच्छा, इस बार आएंगे क्योंकि पिछले दो हफ्ते से मैं थोड़ा व्यस्त था, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया था.
1: चलिए, मैंने आपको याद दिला दिया. अब लड़कियां कहेंगे कि मैम लड़कों की टीम को मजबूत कर रही हैं, लेकिन क्या करें. सहयोग तो
2: नहीं, लेकिन मुझे तो जानकारी मिला कि पिछले हफ्ते तो लड़कों की टीम ने बाजी मार ही दिया था. फिर भी
1: बाजी मारी थी. हाँ हाँ, लेकिन जो कहते ना, इस बार लड़कियां जीती थी, पिछली बार लड़के जीते थे.
2: हाँ, कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है. हार जीत तो इसमें कोई बात नहीं, अब कोई जीतेगा तो कोई हारेगा ही.
1: नहीं, वो हार जीत की बात नहीं है, जैसे आपकी टीम से लोग कम दिख रहे हैं, एक या दो.
2: अच्छा,
1: बस ऐसे.
2: ठीक है, इसका तो जुड़ूंगा, कोई बात नहीं.
1: तो अविनाश जी, आज क्या सुनाना चाहते हैं
2: आप? आज एक कल जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी का कल जन्मदिन गया था, तो और कल आने वाला जो कल है वो किशोर कुमार जी का पुण्यतिथि है, तो इन दोनों के ही मिली जुली एक, मतलब कि इसमें अमिताभ बच्चन जी का अभिनय है और किशोर कुमार जी की आवाज में गीत है, तो उसी को थोड़ा सा देखते हैं कितने तक गुनगुना सकते हैं.
1: बिल्कुल, मैं आपसे गीत तो सुनूंगी, लेकिन एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे.
2: जी,
1: जैसे कि आप त्रिपुरा में हैं, तो मैं तो त्रिपुरा नहीं गई हूँ, तो मेरे लिसनर्स भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो त्रिपुरा नहीं गए होंगे, तो आपसे जानना चाहती हूँ वहाँ पे नवरात्रि का फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है.
2: जी, यहाँ पर देखिए नवरात्रि, बल्कि यहाँ पर दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, और हमारे यहाँ पर छठवें दिन से, मतलब की षष्ठी से शुरू होता है, और ये चलता है दशहरा तक. मतलब हमारे इधर दशहरा में तो आपके उधर तो रावण को जलाते हैं, लेकिन हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है. हमारे इधर जो दुर्गा माँ की जो मूर्तियाँ होती है उनको पानी में विसर्जित किया जाता है, तो इसलिए हम उसको विजयादशमी के रूप में मनाते हैं.
1: अच्छा, मतलब वहाँ पे रावण का मतलब हम लोग मतलब नहीं करते हैं, दशहरा नहीं.
2: जी जी, हमारे इधर दशहरा नहीं होता है, हमारे इधर विजयादशमी के रूप में, और जो माता जी का जो लेके आते हैं वो हम लोग को जो मूर्तियाँ लाते हैं उनको उस दिन विसर्जित कर देते हैं.
1: क्या बात है, तो आपने बहुत अच्छी अहम जानकारी दी. चलिए सुनते हैं आपकी आवाज में प्यारा सा गाना, ट्रिब्यूटरी सॉन्ग.
2: भंग का रंग जमा हो चकाचक के फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए.
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है.
2: के खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला. वो खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला. वो फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल. वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला. के खई के पान बनारस वाला. हाँ, अरे राम दुहाई, मैं तो चक्कर में पड़ गया है, हाय कहाँ जान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया है. मैं तो सीधा साधा, मैं हूँ भोला भाला, जाने कौन गली में पड़ गया. मैं तो पढ़े लिखो से पाला, मिठी छोरी से हुआ हलाल. ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला. के खई के पान बनारस वाला. जी
1: क्या बात है, क्या कहने क्या कहने, मजा आ गया। और आप इतनी मतलब कैसे कॉपी कर लेते हैं आवाजों को, मतलब अंदाज फुल कॉपी कर लेते हैं आप। क्या बात
2: जी, क्योंकि क्योंकि इसमें देखिए किशोर जी ने पूरे अपने जो कॉमेडी अंदाज में इस गाने को गाया और अमिताभ बच्चन जी ने बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने इस गीत में डांस भी किया है।
1: क्या बात है, क्या बात है। और सच्ची बताऊं तो इसी कहते ना, इसी वाइब के साथ हमें जिंदगी भी जीनी चाहिए, क्यों अविनाश?
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहुत कुछ ऐसा है पाने के लिए और बहुत कुछ ऐसा है जो हम खो चुके हैं, अगर इन दोनों के बीच में बस सोचते रहेंगे तो लाइफ पता नहीं कब बीत जाएगी।
2: जी जी, जैसे एक गाना है ना, सोच ना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, और क्या बोलते हैं इसमें एक लाइन है कि आज के लिए कल को ना खोना, कल ये ना आज आज, ऐसा कुछ एक गीत है लाइन में, उसके बाद फिर जो भी होगा देखा जाएगा, और साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, थोड़ा मुस्कुराओ थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का है नाम जिंदगी।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, मजा आ गया अविनाश। और मतलब ऐसे कॉल करते जाकरी, आपका अंदाज सबको मतलब एकदम जिंदा दिली का अंदाज है, क्या कहने, शुक्रिया।
2: जी जी बिल्कुल, धन्यवाद।
1: शाम बन गई, क्या कहने, क्या कहने, मजा आ गया।
2: जी,
1: बहुत, बहुत, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई अविनाश ने आके इतने खूबसूरत अंदाज में गाना सुना दिया है, सबके मन के तार बोल गए होंगे, आहा क्या सुनाया है। तो गुड इवनिंग अगेन कुमार, कैसे हैं? और हमारे साथ अरविंद हैं, अरविंद के साथ दादा हैं, सभी का स्वागत है, स्वागत है, एंड यस अगेन स्वागत है। हम लोग गाना सुन रहे थे ना, उड़ने उड़ो तो उड़े उड़े जाओ। अच्छा ये बताओ, ये गाना किस भाषा से लिया गया? ये हिंदी वर्जन आप सुन रहे हो, लेकिन है ये एक कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज का सॉन्ग, कौन सी रीजन का है बताइए?

0: तो चलिए गाना सुनते हुए अगला कॉल भी ऑन एयर कर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग,
1: जय माता दी।
0: शुभ नवरात्रि, जय माता दी। कैसी हैं अनु, क्या हाल है और कैसे चल रहे हैं आपके नवरात्रि?
1: बहुत अच्छा चल रहा है, मैं खुद भी अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त एंड हाई एनर्जी फील कर रही हूँ। आप बताइए क्या सुनाने वाली हैं अनु आज?
1: अरे मैम, अभी आपने कोई सवाल पूछा था।
0: मैंने कोई सवाल पूछा था? हाँ हाँ पूछा था,
1: इस सॉन्ग से जुड़ा हुआ ना।
0: हाँ हाँ, क्या है आंसर बताइए?
1: पहले गुजराती में था, गुजराती से हिंदी किया गया है।
0: बिल्कुल, तो क्या बात है, आपने उत्तर दिया सबसे पहले, तो इसके लिए आपको गिफ्ट मिलेगा, आपकी पसंद का गाना सुनाऊंगी मैं। अब आप जल्दी से क्या सुनाना चाहती हैं, आप सुनाइए।
1: अरे मैं तो आज सुनाने नहीं आई थी, फिर सवाल का जवाब देने के लिए आई थी।
0: ऐसे ही गाना नहीं सुनने को मिलेगा कुछ तो।
1: कोई बात नहीं, अभी तो गाना ही तो सुन रही थी ना। और ऐसे भी अभी आप गाना तो लगाओगी, लेटर करोगी तो सुनती रहूंगी।
0: मतलब सुनाओगी नहीं आज तो?
1: आज मैं सोच रही हूँ आप सुना दो मेरे लिए कुछ, गा दूँ।
0: मैं तो रोज ही गाती रहती हूँ, मुझे सुन सुन के आप लोग उठते भी नहीं, कैसे हैं?
1: अरे अपने मैम को सुन सुन के कैसे उठ सकती हूँ। हाँ
0: तो चलिए, नवरात्र है तो मैं कुछ हमारी माओ के लिए बोल देती हूँ। एक कविता है बड़ी प्यारी सी, और मैं हर नवरात्रि में ये कविता जरूर लोगों को सुनाती हूँ, इनफैक्ट अपने लिसनर्स को तो जरूर सुनाती हूँ। और
1: जी मैम,
0: आपकी मतलब कहते हैं ना कि हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं इधर उधर, लेकिन घर में अगर हम अपने पेरेंट्स को ईश्वर के तौर पे समझें जाने, तो मुझे लगता है कि सब कुछ उनमें है।
1: जी मैम, और ईश्वर का दूसरा रूप अपने जो माँ बाप है वही होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब इधर उधर सर भटकने की या सर को पटकने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्म करें और
1: हाँ।
0: जो मतलब हो सकता है, एंड यस अपने पेरेंट्स को दर्द ना पहुंचाएं, मतलब मैं ये कहूंगी
1: हाँ।
0: अगर हम उन्हें खुश ना कर पाए तो
1: हाँ, तो कम से कम कोई कष्ट भी ना दे, कोशिश करें कि हमारी वजह से उनको कष्ट भी ना हो।
0: यस यस, इस चीज पे हम ज्यादा ध्यान दें।
1: जी
0: तो सुनिएगा। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई,

छिप जाऊं, खेलूं आँख मचोली, परियों की कहानी सुना दे, कोई मीठी लोरी गा दे।

0: ऐसी घर से हो कि बस लिसनर बन के आवाज सुन के रिश्ता निभा रही हो. माय गॉड. सो लिसनर्स, मैं बता दूं, ये मेरी बहुत पुरानी लिसनर है और ये लिसनर बनते बनते रिश्ता बना रही है, लेकिन मैंने इस लिसनर को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप से. थैंक यू सो मच.
1: अरे मैंने तो आपको आंखों से देखा है, बहुत बार देखा है.
0: क्या बात है. ऑफ कोर्स देख लिया होगा. थैंक यू. अगले कॉलर को मौका देती हूँ. थैंक यू. तो अनु से बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड यस, अगली आवाज़ देखते हैं किसकी है. गुड इवनिंग विजय, और मैं कोई भी कॉल मिस नहीं करना चाहती. अगले कॉल के साथ कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन है. हेलो.
2: नमस्कार.
0: नमस्कार, शुभ संध्या, जय माता दी, कैसे हैं आप? आपका शुभ नाम.
2: मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया ही होंगे.
0: बिल्कुल. आपका शुभ नाम बताने का कष्ट करें, हमारे श्रोतागण जानने को आतुर हैं.
2: मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, अनिल
0: जी. अनिल जी की आवाज मैंने तो पहचान नहीं, लेकिन मेरे श्रोताओं के लिए बताने के लिए शुक्रिया. तो अनिल जी, नवरात्रि को लेके आपके शहर में कैसा माहौल चल रहा है?
2: देखिए, एक्चुअली ये है सेलिब्रेशन जी, शक्ति का, शक्ति की जो उस छवि को हम लोग एक त्योहार के रूप में मनाते हैं. मतलब
0: जी जी
2: जी, एक्चुअली जहाँ कहना है कि शक्ति की आराधना है
0: जी, बिल्कुल.
2: और हम लोग उसका सेलिब्रेशन करते
0: जी जी,
2: क्योंकि वो जीत के आई और ऐसे असुरों का नाश करके आई, जैसे पूरी छवियों को बोल सकती है.
0: बिल्कुल.
2: तो बस इसका हम लोग एंजॉयमेंट करना चाहिए और माता जी का पूरा एंजॉय करना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि, बढ़िया मतलब श्रद्धांजलि नहीं, उनको उनके रूप में क्या बोलते हैं उसको, कुछ सेलिब्रेशन करना चाहिए.
0: जी बिल्कुल. शक्ति की साधना, शक्ति को जानना, और ये एक मौका है जिसमें हम अपनी शक्तिशाली माँ दुर्गा को और बेहतरीन ढंग से जानते हैं. ऐसा कोई विशेष समय कोई नहीं निकालना चाहता, और ये त्योहार हमें एक मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने ईश्वर से थोड़ा और जुड़ पाए.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो आज आप क्या सुनाइएगा?
2: तो मैं तो सुनाऊंगा आज रफी साहब का एक निर्गुण है.
0: क्या बात है, स्वागत है. आप निर्गुण वैसे भी बहुत अच्छा सुनाते हैं. एक और मैं सुन
2: चुकी हूं. तो रफी साहब का है तो प्रयास करूंगा भाई, उतना बड़ा तो मैं हूं नहीं. तो मैं कोशिश करूंगा. सुख के सब साथी.
0: क्या बात, क्या बात, क्या बात है. दुख में ना कोई.
2: जी हाँ जी हाँ जी हाँ. तो क्या मैं थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है.
0: बिल्कुल स्वागत है.
2: सुख के

0: सब साथी दुख में ना कोई। थैंक यू मैम।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक तो आपने गाया भी बहुत अच्छा और
0: मैं कुछ भूला हूँ इसके लिए सॉरी।
1: हाँ देखिए, किसी भी इंसान में लिरिक्स को लेके थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है। ये अपने सामने लिरिक्स रख के नहीं गा रहे, लेकिन जो जुड़ाव था, जो होना चाहिए था जुड़ाव, वो हुआ।
0: थैंक यू।
1: आवश्यकता जिस चीज की थी वो ही। और क्या अंदाज है आपका, आप
0: गाते लेकिन आपने आप गाना नहीं सुनाया कोई।
1: मैंने गाना, आप देर में आए, आप ये कह रहे हैं आप आए नहीं देर में, मतलब 6 बजे आएंगे तो आपको सुनने को जरूर मिलेगा।
0: हम गलत टाइम पे आ गए।
1: आप थोड़ा सा लेट आए, गलत नहीं, गलत टाइम पे नहीं, आप देर से आए।
0: आपका गाना नहीं सुन पाए तो मैं शॉर्ट टाइम पे सोच
1: रहा। कल आप 6 बजे आइएगा तो फिर आप जरूर सुनिएगा। नवरात्रि स्पेशल चल रहा है इस बार, तो हर दिन।
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, क्या बात है।
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनिल जी की आवाज में हमने एक बेहतरीन पेशकश सुनी, निर्गुण गीत, जिसको सुन के आपका और हमारा मन दोनों एकदम खुश हो जाए। और एक और कॉल है जिसको मैं मतलब इग्नोर नहीं करना चाहती, क्योंकि मंडे मीन्स आपका डे, तो कुछ मिनट्स आपके नाम और करते हैं, देखते कौन है। हेलो।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, शुभ संध्या, आदाब, कैसे हैं रईस जी? आपकी आवाज़ में पहचान पा रही हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज आपकी आवाज में वो चहक नहीं दिख रही, क्या बात है?
2: थोड़ा लेट हो गया इसके लिए।
1: अच्छा, इस बात की मतलब आपको मलाल है। तो आज क्या सुनाएंगे आप?
2: मंडे भूल गया था ना।
1: ये बात तो है, लेकिन मैं आपकी व्यस्तता को समझते हुए इसलिए आपसे शिकायत नहीं कर रही। तो क्या सुनाइएगा आज?
2: खत्म हो रहा है
1: तो बिल्कुल बिल्कुल स्वागत
3: है। ये लालियर ये कंगना साजन के बुखार है, तो जिनका ही जीवन मिलने का तेरा साजन तैयार है। क्या बेकार है मेरा लखन जातवाशिक बेकार है। क्या रुपये मस्तानी लाने बिनती है ये जवानी बिनती है ये पार्टी। बस इतना ही रहता मैडम।
1: क्या बात है, फिलहाल आपने आके कुछ मिनटों के लिए ही सही अपनी प्रेजेंस से सबको मतलब एनर्जाइज कर दिया और बता दिया कि हाँ रईस जी भूलते नहीं है, क्या बात है, शुक्रिया।
2: थैंक यू।
1: क्या बात है। तो रईस जी की आवाज़ भी हम लोगों ने सुन ली, लगे हाथ और मज़ा आ गया। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा टाइम, जैसे कहते हैं ना आज सेविंग्स डे है, तो टाइम की सेविंग्स थोड़ी किया करें और कॉल करते समय थोड़ा सा और ज़्यादा अपडेट हो जाएं। पूरा शाम बिताने के बाद आप लोग अचानक से जब उठते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वेल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपकी आवाज़ सुन के आप लोग की दिल खुश हो गया। और इसी के साथ अर्जुबीना को भी दीजिए इजाज़त। चलिए सुनते हैं ये नवरात्रि स्पेशल प्लेलिस्ट, और मैं इस खूबसूरत सी शाम को आपके नाम करके जा रही हूँ। आप इस शाम को एंजॉय करिएगा और कुछ ही देर में आप सुनेंगे गीत आपके नाम से।

मिन्योर शुपर माइशी वीडियो आज सिंपल और इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। कैसा लगा ये गाना मुझे जरूर बताना। आहा स्टे ट्यून।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए डेफिनेटली हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है पब्लिक? सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, विजय रावत और रोशनी समस्तीपुर बिहार से, प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से और नागेश्वर धाकड़ इंडिया से आपका स्वागत है। इसी के साथ में धर्मेंद्र मोहन का आवास विकास गोंडा से कहना है कि सिंपल जी गुड इवनिंग, द्वितीय नवरात्र की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो मेरी भी तरफ से द्वितीय नवरात्र की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। और चलिए इसी के साथ में एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र का दौर चल रहा है और इस वक्त सब लोग माता रानी की भक्ति में लीन है, और इसी के साथ में मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से पहली फरमाइश आई है अजय मिश्रा की, उनको सुनना है नवरात्र प्लेलिस्ट से गाना तेरे दर को मैं छोड़ कहां जाऊं। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारे अजय मिश्रा जी की फरमाइश पर, जो कि है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से। और दोस्तों ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

घर को छोड़ कहाँ जाऊँ, माँ दूजा कोई द्वार न दिखे। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग, भक्तिमयी गाना, सिर्फ और सिर्फ मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। और इसी फरमाइशी गीत को सुनकर मैं माँ ब्रह्मचारिणी के लिए चंद लाइनें पेश करना चाहूँगी कि तपिश्चारिणी माँ ब्रह्मचारिणी, भवसागर से तारिणी माँ, हाथ कमंडल अक्षमाला सोहे, रूप अलौकिक मन को मोहे। कठिन तपस्या तुमने कीनी, शिव को पाने की मथलीनी, त्याग और संयम का पथ दिखाया, जग को भक्ति का दीप जलाया। सो जय माँ ब्रह्मचारिणी। और इंजॉय करेंगे अगली नवरात्र प्लेलिस्ट से फरमाइशी की को। जी हाँ दोस्तों, जुगल किशोर वर्मा जी को मोहम्मद रफी जी की आवाज में इंजॉय करना है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सो इंजॉय करेंगे एक और भक्तिमयी सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पे, जो कि है एमपी से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो एडवोकेट सुनील मझारा। स्टे ट्यून्ड।

तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा देवी गीत सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवीय नगर गोंडा से। मोहित को मालवीय नगर गोंडा से सुनना है गाना, लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ, तू जो दे दे सहारा दुख जीवन का सारा, तेरी चरणों में वारू भोली माँ। सो एंजॉय करते हैं सुरेश जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा देवी गीत, लेकिन इस बार मोहित की फरमाइश पर, जो कि है मालवीय नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

प्रोफेसर सुरेश जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा देवी गीत, सिर्फ और सिर्फ मोहित की फरमाइश पर, जो की है मालवीय नगर गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय रावत की। विजय रावत को सुनना है गाना अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। सुना जाए इस पिक्चर का ये गाना कुमार सानू और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में। हम इंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ विजय रावत की फरमाइश पर। और विजय रावत जी में कहना चाहूंगी कि ना बरसात हो रही है और ना ही इस टाइम पे, अरे शुभ शुभ बोलिए, नवरात्र का समय है, पीने की जरूरत है। वैसे मैं कहना चाहूंगी कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, ये आपकी किसी भी बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। सो प्लीज सोच समझ के जो भी कदम उठाइएगा अपनी ज़िंदगी के लिए उठाइएगा, क्योंकि एक आपकी ज़िंदगी पता नहीं कितने लोगों के लिए प्यारी होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के ये वाली फरमाइश। फिलहाल गाना तो कमाल का है, नो डाउट। एंजॉय करेंगे विजय रावत की फरमाइश पर ये नगमा।

गाना कुमार सानू की आवाज में नाजायज पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ विजय रावत की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है रोशनी की समस्तीपुर से, और रोशनी को समस्तीपुर बिहार से सुनना है गाना शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। ये सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से नवरात्र प्लेलिस्ट से ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा, और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं।

शेरा वाली माँ जूता वाली शेर पे सवार होके आ जा शेरा वाली। हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग। समस्तीपुर से आई थी ये फरमाइश और ये फरमाइश थी रोशनी की। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को। जी हाँ, अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना माता प्रकट हो दूर संकट हो। सो एंजॉय करेंगे एक बार फिर से नवरात्र प्लेलिस्ट से बहुत ही खूबसूरत सनगमा। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मालवीय नगर से राजेश सिंह जी आपका स्वागत है। इसी के साथ में नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि शेर पर सवार होकर अगर माता आ गई तो सब भाग जाएंगे। अच्छा जी, सबका पता नहीं लेकिन आप जरूर भाग जाएंगे, तभी तो आपके दिमाग में ये थॉट आया। लेकिन अगर माता रानी वो भी शेर पे सवार होके आएंगी तो सबको पता है कि शेर भी बाल बाका नहीं करेगा, है ना। सो एंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश को, आशु जी की फरमाइश को। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग देवी गीत सिर्फ और सिर्फ हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है प्रमुख कुमार जी की लुधियाना से। प्रमुख कुमार जी को लुधियाना से सुनना है गाना मेरा पागल जिया न माने। सो एंजॉय करेंगे सपने साजन के पिक्चर का ये गाना अलका याग्निक जी की आवाज में हमारे प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर जो की है लुधियाना से। स्टे ट्यून्ड।

0: ने पहली बार सपने साजन के हमने एंजॉय किया है। ये गाना प्रमुख कुमार जी की फरमाइश पर जो की है लुधियाना से, और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया था उनके साजन को। फिलहाल प्रमुख जी आपके साजन है कि सजनी, ये कंफ्यूजन मुझे बहुत ज्यादा हो रही है, क्लियर करके जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? लेकिन आज दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग फरमाइशी गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी आज सिंपल नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ फरमाइशी गीतों को ही प्ले कर रही है। आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की बकबक को आप लोग मिस नहीं कर रहे हैं क्या? अगर हाँ सो चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अब अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन जी की आवाज, विकास गोंडा से उनको सुनना है, किशोर कुमार जी की आवाज में नगमा अमृत पिक्चर का। सो एंजॉय करते हैं जिंदगी क्या है एक लतीफा। सो एंजॉय करेंगे ये गाना धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।
1: अच्छा दादा।
2: हाँ तो बच्चों

0: और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखाई दे रहे हैं।
0: तो लंगड़ा बोला,
1: चलो चलो भाग चलते हैं।
0: तो भिखारी बोला,
2: अरे जल्दी करो

0: एक मियां बीवी आठवीं मंजिल पर रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
1: हाँ।

0: एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया, एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर।
1: सर दोस्तों, ये अतरंगी सा फरमाइशी गीत हमने एंजॉय किया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अतरंगी से धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर, जो कि है आवाज विकास गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, और अगली फरमाइश है हमारे पास में बहुत ही खूबसूरत से सदाबहार नगमे की। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और उनको सुनना है गाना लाल दुपट्टा। सो एंजॉय करेंगे। ओ माय गॉड, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में मुझसे शादी करोगी पिक्चर का ये गाना, सिर्फ और सिर्फ मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। ओ माय

दोस्तों एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को। ये तो फरमाइश थी मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। उनको सुनना है गाना घूंघट की आड़ से दिलबर का। एंजॉय करेंगे ये गाना इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहाँ हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। स्वदेश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट्स सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल।

89.6 एफएम गोंडा है शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है, जाके फटाक से पेट पूजा कर लेना। फिलहाल तो मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, जैसे मखाने की खीर, मखाने का हलवा, लौकी की खीर और जो भी बनते हों व्हाटएवर फलहारी में। और किन किन लोगों का 9 दिन का उपवास है, 9 दिन का व्रत है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। फिलहाल मिलते हैं सीधे 9 बजे आपकी फरमाइशी की महफिल में। स्टेटी हूँ।

0: अल्लाह
1: हैदी।

वेलकम बैक इन योर सफर माय शी विद योर जस्ट सिंपल इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। क्या हाल चाल है पब्लिक, एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश को बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो उस्मान खान जी, आपका स्वागत है, स्टे ट्यून और एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश को। उनको सुनना है गाना रंगीलो मारो ढोलना, ओ माय गॉड। एंजॉय करेंगे ये हाई बीट हाई एनर्जी वाला सुपर डुपर डुपर डुपर हिट गाना सिर्फ और सिर्फ नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। वेलकम इन योर शो जेके शाह, स्टे ट्यून्ड। आयो रे मारो ढोलना,

माय गॉड, हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, तड़कता भड़कता सा गाना, डीजे को चूर चूर कर देने वाला, दिल को फाड़ देने वाला, फेफड़े को एकदम से हिला देने वाला गाना हमने एंजॉय किया है हमारे नागेश्वर धाकर की फरमाइश पर। इसी के साथ में जेके शाह का कहना है कि कुछ ना कहते एक झलक देख तो लेते। अच्छा, अरे कुछ ना कहते एक झलक देख तो लेते, इतनी सी हसरत थी इस दीवाने की। ओह माय गॉड, बड़ा बड़ा लाइंस, और एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। इसी खूबसूरत लाइन की तरह आज अगली फरमाइश जो हमारे पास में है वो भी है। जी हाँ दोस्तों, पंजाबी गाना हम एंजॉय करने जा रहे हैं सतिंदर सरताज की आवाज़ में, सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट सुनील मझारा की फरमाइश पर। सुनील मझारा जी, आजकल जो गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, दिन भर में एक दो बार तो ज़रूर सुन रही हूँ, उस गाने की आपने फरमाइश की है, दिल जीत लिया आपने, थैंक यू सो मच। हाँ, स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग। बाय द वे, आई लव सतिंदर सरताज, बहुत प्यारी आवाज़ है।

आए हाय सतिंदर सरताज का ये गाना हमने एंजॉय किया है एडवोकेट सुनील मझारा की फरमाइश पे। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, बहुत ही प्यारा सा गाना है, हमने एंजॉय तो कर लिया। अब ये गाना बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवी नगर से राजेश सिंह जी की, इनको सुनना है मोहम्मद रफी जी की आवाज में ओल्ड इज गोल्ड सुनहरा नगमा। ये गाना भी मेरे दिल के बहुत बहुत बहुत करीब है दोस्तों, इंजॉय करते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। ओ माय गॉड, इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ मालवी नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर स्टेज में। आए हाय वारी जामा इस गाने पे।

आओ लिखे जो खत तुझे, जहाँ तू है वहीं मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू साहिल है। ओ माई गॉड, हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो दीपक जी, हथियागढ़ गोंडा से आपका स्वागत है। इसी के साथ में जीके शाह का कहना है कि है लाखों बंदिशें हर तरफ इस जमाने की, है लाखों बंदिशें हर तरफ इस जमाने की, करूं मैं कैसे रुख फिर तेरे शहर के लिए। जो बंदिशों पर ध्यान देते हैं वो फिर कभी अपने मन की नहीं कर पाते हैं जनाब। बंदिशें तो आज भी हैं, बंदिशें कल भी रहेंगी। आप कुछ करेंगे तब भी बंदिशें रहेंगी, आप नहीं करेंगे तब भी बंदिशें रहेंगी। और फिर वो इंसान ही क्या जो बंदिशें पार करके फिर कुछ दुनिया में ना करना चाहे, अपने ख्वाबों को ना पूरा करना चाहे, अपने ख्वाहिशों को ना पूरा करना चाहे, अपनी खुशियों को ना मतलब इंजॉय करना चाहे, है ना। सो इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश उस्मान खान की। उस्मान खान को सुनना है गाना तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। सो इंजॉय करते हैं ये गाना एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, लेकिन इस बार उस्मान खान जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून।

वाओ, हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा रंगमा बढ़ेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइशी गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है निशा की, पटेल नगर गोंडा से। और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। सो एंजॉय करेंगे ये नगमा निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। और इसी फरमाइशी गीत से अब आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो दोस्तों बस यही इतना कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी और जो सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू-बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, मिलते हैं कल फिर से, एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। ये गाना मुझे सच में बहुत पसंद है और आवाज श्रेया जी की, से एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट सॉन्ग निशा की फरमाइश पर। मिलते हैं कल फिर से नए गीत, नए जज्बात और नई बात के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: हमारे शहर में लग न जाए आग नफरत की, हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260-981-9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करे आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, ये बन चुकी है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। और इस प्यारी सी महफिल में आप सभी का खैर मकदम, आप सभी का इस्तकबाल। अपने शो में, अपने इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बुनियाद के ईंटों की, वो ईंटें जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन जिन पर बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी होती है। हम बात करते हैं दानिश्वरों की, बात करते हैं कलमकारों की, बात करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के ख्यालात को कागज पे उकेरा और उसने कभी नगमा, कभी गीत, कभी कथा, कभी दोहे, कभी गजल, तो कभी कव्वाली की शक्ल ली। और ये सारे के सारे काम हमारे कवि करते हैं, शायर करते हैं। आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं उनका नाम आपने जरूर सुना होगा, हमेशा देर कर देता हूं मैं, ये उनकी एक ऐसी गजल है जो लोगों की जुबान पर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं, मुनीर नियाज़ी, बहुत ही प्यारे से शायर, बहुत ही आसान लफ्जों में जिंदगी के कई सारे मौजूआत को छूते हुए उनकी जो गजल है वो तरबियत से गुफ्तगु करती हुई, संस्कार से बातें करती हुई अदब की दुनिया में आती है, कभी महबूब का दामन भी थामती है और कभी भूख से बिलबिलाए हुए बच्चों की दास्तान भी कहती है। मुनीर नियाज़ी, उन्होंने लिखा कि बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों में दहकाए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, एक बाग एक बारा सा साथ अपने महकाए हुए रखना, उस हुस्न का सेवा है। सेवा कहते हैं तरीका या ढंग को, ये तालव विषय है सेवा, उस हुस्न का सेवा है

0: तुमने तो मुनीर अपनी आदत ही बना ली है, तुमने तो मुनीर अपनी जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। अब ऐसी स्थिति में शायर ने, देखिए अपनी एक प्यारी सी गजल में उन्होंने कई सारे मौजूआत को छुआ कि हमारे हृदय में बहुत कुछ दफन होता है और शायद हमारे पास कहने के लिए कोई अपना हमदर्द नहीं होता जिसके साथ हम अपनी बातों को बांट सकें, अपना कोई गमगुसार नहीं मिलता, गमगुसार मतलब जिसके साथ अपना हम दर्द बांट सकें, ऐसे लोग कम हैं। और फिर उसके पश्चात हुस्न और इश्क की बात होती है, और जब बात हुस्न और इश्क दोनों की होती है तो मेरे जहन में एक बहुत ही प्यारी सी नज़्म आती है, बहुत ही प्यारा सा ख्याल आता है और आप सभी का सुना हुआ ये नगमा है। और आइए आज इस नगमे के साथ बहारे गजल की शुरुआत करते हैं। उस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए। अब एक तरफ साहब हुस्न है और एक तरफ इश्क है, देखिए जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएगी मोहम्मद रफ़ी की ये प्यारी सी आवाज़। आपको सुनते रहिए और रेडियो ग्रेसली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। हमारे साथ स्टीव जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सर, आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, आपको भी शुभ संध्या। और आइए अब चलते हैं इस प्यारी सी गजल की तरफ।
1: शिमारू के नए

कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। गजल की अपनी एक कदा है, मतलब वो बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही गहरा एहसास अपने साथ शब्द लेकर आते हैं। और अभी मैं बात कर रहा था आज विद्यार्थियों से, तो ऐसे बात चल गई शब्दों पर कि शब्दों में बहुत जादू होता है। हमने कहा वो तो है। फिर मैंने एक उदाहरण दिया कि कभी कभी आपके चेहरे के जो भाव होते हैं वो आपके शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। शायद इस बात पर आपको थोड़ी सी हैरत हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर अभी हाल ही में हमारे बीच एक अभिनय की दुनिया का बहुत चमकता हुआ सितारा डूबा, जिसे हम लोग नाना पाटेकर के नाम से जानते हैं, और उनकी एक मूवी है खामोशी द म्यूजिकल, उसमें पति और पत्नी नाना पाटेकर और उनके साथ उनकी पत्नी का रोल किया। दोनों गूंगे हैं, बोल नहीं पाते। अगर आप मेरा यकीन कर पाएं तो कभी उस फिल्म को देखिएगा, आपको लगेगा कि उन्होंने अपने चेहरे के भाव से सब कुछ कह दिया, आंखों ने सब कुछ कह दिया और शब्द कहीं आए ही नहीं। एहसास को कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वो आंखों से बयां हो जाते हैं। कहीं पढ़ा था मैंने कि कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये वो हकीकत है जो आंखों से बयां होती है। शब्दों की आवश्यकता कभी नहीं पड़े, मतलब अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसमें शब्द नहीं है और सारे भाव आपको समझ में आएंगे, तो कभी मौका मिले तो देखिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि देखनी चाहिए, कि अभिनय से हम शब्द को गौर कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मुनीर नियाजी साहब कहते हैं कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ जाके उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। ये मुनीर नियाजी है साहब, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं देर कर देता हूं। सामान्यतः लोग कहते हैं कि नहीं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और शायर इस बात का अलल ऐलान करता है कि नहीं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। क्या बात है। और साहब माजी की बात करें ना, इंसान का जो पास्ट होता है, जो उसका बीता हुआ कल होता है, वो शायद उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अभी आपने गजल सुनी कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। जो बीता हुआ कल है वो कचोटता है कहीं ना कहीं,
आपने सुना होगा बहुत ही प्यारे शायर फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने लिखा था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है दरख्शा की हयात। और उन्होंने लिखा था कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। कभी कभी समय इतना आगे निकल चुका होता है कि हम पीछे पलटकर देखना भी चाहें तो शायद उन लम्हों को वापस नहीं बुला सकते। जब बात ये चली है फैज़ अहमद फैज़ की, ये गज़ल है और इसे स्वर भी दिया गया है, आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल हमारे साथ भाई धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवाज़ विकास के साथ। जी हाँ मनुष्य जी, हमारी उपस्थिति ही काफ़ी है, चाहे उसे चाहत समझिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जे के शाह जी हैं, आदाब करते हैं आपको। और उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में, क्या बात है। और आइए अब जब फैज़ अहमद फैज़ की बात हो चुकी है तो मुझे याद आती है वो बहुत ही प्यारी सी गज़ल जो लिखी गई है, और उम्मीद है कि इस गजल को आप दिल से पसंद करेंगे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, बहुत ही प्यारी सी गजल, देखते हैं आप कितना पसंद करते हैं इसको।

जब दीप जले आना। यशोदास साहब जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी और इतनी शानदार गजल उन्होंने गाई। मतलब जहां एहसास होते हैं कहीं ना कहीं शब्द वहां पर आते हैं। और जेके शाह लिखते हैं, कुछ शौक था यार फकीरी का, कुछ इश्क ने दर दर भटकाया, कुछ यार ने कसर न छोड़ी थी, कुछ जहर रकीब ने घोल दिया। क्या बात है। कुछ हिज्र फिराक का रंग चढ़ा, कुछ यार ने गम अनमोल दिया, कुछ किस्मत थी बदकिस्मत की, कुछ हिज्र विसाल में घोल दिया। कुछ यूं राहें भी मुश्किल थीं, कुछ गम का गले में तौक भी था, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मरने का हमें शौक भी था। वाह, ये है मुनीर नियाज़ी साहब, ये हैं मुनीर नियाज़ी। और वो आगे कहते हैं मुनीर नियाज़ी कि जो मुझे भुला देंगे मैं उन्हें भुला दूंगा, जो मुझे भुला देंगे मैं उन्हें भुला दूंगा, सब गुरूर उनका मैं खाक में मिला दूंगा। होता है कि हम याद करते रह गए और वो किसी और के साथ हो गए। वसीम बरेली साहब कहते हैं कि ये सोच के कोई अहदे वफा करो हमसे, हम एक वादे पे उम्रे गुजार देते हैं। कहते हैं अगर हमसे एक बार वादा कर लिया तो उस वादे पर हम जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन नई नस्ल कहती है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। होता है साहब। और देखता हूं सब शक्ले जो मुझे भुला देंगे मैं उन्हें भुला दूंगा, सब गुरूर उनका मैं खाक में मिला दूंगा। क्या बात है साहब। और बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां आई, देखता हूं सब शक्लें, सुन रहा हूं सब बातें, देखता हूं सब शक्लें, सुन रहा हूं सब बातें, सब हिसाब उनका मैं एक दिन में चुका दूंगा, रोशनी दिखा दूंगा इन अंधेर नगरों में। शायर क्या काम करता है, उजाला लेकर आता है। रोशनी दिखा दूंगा इन अंधेर नगरों में, एक हवा जियाओं के चार सू जला दूंगा। जियाओं मतलब अंधकार, जहां जहां अंधकार है वहां वहां प्रकाश फैला दूंगा। वसीम बरेली साहब ने कहा था कभी कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं। और उन्होंने भी कहा था कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मका नहीं होता। उन्होंने घर पर बात की तो बात यह की कि कल खुदा जाने यहां किसका बसेरा होगा, आज इस घर पे जो तख्ती है वो मेरे नाम की है। माजी हाल और मुस्तकबिल, वर्तमान भूत और भविष्य, इन तीनों पर शायर अपनी कलम चलाते हैं। बेमिसाल करियों के बेकनार बागों के, अपने ख्वाब लोगों के ख्वाब में दिखा दूंगा मैं मुनीर आऊंगा एक दिन उससे मिलने, मैं मुनीर आऊंगा एक दिन उससे मिलने, उसके दर पे जाके मैं एक दिन को सदा दूंगा। सदा मतलब आवाज। हम चाहते हैं साहब कुछ, और हमारी जिंदगी में होता है कुछ। कभी महसूस किया होगा आपने कि हम जो चाहते हैं वो शायद नहीं होता, और जब जो हम चाहते हैं वो नहीं होता तो थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है। खुद से यूं शर्मिंदा होना पड़ता है, खुद से यूं शर्मिंदा होना पड़ता है, मरते मरते जिंदा होना पड़ता है, जीवन ऐसे नाच नचाता है हमको, जीवन ऐसे नाच नचाता है हमको, अरे बेमन से गोविंदा होना पड़ता है। जिंदगी साहब जब नचाती है तो हम सभी नाचते हैं। और आइए भाई, सविता जी आ चुकी हैं, चरण स्पर्श करते हैं। शुभ संध्या आपको भी,
और अब आप आ गई हैं तो चलिए एक गजल के माध्यम से हम आपको सलाम करते हैं। जी हाँ, देखिए हमारा अंदाज़े बयां सलाम करने का कुछ यूँ है।

जी तो हुस्न है, मैं इश्क हूँ और बात हुस्न और इश्क से ही शुरू हुई थी भाई। हमने पहली गजल ही वही बजाई थी, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाया। जी हाँ, बहुत खूबसूरत जी। एक वारिस ऐसा होता है तख्त खाली रहा नहीं करता। ये साहब ये तो बात है, लेकिन अगर मैं कहूं कि सांसों का एतबार है इंसान को इस कदर, सांसों का एतबार है इंसान को इस कदर, सदियों की बात करता है लम्हों की सेज पर, तो आने वाले पल का तो पता नहीं है साहब क्या होने वाला है, तो हम बड़ी बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम हो है। उन्होंने कहा कि मतलब आने वाले एक पल का भरोसा जरा मुश्किल सा होता है। मुनीर नियाज़ी साहब कहते हैं कि बहुत ही प्यारी गजल कही उन्होंने और लिखा कि वो जिसकी जुस्तजू थी, जिसकी जुस्तजू वो हकीकत नहीं मिली, इन बस्तियों में हमको रिफाकत नहीं मिली। रिफाकत मतलब नजदीकियां। अब तक है इस गुमा में कि हम भी हैं दहर में, दहर मतलब दुनिया या संसार। अब तक है इस गुमा में कि हम भी हैं दहर में, इस वहम से नजात की सूरत नहीं मिली। रहना था उसके साथ बहुत देर तक मगर, रहना था उसके साथ बहुत देर तक मगर, इन रोज और शबों मुझे फुर्सत नहीं मिली। कहना था जिसको उससे किसी वक्त में मुझे, कहना था जिसको उससे किसी वक्त में मुझे, इस बात के कलाम की मोहलत नहीं मिली। कुछ दिन के बाद उससे जुदा हो गए मुनीर, कुछ दिन के बाद उससे जुदा हो गए मुनीर, उस बेवफा से अपनी तबीयत नहीं मिली, तबीयत नहीं मिली। लेकिन साहब होता है कि पता नहीं क्यों जिनको हम भूलना चाहते हैं वो बहुत याद आते हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि अक्सर इंसान उन्हीं को याद कर लेता है जिन्हें वो भूलना चाहता है, और ऐसी स्थिति में इंसान का स्वयं पर वश नहीं चलता। जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, क्योंकि ये अब गोंडा ही नहीं बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वही छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, लव यू डैडी। शादी के बाद रिया की पहली रसोई थी। दादी के कहे अनुसार उस दिन वो सुबह जल्दी उठी और सुनहरे गोटे वाली पीली साड़ी पहनकर तैयार हो गई। तभी सासू माँ उसके कमरे में आकर बोली, रिया थोड़ी देर में किचन में आ जाना, रोनित की बुआ जी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाएंगी। ये कहकर वो जाने को हुई ही थी कि उन्हें फिर कुछ याद आया और वो पलटकर उससे कहने लगी, देखो बहू, उनसे थोड़ा संभल कर रहना, दूसरों के काम में कमी निकालने की उनकी आदत है। वो कह रही थी कि वो तुमसे खिचड़ी के साथ साथ मीठे गुलगुले भी बनवाएंगी, तुम बना लोगी ना? उन्होंने रिया से पूछा तो रिया ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन असल में वो पूरी ही तरह हिल गई क्योंकि गुलगुले कैसे बनाए जाते हैं उसे नहीं पता था। मायके में पापा बनाते थे और वो मजे से खाती थी। कभी कभार खाए जाने वाले गुलगुले बनाने की रेसिपी सीखना उसने कभी जरूरी नहीं समझा, पर अब वो क्या करती? तभी फटाफट उसने अपने रूम का दरवाजा बंद किया और अपने शेफ पापा को फोन लगाया। हेलो रिया, कैसी हो? हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म? दादी पापा के फोन से बोली। दादी मेरी खैरियत बाद में लेना, पहले पापा को फोन दो, जल्दी इमरजेंसी है। किसकी जर्सी है? यहाँ तो किसी की जर्सी नहीं। रिया की कम सुनने वाली दादी को वो जोर जोर से कहकर फिर बोली, दादी जर्सी नहीं, इमरजेंसी इमरजेंसी। खैर अब पापा को फोन दो तुरंत। पापा ने फोन पकड़ा तो रिया बोली, पापा सब गड़बड़ हो गया, रोनित ने बोला था कि मेरी पहली रसोई में मुझसे खिचड़ी बनवाई जाएगी, पर यहाँ तो खिचड़ी के साथ साथ गुलगुले भी बनाने हैं। अरे वाह, खिचड़ी और गुलगुले, क्या बढ़िया मेल है, पर इस बात से तुम इतनी परेशान क्यों हो? पापा बोले, पापा गुलगुले बनाने हैं और मैंने सिर्फ आपके हाथों के बने गुलगुले खाए हैं, बनाए कभी भी नहीं, अब क्या करूं? चिंता मत करो और ध्यान से मेरी बात सुनो, गुलगुले बनाना एकदम आसान है। ये कहते हुए पापा ने गुलगुले बनाने की सारी रेसिपी रिया को बता दी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है लव यू डैडी। अब तक आपने सुना रिया की पहली रसोई की रस्म होनी थी। उसको रौनित ने बताया था कि उससे खिचड़ी बनवाई जाएगी, तो उसने खिचड़ी बनाना तो सीख लिया था, पर यहाँ उसे पता चला कि उससे गुलगुले भी बनाने हैं। उसने फटाफट अपना कमरा बंद किया और पापा से पूरी रेसिपी सीख ली। अब आगे, यहाँ रसोई से उसके लिए बुलावा आया तो उसने बाय पापा बाद में कॉल करती हूँ कहते हुए फोन काटा और किचन की ओर बढ़ गई। गुड़ के पानी में पहले आटा फेंट कर रख देना, बाद में दूसरे काम करना, इससे आटा अच्छे से फूल जाता है और गुलगुले एकदम नर्म बनते हैं। पापा की बताई ये बात याद करते हुए उसने सबसे पहले गुड़ के पानी में आटा फेंट कर रख दिया। उसके बाद खिचड़ी की तैयारी में लग गई। बुआ जी सारे वक्त किचन में उसके पास ही खड़ी रहीं। उनका होना रिया को थोड़ा असहज तो लग रहा था, फिर भी उसने पूरे संयम और आत्मविश्वास के साथ अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से निभा ली। वाह, क्या गुलगुले बने हैं! रौनित के फूफा जी ने गुलगुले खाते हुए कहा, खिचड़ी का भी जवाब नहीं है। रौनित, रसोई के कामों में तो तेरी बीवी हमेशा अव्वल ही रहेगी। इस बार बुआ सास ने रौनित से रिया की तारीफ की तो उसकी बेचैनी कुछ कम हो गई। घर के बाकी लोगों को भी खिचड़ी और गुलगुले खूब पसंद आए। पापा की गुलगुले बनाने की रेसिपी ने तो उस दिन कमाल ही कर दिया। रिया बहुत खुश थी कि तभी रौनित की माँ बोली, रिया तुम्हारी माँ ने सचमुच तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। माँ ने? सासू माँ के ये शब्द मन में कहीं अटके तो रिया कुछ कहने को हुई ही थी कि रौनित ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। उस वक्त उसे रौनित और सासू माँ का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा। वो दोनों ही अच्छे से जानते थे कि उसकी माँ होते हुए भी उसकी सारी परवरिश उसके पापा ने ही की थी। चोटी बनाने से लेकर खाना बनाने तक का एक एक काम उसके पापा ने ही उसे सिखाया था, तो फिर ये झूठ क्यों? उस वक्त तो वो चुप रह गई, लेकिन रसोई की रस्म के बाद जब वो अपने रूम में गए तो पहला सवाल रिया ने रौनित से यही पूछा, रौनित मुझे मेरे पापा ने हर चीज सिखाई है, तो फिर सबके सामने ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि वाह तुम्हारे पापा ने कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया है? क्या पिता बेटियों को खाना बनाना नहीं सिखा सकते? क्या इसमें कोई शर्म की बात है? रौनित ने रिया की हथेली थामकर उसे समझाते हुए अपने पास बैठाया, शांत हो जाओ रिया, माँ ने तो बस ऐसे ही कह दिया,

ताकि बात का बतंगड़ ना बने। बुआ की आदत है छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की। शायद इसीलिए माँ ने तुम्हारे पापा की जगह तुम्हारी माँ को तुम्हारे स्वादिष्ट खाना बनाने का श्रेय दे दिया होगा। बस इतनी सी बात पर तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? इतनी सी बात? रौनित, मेरे पापा ने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है और मुझे गर्व है अपने पापा पर।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है लव यू डैडी। अब तक आपने सुना रिया की सारी परवरिश उसके पापा ने ही की थी, यहाँ तक कि खाना बनाना भी उन्होंने ही सिखाया था। शादी के बाद जब रिया ने पहली रसोई में खाना बनाया तो सबको बहुत पसंद आया, लेकिन श्रेय उसकी माँ को दिया गया। ये बात रिया को अच्छी नहीं लगी। अब आगे थोड़ी देर की बहस के बाद बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद बुआ जी सहित घर के बाकी रिश्तेदार भी चले गए। जाते हुए सभी ने रिया की और उसके संस्कारों की खूब तारीफ की। रौनित के घर पर सभी इस शादी से बहुत खुश थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद होली आई और रिया के मायके के रिवाज के हिसाब से बेटी दामाद को शादी के बाद पहली होली पीहर में मनानी थी, इसलिए रिया और रौनित उसके पापा के घर के लिए चल दिए। जैसे ही घर के बाहर उनकी कार रुकी, ढोल वाले ढोल बजाने लगे। दरवाजे पर सुंदर रंगोली देखकर मन गदगद हो गया। पापा ने उन दोनों का स्वागत गर्मजोशी से किया। अंदर आते ही डाइनिंग टेबल पर लज्जतदार पकवान सजे हुए थे। दादी रिया पर और रौनित पर अपना लाड दुलार लुटा रही थीं। पापा यहां से वहां भाग भाग कर अपने दामाद की खातिरदारी कर रहे थे। तभी रौनित ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठा लिया। पापा, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, आपका अपना बेटा हूँ, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? दो घड़ी बैठकर सांस ले लीजिए। रौनित का ये अपनापन देखकर पापा की आंखें सजल सी हो गईं। वो कुछ देर को उसे और रौनित को लगातार देखते रहे। माँ एक कोने में बैठी हमेशा की तरह कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी और दादी किचन में सबके लिए अपने हाथों से बनी स्पेशल खीर लेने चली गई थी। कुछ देर तक उन्हें निहारते हुए पापा बोले, चलो खाना तैयार है, अभी गर्मा गर्म है। जी पापा, कहते हुए रौनित और रिया खाने को चल दिए। पूरी टेबल तरह तरह के पकवानों से भरी पड़ी थी। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दही बड़े, मेथी पूड़ी, मसाला पूड़ी, आलू गोभी, रसगुल्ला, गुजिया और किचन से आती दादी के हाथ की स्पेशल खीर। वाह, इतना सारा खाना, दादी कमाल करती हो आप, इस उम्र में भी इतनी मेहनत। रौनित ने खाने की भरी टेबल देखते हुए दादी से कहा। तो रिया बोली, रौनित, वैसे इस लज्जतदार खाने के पीछे दादी की कम, मेरे शेफ पापा की ज्यादा मेहनत है। हमारे घर का खाना पापा ही बनाते हैं, दादी ने ये खीर बस बनाई है ना पापा? पापा उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुराए। रौनित हर एक चीज को बड़े शौक से खाने लगे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है लव यू डैडी। अब तक आपने सुना रोनित और रिया शादी के बाद पहली बार मायके गए थे। पापा ने उन दोनों के स्वागत में ढेरों व्यंजन बनाए थे। रिया की माँ कुछ बीमार थी और वो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। सारा घर पापा ही संभालते थे और रिया की परवरिश उन्होंने ही की थी। अब आगे हर डिश का स्वाद उम्दा था। खाते हुए रोनित हर डिश की तारीफ कर रहे थे, पापा सच में बहुत टेस्टी खाना बना है। पता है पापा, मेरे घर पर रिया के हाथों के बने खाने की भी खूब तारीफ होती है। सभी कहते हैं कि रिया की माँ ने क्या खूब खाना बनाना सिखाया है रिया को। रोनित के बात सुनते ही सब शांत हो गए। उनकी बात पर रिया को गुस्सा आ गया तो पापा बात संभालते हुए बोले, बिल्कुल रिया की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मैंने उनसे ही तो ये सब सीखा है और फिर वही कला रिया में आ गई। वो कब से दोहरा जीवन जी रहे थे, पत्नी होते हुए भी पत्नी के सुख से वंचित थे। दादी माँ और रिया की सारी जिम्मेदारियां वो कितनी सहजता से निभा रहे थे। रिया पापा की ओर एक टक देख रही थी, तभी दादी बोली, रिया अब रोनित को थोड़ा आराम करने के लिए ले जाओ, इतनी दूर से गाड़ी चलाकर आया है, थक गया होगा। दादी के कहने पर वो खाना खाने के बाद आराम करने रूम में चले गए। दरअसल वो लंबा सफर तय करके भोपाल से सागर आए थे। रूम में पहुंचते ही रोनित चुपचाप लेट गए और रिया गुस्से में कोई मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। रोनित कुछ देर बाद बोले, नाराज हो? उनके सवाल का रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो फिर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोले, यार जनरली सबकी माँ ही अपनी बेटियों को खाना वगैरह बनाना सिखाती है, इसीलिए बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, जानबूझकर मैंने ये नहीं कहा। रोनित की बात पर उदास मन से रिया बोली, पता है रोनित, मैं सिर्फ आपकी बात से नाराज नहीं हूं, मैं पापा की किस्मत से नाराज हूं, बचपन से उन्हें ऐसा ही देखती आ रही हूं। बचपन से? मतलब तुम्हारी माँ शुरू से ही ऐसी है? रोनित बोले। रोनित के सवाल पर रिया बोली, नहीं माँ शुरू से ऐसी नहीं थी, ये सब तो एक बहुत बुरे हादसे के बाद हुआ। जब मैं महज 2 साल की बच्ची थी मुझे तो कुछ याद भी नहीं, पर दादी बताती है कि वो बहुत बुरा दिन था। उस दिन माँ मुझे दादी के पास छोड़कर मेरे 5 साल के भाई निहाल को लेकर ड्राइवर के साथ कार से कहीं जा रही थी, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में ड्राइवर तो वहीं खत्म हो गया और मेरा 5 साल का भाई बुरी तरह जख्मी हो गया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ वो आखिरकार जिंदगी हार गया। उसकी मौत के बाद माँ अपनी सुध-बुध खो बैठी। बस तब से आज तक वो ऐसी ही हैं। ये सब बताते हुए रिया बहुत उदास हो गई तो रोनित ने उसे समझाया, इट्स ओके रिया, जो हुआ सो हुआ, भगवान की कृपा देखो कितने परफेक्ट पापा हैं तुम्हारे पास, तुम्हें कितना प्यार करते हैं वो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है लव यू डैडी। अब तक आपने सुना, रिया अपने पति रोनित को बता रही थी कि किस तरह एक हादसे में जब उसकी माँ ने अपने 5 साल के बेटे को खो दिया, तब से वो कुछ दिमागी रूप से असंतुलित हो गई और उसके पिता ने ही सारी जिम्मेदारियां अकेले उठाई। अब आगे रिया रोनित से बोली, रोनित, पापा को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। दादी से अब कुछ होता नहीं और मैं भी दूर चली गई। पापा अब कितने अकेले हो गए हैं। मुझे सौतेली माँ का खराब व्यवहार ना मिले, यही सोचकर पापा ने कभी दूसरी शादी के लिए नहीं सोचा। माँ की इतनी लंबी सेवा करने के बाद भी वो कभी थके नहीं। न जाने किस मिट्टी के बने हैं मेरे पापा, कोई इतना धीरज वाला इतना बहादुर कैसे हो सकता है। तभी दादी कमरे में आ गईं और रिया के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, ये पापा लोग ना ऐसे ही होते हैं, सब कुछ अपने अंदर रखने वाले। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वो फिर भी अपना गुस्सा बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही ये गुस्सा पीना सीख जाते हैं, बढ़ती उम्र के साथ एकदम चुप हो जाते हैं। तेरे पापा का भी वही हाल है रिया। कुछ और मीठे दिन गुजार कर रिया और रोनित वापस सागर से भोपाल आ गए। वक्त अपनी गति से चलता रहा। पापा से रिया रोज फोन पर बात करती रहती, समय निकालकर बीच बीच में सागर भी हो आती। शादी के 2 साल पूरे होते होते रिया की गोद भी भर गई। पापा दादी और माँ को लेकर सागर से भोपाल आए तो रिया माँ को देखकर दंग रह गई। माँ को लेकर पापा कभी कहीं नहीं जाते थे तो फिर माँ यहाँ कैसे आई। रिया कुछ सोच ही रही थी कि माँ ने रिया के बेटे को गोद में लेकर सालों बाद एक स्पष्ट शब्द बोला, निहाल। निहाल, ये तो रिया के उस भाई का नाम था जिसकी सूरत भी उसे ठीक से याद नहीं थी। सब स्तब्ध थे, पापा की आंखों से आंसू छर-छर बह रहे थे। माँ एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, एक नवजात शिशु ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए थे। उसके बाद पापा, माँ और दादी कुछ दिनों उन लोगों के साथ भोपाल में ही रहे। माँ नानी होने का हर फर्ज निभा रही थी। निहाल की किस्मत ऐसे नाना नानी पाकर सच में निहाल हो गई थी। फिर पापा, माँ और दादी बेटे को अपना आशीष और उसे निहाल नाम देकर वापस चले गए। माँ की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आता गया और पापा की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। रिया जब 5 महीने के निहाल को लेकर मायके गई तो इस बार डाइनिंग टेबल पर पहले से भी ज्यादा व्यंजन परोसे गए थे। माँ ने उसके लिए सोठ गुड़ के लड्डू बनाए थे। रोनित भी उसके साथ थे। कुछ देर बाद उन्होंने खाना खाया तो रोनित बोले, वाह पापा, क्या खूब खाना बनाया है। तो पापा हंसते हुए बोले, इस बार तुम्हारी सास यानी रिया की माँ ने रसोई तैयार की है, मैंने तो बस उसकी मदद की है। दामाद जी, अब उनकी भी तारीफ कर दो। वो क्या है ना कि मर्द तो ये बात झेल जाते हैं पर स्त्री अपने हाथ के बने खाने की तारीफ सुने बिना नहीं रह पाती। माँ, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। रिया की माँ ये सुनकर मुस्कुरा दी। रिया को पता था कि खाना माँ ने कम पापा ने ज्यादा बनाया था।
माँ तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वो एकदम से सारे काम कैसे संभाल सकती थी। रोनित कुछ दिनों के लिए उसे सागर छोड़कर भोपाल चले गए थे। अब पापा शेफ माँ के साथ उसके लिए रोज कुछ ना कुछ नया और स्पेशल बना रहे थे। ये लो तुम्हारी माँ के हाथ का बना स्पेशल हलवा। इस तरह पापा बहुत खुश थे। पर रिया उनके हाथ की बनी चीजों को खाकर समझ जाती थी कि ये पापा के हाथों का कमाल है। पर फिर भी वो उनके इस छोटे से प्यारे से झूठ से खुश थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी लव यू डैडी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वही श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात, हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ। शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।